हनुमान। भक्तजनों, तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरित मानस में सबसे सुंदर प्रसंग आता है सुंदर कांड का। जी हाँ, यह सुंदर कांड परम राम भक्त श्री हनुमान जी की अनेकानेक लीलाओं का वर्णन करता है। कहते हैं

पढ़ने सुनने एवं गाने से भक्तों को पूरी रामायण पढ़ने का शुभ फल प्राप्त होता है तथा साथ ही साथ हनुमान जी और प्रभु श्री राम जी की कृपाएं प्राप्त होती है। तो आइए पवित्र पावन सुंदर कांड का संगीतमय श्रवण इस सरल वाणी में सुनते हैं। एक बार फिर मेरे साथ बोलिए, बोलिए भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज की। yeah!

मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। श्रोताओं, आज शनिवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 23वीं तिथि।

तदनुसार 13 जून 2026। सुबह के 5:57 हो रहे हैं। शुरू करते हैं आज की प्रातःकालीन सभा के प्रसारण।

0: हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6 बजने वाले हैं। आकाशवाणी दिल्ली से सुनते हैं हिंदी में समाचार बस कुछ ही पलों में।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिकाएं निभा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों कल नीस में भारत इनोवेट्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि इस कार्यक्रम में पिछले 12 वर्षों के दौरान स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण यात्रा दिखाई जाएगी।
2: भारत सरकार के शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री जी की इस विजनरी सजेशंस को एक एक्शन में परिवर्तित किया है। एक बहुत क्रिटिकल स्क्रूटिनी के माध्यम से हजारों प्रपोजल के अंदर से 120 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया गया है। 13 प्रायोरिटी सेक्टर में 120 स्टार्टअप्स को इकट्ठा किया गया है और उसमें लगभग 20 से ज्यादा भारत की प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस की पार्टनरशिप रहा है।

0: प्रधानमंत्री मोदी कल स्लोवाक गणराज्य की 3 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ब्रातिस्लावा में स्लोवाक गणराज्य के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से वार्ता के दौरान आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। श्री मोदी स्लोवाक गणराज्य के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से भी भेंट करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज उत्तराखंड के देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी में पासिंग आउट परेड का निरीक्षण करेंगी। इस वर्ष के ऐतिहासिक पासिंग आउट परेड में पहली बार लड़कों के साथ लड़कियां भी शामिल होंगी। इस भव्य समारोह में 500 से अधिक लड़के और लड़कियां सेना में अधिकारी के रूप में कमीशन प्राप्त करेंगे। भारी उद्योग और इस्पात मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विनिर्माण आधारित विकास और रोजगार सृजन पर अभूतपूर्व ध्यान दिया है। इससे औद्योगिक विकास में तेजी आई है और रोजगार के व्यापक अवसर सृजित हुए हैं। श्री कुमारस्वामी ने कल बेंगलुरु में केंद्रीय विनिर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान के 65वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि ये संस्थान रणनीतिक क्षेत्र में अनुसंधान में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान स्वदेशी प्रक्षेपास्त्र प्रणालियों का असाधारण प्रदर्शन भारत की रक्षा अनुसंधान और विकास व्यवस्था की बढ़ती शक्ति का प्रमाण है। श्री सिंह ने कल हैदराबाद में डॉ एपीजे अब्दुल कलाम प्रक्षेपास्त्र परिसर के अंतर्गत रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ की प्रयोगशाला में उन्नत हथियार प्रणाली परिसर का उद्घाटन किया। रक्षा मंत्री ने कहा कि डीआरडीओ की आकाश और ब्रह्मोस प्रणालियों ने वैश्विक रक्षा प्रौद्योगिकी व्यवस्था में भारत की क्षमता प्रदर्शित की है। कैबिनेट सचिव डॉ टीवी सोमनाथन ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत में खाड़ी में अमेरिकी नौसेना के हमलों पर कड़ा विरोध जताया। इन हमलों में 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। डॉ जयशंकर ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पर इस तरह की घातक कार्रवाई उचित नहीं है। इस घटना के बाद भारत ने कड़ा विरोध जताते हुए अमरीकी राजनयिक को नई दिल्ली में तलब किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इससे पहले कहा था कि भारतीय चालक दल के सदस्यों को ले जाने वाले व्यापारिक जहाजों पर हमले तुरंत बंद होने चाहिए। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 एक दिवसीय मैच श्रृंखला का पहला मुकाबला आज हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में खेला जाएगा। भारतीय समयानुसार ये मैच दोपहर 1:30 से शुरू होगा। भारत की पीवी सिंधु आज सिडनी में ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल सेमीफाइनल में जापान की अकाने यामागुची से खेलेंगी। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चीन सू यू को हराया था। यामागुची ने भारत की तन्वी शर्मा को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: इस वक्त आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र। लीजिए सुनिए भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना।

वंदना कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को वृंदा का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हवेली संगीत से।

जिनके सीने में श्री राम है, जिनके चरणों में सब धाम है, जिनके लिए सब कुछ दान है, अंजनी पुत्र वो तो हनुमान है। आपका मंगलवार शुभ हो।

ले तो अक्षर का नाम, सफल तेरे काम भी होंगे। जहां राम की चर्चा होगी वहां हनुमान भी होंगे।

हरिओम शरण की आवाज़ में अभी आपने हनुमान चालीसा सुनी। इसके साथ ही भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना अब यहीं समाप्त होता है। आज्ञा दीजिए, वृंदा को नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना। यह आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। श्रोताओं, आज आपको आज जो कार्यक्रम रिले और प्रसारित होने वाले हैं उन कार्यक्रमों की जानकारी दे देते हैं।

आकाशवाणी दिल्ली से रात 9:30 पर आप सुनेंगे अखिल भारतीय संस्कृति पत्रिका। संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम होगा रात 10 बजे। हमारे उदयपुर केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम कुछ इस तरह से होंगे। अब से थोड़ी ही देर में यानी कि 6:40 पर आप सुनेंगे श्री रामचरित मानस गान पाठ। किसान भाइयों के लिए कार्यक्रम खेती में आज होगा सुबह 6:50 पर। फिल्म संगीत का आनंद हमारे श्रोता हमारे सारे कार्यक्रमों में ले सकते हैं। सुबह 7 बजे आप सुन पाएंगे सदाबहार नगमे। सुबह 10 बजे का समय रहेगा शीर्षक गीत का। फिल्म संगीत होगा दोपहर 12 बजे। उसके बाद 1:45 पर, शाम 6:05 पर और रात 8 बजे। गैर फिल्मी नगमे आप सुन पाएंगे सुगम संगीत कार्यक्रम में सुबह 7:45 पर, 9:30 पर, 11:30 पर और रात 9:15 पर। मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन का प्रोग्राम नमस्कार उदयपुर लेकर हम उपस्थित होंगे सुबह 8:30 पर। शास्त्रीय संगीत का आनंद लीजिएगा समय रहेगा सुबह 11 बजे। बहनों के लिए प्रोग्राम सहेलियां दीवाड़ी होगा दोपहर 1:05 पर। किसान भाई सुनेंगे अपना कार्यक्रम कृषि जगत दोपहर 2:30 पर। ग्रामीण परिवारों के लिए लेकर आएंगे हम कार्यक्रम खेती और घर शाम 7 बजे। हमारे युवा साथी सुनेंगे अपने दैनिक कार्यक्रम युववाणी शाम 5 बजे। तो श्रोताओं ये थी जानकारी आज रिले और प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की।

कार्यक्रम विवरण अभी आपने सुना। हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए अब सुनिए श्री रामचरित मानस कान पाठ।

जनकपुर में सीता स्वयंवर में श्री राम द्वारा शिवजी के धनुष भंग का संदेश सुनकर अयोध्या में हर्ष और आनंद की लहर दौड़ गई। राजा दशरथ पुत्रों के विवाह के लिए बारात सजाने की तैयारियों में लगे हैं। राम लक्ष्मण तो जनकपुर में हैं, अतः भरत को हाथी घोड़े तथा रथ सजाने का आदेश हुआ। शौर्य का बाना धारण कर रणधीर वीर नगर के बाहर एकत्रित हुए। सभी चुने हुए छैल छबीले वीर चतुर नवयुवक हैं। भेरी और नगाड़ों की ध्वनि सुनकर इनकी प्रसन्नता का पारावार नहीं। सारथियों ने ध्वज पताकाओं तथा रत्नाभूषणों से रथ सजाए हैं। अगणित श्यामवर्णी घोड़े ऐसे हैं जो जल पर भी स्थल जैसी द्रुत गति से दौड़ते हैं, ऐसे वेग से कि उनकी टापें पानी में नहीं डूबती। रथों पर चढ़ी बारात नगर के बाहर आ जुटी है।

घंटों से सुसज्जित मतवाले हाथी इस प्रकार झूमते चले जैसे सावन के श्यामवर्णी बादलों के झुंड गरजते हुए चलते हैं।

श्री रामचरित मानस गान पाठ अभी आपने सुना। संगीत निर्देशक सतीश भाटिया और प्रसारण आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से हो रहा था। किसान भाई अब हमारे सुनेंगे कार्यक्रम खेती में आज।

राम राम किसान भाइयों, राम राम। खेती में आज कार्यक्रम सुनने वाला सगला किसान भाइयों ने पेमा भाई रो राम राम। देखो सा किसान भाइयों, अपना कार्यक्रम में टेम वी और मु आयो अपना घनी सारी जानकारी देवार वास्ते। तो अपना ई महीना रा महीने आप जो खेती बाड़ी संबंधी काम काज करी रहा हाँ, तो वणियों संबंधी जानकारी देऊँ सा। और सब्जियाँ जो आप वही करा हाँ, तो वणियों संबंधी जानकारी लेन आया हूँ। और देखो सा बताऊँ आपने कि भिंडी की वर्षा ऋतु में जो आपकी फसल की बुवाई करा वहाँ जून जुलाई मतलब कि आनी महीना र महीने आप करना चाहवा। भिंडी की पूसा एस चार परभनी क्रांति अर्का अभय अर्का अनामिका वर्षा उपहार किस्मा जो है वे 8-10 किलो बीज प्रति हेक्टर की दरों अपन बुवाई के वास्ते काम में लेना चाहवे सा। अणी देखो कि फूल गोभी

की अगेती किस्मा की जो बुआई आप करा तो अपने जून महीना के अंतरा महीने आप ना करना चाहवा। अगेती किस्म में अर्ली कुंवारी, पूसा कातकी, पूसा दीपाली, पूसा अर्ली सिंथेटिक, ये जो है प्रमुख किस्म बताई मिली है। और अगेती किस्म के वास्ते अपन 600-700 ग्राम बीज प्रति हेक्टर की दरों जो है अपन है बीजा ने 2 ग्राम थायरामो प्रति किलोग्राम बीज की दरों अपन है उपचारित कर जो है नर्सरी में वही करना चाहवा। और इस तरह देखो कि आप टमाटर जो खेती कर रहे हैं तो वर्षाकालीन जो है फसल है वन की तैयारी पौध जो अपने खेतर महीने रोपाई के पहली अपने कार्बेंडिजम या पचे ट्राइकोडर्माओं का गोल रहा महीने पौधा की जड़ ने 20-25 मिनट तक उपचारित करवा रहा वास्ते पौधा ने रोपाई करनी चाहवा सा। और पौधा ने जो आप खेतर महीने 75 सेंटीमीटर की कतार में दूरी रखता दिखाई जो है 60 सेंटीमीटर की फासला पे रखता दिखाई अपने पौधा की रोपाई करना चाहवा। मेड़ा रहा ऊपर चारों मेर जो है आप गेंदा की रोपाई जो करना चाहवा वीकों की है कि सुरक्षा जो है वनी दिखी रहे। फूल खिलवा की अवस्था महीने अपने फल भेदक जो भी कीट व्या करे वह टमाटर की फसल में कम और जबकि गेंदा की फलियां जो है फूल है वनारा महीने अधिक अंडा देवे है। तो खेत की तैयारी के टाइम पे अपने गोबर की खाद 250-300 क्विंटल, नत्रजन जो है 100 किलोग्राम, फास्फोरस 80 किलो और पोटास 60 किलो प्रति हेक्टर के दरों काम में लेना चाहवे। रींगणा री खेती कर रहा हाँ तो वर्षा के टाइम पे जो आप इनकी फसल करा तो इनकी तैयार पौधा की जो है वे की कतारो कतार के बीच में 60 सेंटीमीटर और पौधों पौधा के बीच में 50 सेंटीमीटर को अंतराल मतलब दूरी रखना अपने जो है उचित काम करना चाहवे। खेत री तैयारी की टाइम पे अपने गोबर री खाद 120-150 किलोग्राम, नत्रजन जो है वो 40 किलोग्राम, फास्फोरस 80 किलोग्राम और पोटास 60 किलोग्राम प्रति हेक्टर के दोनों काम में लेनी चाहवे। मर्चा की नर्सरी में देखो बुवाई के टाइम पे आप देखो 40-45 दिन के बाद में अपने पौध रोपण के वास्ते तैयार कर लेनी चाहिए। रोपाई अपने जो है कतार में 60x30 वर्ग सेंटीमीटर की दूरी रखता दिखे ये हिसाब अपने सांझरी टाइम पे जो है यू काम करना चाहिए। तुरंत ही के बाद में अपने पाणत भी करनी चाहिए। पौधा जो है वना में देखो 40 ग्राम एजोस्पाइरियम 2 लीटर पानी रे महीने गोल मिलाई जो है 15 मिनट डुबो अपने रोपाई करनी चाहिए। मर्चा की अच्छी उपज प्राप्त करवाने वास्ते अपने जो है 20-25 टन गोबर री जो खाद है सड़ी तिकी खाद वह काम में अपने लेनी चाहिए और 5-10 टन वर्मी कम्पोस्ट जो है वनी ने काम में लेनी चाहिए। रोपाई का 15-20 दिन का पहली जो है अपने खेत महीने मिलाई देनी चाहिए। अणी तरह यू काम भी आप खाद रू कर सरकार। इसके अलावा अपने रासायनिक उर्वरक जो है 120 किलोग्राम नत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 60 किलोग्राम पोटास जो है प्रति हेक्टर के दरों अपने काम में लेना चाहिए। नत्रजन की आधी और फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा जो है रोपाई में पहले अपने नत्रजन की शेष आधी मात्रा जो है विन अपन रोपाई के 45-60 दिन के बाद में मतलब की 1.5-2 महीना केड़े देनी चाहिए। तो अणी तरह कोई है कि आप जो सब्जियां की खेती अपनों कर रहा हाँ तो अणी में अपना फायदा मिल सके। भिंडी की खेती कर रहे हो चाहे फूल गोभी उगाओ भली टमाटर उगाओ भली रींगणा की खेती करो मर्चा की खेती करो तो ये जो खाद बीज को हिसाब किताब अपने बताई रखियो है इनको अपने पूरा ध्यान रखना है। और लारे लारे जो है बीज उपचार करवा की जो विधि है वन्ने पूरी काम में लेनी है। और अपने जो है खाद के अलावा अपने देसी खाद के अलावा पे जो अपने रासायनिक खाद को इस्तेमाल करा हाँ तो वन में मात्रा है वे को अपने पूरा ध्यान रखना है। और सब्जियां की खेती जो आप करा तो आप जाना कि सब्जियां की जो खेती वे हरी सब्जियां वे एना में नाजुक जो व्या करे तो अणी वास्ते कही कि मौसम को असर अणा पे वत्तो वेवे कीट जो है वे लागवा की आशंका वत्ती रहे और जो मौसम की खराबी की वजह जो है अणा नुकसान पहुंचो की आशंका वत्ती रहे। तो ये सब बातन अगर आप ध्यान में रखा तो अणा का उपचार आप टेम टेम कर सका। और उपचार अगर आप करा तो देखो कि अणी में व्यय वाला जो नुकसान है वणा आप वंचित सका। नुकसान वंचा तो देखो अपना उत्पादन जो है वो ज्यादा बैठे है उत्पादन के बैठवा की संभावना जो है वत्ती वे जावे और उत्पादन ज्यादा वे तो आप ही मान सकेंगे अपन आर्थिक नुकसान जो है वेवा की संभावना जो है खत्म वे जावे तो अपन 2 पैसे री आमदनी वत्ती वे तो वे हिसाबों कही अपन जो
सब टेम देकर काम करना पड़ेगा, जितनी मात्रा वते मिली है वतरी काम में लेनी पड़ेगा, चाहे भले बीज की वो चाहे खाद की वो, पाणतरी टेम वो चाहे भले अपना और जो भी काम में करना है वहीं की टेम वो, ये सब टेम देखना अपन करना पड़ेगा। पौधा की जो आपस में दूरी जितनी वेनी चाहे वतई रखी वही हिसाब अपने काम करना पड़ेगा। अगर आप ही पौधा की दूरी को जो ध्यान नहीं रखा तो है अपने नुकसान।

भी वही जावे, क्योंकि वो पौधा में जो है बढ़वार वेवा में परेशानी आवे, और यदि बढ़वार कम वेवे तो आप ही मान सका कि देखो कि अपने जो है वन में परेशानी आवे, और पौधों जो है बढ़वार कम वे तो वे में उत्पादन भी प्रभावित वेवे। या तो भी सब्जी की जानकारी लारे लारे पुष्प उत्पादन मतलब फूल री खेती करी रहा, हाँ तो वन की जानकारी दे कि वर्षा के टाइम पे अपने जो फूल को उत्पादन करा वन में देखो आप ही गेंदा है, बालसम है, जीनिया है, सूरजमुखी है, ये जो कुछ तरह का जो है काम है अपना फूलों को वो कहाँ पे नर्सरी आना के तैयार कर देना चाहवा। तैयार नर्सरी में देखो अपना जारा है या नियमित रूप वहाँ पे जो है पाणत करना चाहवा वीकों की है खरपतवार जो आप निकालता रहा और ये काम आपको अच्छी तरह बेच सके। क्यारियाँ जो है लंबी अपने गुलदाउदी का या पचे सर्कस का अलग तरह का जो है लगाना चाहे, और देखो कि गेंदा की जो वर्षा कालीन जो अपना फसल बताई रखी पौधा की रोपाई है वन का बीज बीज जो है बोवा के 25-30 दिन के बाद में अपन यदि पौधा में 3-4 पत्तियां आवा लाग जावे अपन तैयार क्यारियाँ जो है वनाना अपन कर लेनी चाहे। 30 दिन ज़्यादा टाइम वे जाए तो वन में देखो पुरानी जो पौधा है वन में रोपाई कर बाद में यदि पैदावार में कमी आती दी के आपने दिखे है, तो पौधा रोपण की दूरी जो है उगाई दाव वाली जो किस्मा है मिट्टी है वन की भौतिक दशा है रोपण की विधि है ये सब बातें जो है विपे निर्भर करेगा अपना उत्पादन करने तरह वेणो है। अफ्रीकन गेंदा का जो पौधा है वना की रोपाई 40x40 सेंटीमीटर की दूरी पे जो है अपने करना चाहवा, और देखो कि फ्रेंच गेंदा जो है वन की रोपाई 20x20 का हिसाब अपने काम में लेना पड़ेगा। और इस तरह देखो खेत में तैयार यदि टाइम पे अपना 10-15 टन की अच्छी सड़ी देखी गोबर की खाद है वहाँ पे काम में लेना चाहवा, और 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस, 60 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टर के दौरों पर डाला तो अपने गेंदा की उपज जो अच्छी हुई। नाइट्रोजन की आधी मात्रा और फास्फोरस और पोटाश की पूरी मात्रा खेत महीने तैयारी के टाइम पे अपने मिट्टी महीने मिला देनी चाहे, और वची थी कि नाइट्रोजन की जो है मात्रा वर्ण आधी मात्रा ने 2 बराबर भाग में वाटन जो है पहली रोपाई 1 महीना केड़े और दूजी रोपाई 55 दना रखेड़े अपने छिड़काव कर विधियों अपने डालनी चाहिए। तो या तो भी देखो सब्जी और पुष्प उत्पादन री खेती री बात, उम्मीद करा कि यह जानकारी जो है अपना किसान भाई रे वास्ते फायदेमंद वेगा। जानकारी देवार वास्ते और भी है पर घड़ी हमू नाड़ो तब करके मुझावरी टाइम भी है चाला सा राम राम साहब।

हमारे किसान भाई अभी सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम खेती में आज। ये आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। लीजिए अब सुनिए सदाबहार नगमे। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं कुमार सानू और साधना सरगम के गाए इस गाने के साथ, जिसे हमने चुना है फिल्म जुर्म से।

यह आवाज थी आतिफ असलम की और फिल्म का नाम बदलापुर। लीजिए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गाना। कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज है, फिल्म है परदेश।

आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

अब सुनते हैं सोनू निगम, सुनिधि चौहान, काजोल और आमिर के मिले जुले स्वर में फना फिल्म का ये गाना।

सुलाने दे आज हमको, तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया, वो छूट जाएगा।

साजन फिल्म का गाना अभी आपने सुना अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज में। लीजिए अब सुनते हैं विनोद राठौड़ का गाया हुआ गाना, जिसे हमने चुना है फिल्म दीवाना से।

0: प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस के यात्रियों
1: दीप तुम्हें इसे मोबाइल चार्ज करना,
2: दिमाग चार्ज कर अपना।
3: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक।
2: देखा
1: पापा, रुको मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल।
3: अब क्या करोगे?
1: फ्री वाईफाई है ना।
2: बुद्धू सुधर जा।
3: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई,
1: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय।
3: RBI कहता है
4: तरो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
5: हो गया इंतजाम।
6: किसका?
5: गुड्डी की फीस का।
6: दिखा 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
7: RBI कहता है
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।

सिंग इज किंग। जी हाँ श्रोताओं, इस फिल्म का गाना अभी आपने सुना राहत फतेह अली खान और श्रेया घोषाल की आवाज़ में। कार्यक्रम का आखिरी गाना, फिल्म का नाम है क्रिमिनल और आवाज़ अलका याग्निक के साथ कुमार सानू की।

0: क्रिमिनल फिल्म के इस गाने के साथ ही सदाबहार नगमों का ये प्रोग्राम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए अब सुनिए आबोहवा।
1: प्राकृतिक जलवायु परिवर्तनशीलता, यह यूनेस्को का संदेश है। पृथ्वी की जलवायु करोड़ों सालों से प्राकृतिक कारणों से बदलती रही है, जिसमें ग्रहों की गति, सूर्य उत्पादन और ब्रह्मांड से आने वाले प्रभाव, यह हजारों सालों में धीरे धीरे होने वाले परिवर्तन होते हैं, कभी हिमयुग कभी गर्म अवधि। जलवायु को बदलने वाले मुख्य कारण हैं पृथ्वी के कक्ष का आकार, उसकी अक्षीय झुकाव और ज्वालामुखी गतिविधि। समुद्री धाराएं और बर्फ का आवरण भी जलवायु पर असर डालते हैं। बड़े उल्कापिंडों के प्रभाव से भी अचानक जलवायु परिवर्तन का कारण बना है। यह एक रोचक तथ्य है। क्या आप जानते हैं कि सिर्फ 4 से 6 डिग्री सेल्सियस का वैश्विक तापमान परिवर्तन पृथ्वी को हिमयुग या गर्म युग में बदल सकता है। प्राकृतिक जलवायु परिवर्तनशीलता, यह यूनेस्को का संदेश है। पृथ्वी की जलवायु करोड़ों सालों से प्राकृतिक कारणों से बदलती रही है, जिसमें ग्रहों की गति, सूर्य उत्पादन और ब्रह्मांड से आने वाले प्रभाव, यह हजारों सालों में धीरे धीरे होने वाले परिवर्तन होते हैं, कभी हिमयुग कभी गर्म अवधि। जलवायु को बदलने वाले मुख्य कारण हैं पृथ्वी के कक्ष का आकार, उसकी अक्षीय झुकाव और ज्वालामुखी गतिविधि। समुद्री धाराएं और बर्फ का आवरण भी जलवायु पर असर डालते हैं। बड़े उल्कापिंडों के प्रभाव से भी अचानक जलवायु परिवर्तन का कारण बना है। यह एक रोचक तथ्य है। क्या आप जानते हैं कि सिर्फ 4 से 6 डिग्री सेल्सियस का वैश्विक तापमान परिवर्तन पृथ्वी को हिमयुग या गर्म युग में बदल सकता है। यह संदेश यूनेस्को और आकाशवाणी के सहयोग से प्रस्तुत किया गया है। इंसानों के कारण जलवायु परिवर्तन, यह यूनेस्को का संदेश है। कोयला, तेल और गैस जलाना, पेड़ काटना और पशुओं को पालना जैसे मानवीय काम ऐसे ग्रीन हाउस गैसेस उत्पन्न करते हैं जो पृथ्वी को गर्म कर देते हैं। औद्योगिक क्रांति के बाद से पृथ्वी की सतह का तापमान 1 डिग्री

0: डिग्री सेल्सियस से ज्यादा बढ़ चुका है और जमीन महासागर के मुकाबले और तेज गर्म हो रही है। बर्फ के प्राचीन अध्ययन बताते हैं कि हवा में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर अब 8 लाख सालों या 800 हजार सालों में सबसे ज्यादा है। बर्फ का पिघलना, समुद्र का स्तर बढ़ना, यह बदलाव वापस नहीं किया जा सकता। फिर भी उत्सर्जन लगातार बढ़ता जा रहा है। समुद्रों, बर्फ की परतों और समुद्र तल में होने वाले कई परिवर्तन अब लौटाए जा नहीं सकते। क्या आप जानते हैं, पृथ्वी का तापमान लगभग 1.1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ चुका है, जिससे जमीन, समुद्र और वायुमंडल सब पर गहरा असर पड़ा है। इंसानों के कारण जलवायु परिवर्तन, यह यूनेस्को का संदेश है। कोयला, तेल और गैस जलाना, पेड़ काटना और पशुओं को पालना जैसे मानवीय काम ऐसे ग्रीन हाउस गैसेस उत्पन्न करते हैं जो पृथ्वी को गर्म कर देते हैं। औद्योगिक क्रांति के बाद से पृथ्वी की सतह का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा बढ़ चुका है और जमीन महासागर के मुकाबले और तेज गर्म हो रही है। बर्फ के प्राचीन अध्ययन बताते हैं कि हवा में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर अब 8 लाख सालों या 800 हजार सालों में सबसे ज्यादा है। बर्फ का पिघलना, समुद्र का स्तर बढ़ना, यह बदलाव वापस नहीं किया जा सकता। फिर भी उत्सर्जन लगातार बढ़ता जा रहा है। समुद्रों, बर्फ की परतों और समुद्र तल में होने वाले कई परिवर्तन अब लौटाए जा नहीं सकते। क्या आप जानते हैं, पृथ्वी का तापमान लगभग 1.1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ चुका है, जिससे जमीन, समुद्र और वायुमंडल सब पर गहरा असर पड़ा है।
1: यह संदेश यूनेस्को और आकाशवाणी के सहयोग से प्रस्तुत किया गया है।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आबोहवा। यह आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। लीजिए अब सुनिए सुगम संगीत। आज कलाकार पंकज उदास।

0: सुगम संगीत कार्यक्रम में श्रोताओं, आज आपने पंकज उदास के गाए कुछ गैर फिल्मी नगमे सुने। ये प्रोग्राम अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। सुबह के 8 बजने वाले हैं। आकाशवाणी दिल्ली से सुनिए समाचार प्रभात, फिर 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज। समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।
1: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
2: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
1: और लाइट बिल के
2: अब 0 रुपए कैसे दूं?
1: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
3: पक्का। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिवसीय यात्रा पर होंगे रवाना। डीआरडीओ ने बहुस्तरीय बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा क्षमता का प्रदर्शन करते हुए लगातार 3 सफल परीक्षण किए। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने तेल टैंकर पर हमले के विरोध में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से कड़ा विरोध जताया। हमले में मारे गए थे 3 भारतीय नाविक। भारत और बांग्लादेश ने सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने की प्रतिबद्धता दोहराई। अमरीका प्रस्तावित शांति समझौते के तहत ईरान के नागरिक परमाणु कार्यक्रम पर हुआ सहमत। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन के महिला सिंगल सेमीफाइनल में आज भारत की पीवी सिंधु और जापान की अकाने यामागुची होंगी आमने सामने। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में पराग्वे के साथ मुकाबले में अमरीका 3-0 से आगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी आज शाम फ्रांस के नीस शहर पहुंचेंगे। वर्ष 2014 के बाद प्रधानमंत्री की ये फ्रांस की 7वीं आधिकारिक यात्रा है। प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों इस वर्ष के आरंभ में भारत फ्रांस संबंधों को विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिए जाने के बाद पहली द्विपक्षीय शिखर बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री एवियन में G7 शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस के नीस शहर पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज दक्षिण फ्रांस में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों से मिलेंगे। वे कल राष्ट्रपति मैक्रों के साथ भारत इनोवेटिव्स का उद्घाटन करेंगे। इस प्रदर्शनी में भारत के 120 से अधिक स्टार्टअप और कंपनियां भाग लेंगी, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डीप टेक और उद्यमिता के क्षेत्र में भारत की

0: बढ़ती वैश्विक भूमिका को प्रदर्शित करेंगे। कार्यक्रम में फ्रांस सहित दुनिया भर के निवेशक और उद्योग जगत के प्रमुख प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। इसके बाद दोनों नेता ऐतिहासिक विला कैरिलोस में द्विपक्षीय शिखर वार्ता करेंगे। वार्ता के दौरान रक्षा, अंतरिक्ष, असैन्य परमाणु ऊर्जा, प्रौद्योगिकी और जन से जन संपर्क जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। भारत और फ्रांस के बीच 25 वर्षों से अधिक पुरानी रणनीतिक साझेदारी है, जो रक्षा, अंतरिक्ष और आर्थिक सहयोग के क्षेत्र में लगातार मजबूत हुई है। वर्ष 2025-26 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग 16 अरब अमेरिकी डॉलर हो चुका है। नीस में अपने कार्यक्रमों के बाद प्रधानमंत्री मोदी द्विपक्षीय यात्रा पर स्लोवाकिया जाएंगे। इसके बाद वे 16 और 17 जून को फ्रांस के एविया में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए फ्रांस लौटेंगे। इस मंच पर प्रधानमंत्री मोदी विकासशील देशों के प्रमुख प्रतिनिधि के रूप में भारत का पक्ष रखेंगे। नीस से शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: प्रधानमंत्री मोदी कल स्लोवाक गणराज्य की 3 दिन की यात्रा पर रहेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी ब्रातिस्लावा में स्लोवाक गणराज्य के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से वार्ता के दौरान आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे।
2: स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली आधिकारिक यात्रा पर स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी यात्रा के दौरान स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट के साथ वार्ता में आपसी सहयोग बढ़ाने के उपायों पर चर्चा करेंगे। यात्रा के दौरान श्री मोदी स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से भी भेंट करेंगे। यह राज्य की यात्रा ऐसे समय हो रही है जब भारत और स्लोवाकिया के बीच व्यापारिक संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2024 में 1 अरब डॉलर से अधिक हो गया था। पिछले वर्ष ये बढ़कर 1 अरब 80 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया। प्रधानमंत्री की यात्रा भारत और स्लोवाकिया के संबंधों को नई मजबूती देगी, साथ ही यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के साथ भारत का सहयोग और बढ़ने की संभावना है। ब्रातिस्लावा से स्मृति एम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO को लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल रोधी और मध्यम दूरी की पोत रोधी क्षमता का प्रदर्शन करने वाले लगातार 3 सफल परीक्षणों के लिए बधाई दी है। रक्षा मंत्री ने कहा कि इन परीक्षणों ने भारत को अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल हमले रोकने में सक्षम विशिष्ट देशों के समूह में शामिल कर दिया है। श्री सिंह ने कहा कि DRDO ने विभिन्न प्रकार के खतरों के खिलाफ राष्ट्र की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने वाली कई महत्वपूर्ण तकनीकों का सफल प्रदर्शन किया है।
3: आजादी के बाद कुछ ऐसे प्रिंसली स्टेट थे जिनके शासक भारत में आने से मना कर रहे। शुरुआत में सरदार पटेल ने बातचीत के माध्यम से उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन जब बातचीत से हल नहीं निकला तो उन्होंने बलपूर्वक उन प्रिंसली स्टेट्स का भारत में विलय कराया। हमारी सरकार भी इसी नीति पर चल रही है। ऑपरेशन सिंदूर से हमने दुनिया को बता दिया, शांति और सद्भावना की भाषा नहीं समझने वाले लोगों को हम उसी की भाषा में जवाब देना जानते हैं जो उनकी आदत है।
1: देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम देश की सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करने की दिशा में किए गए प्रयासों की चर्चा करेंगे।
4: पिछले 12 वर्षों में भारत की सांस्कृतिक यात्रा ने नई ऊंचाइयां हासिल की हैं। देश की संस्कृति अपनी परंपराओं से जुड़ी हुई है और साथ ही पूरी दुनिया के लिए खुली भी है। सरकार ने देश और विदेश में कई ऐसे कदम उठाए हैं जिससे लोगों में सांस्कृतिक विरासत के प्रति गर्व की भावना और अधिक मजबूत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल लोक परियोजना, माँ कामाख्या मंदिर का पुनर्विकास, जूना सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण और अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना जैसे ऐतिहासिक कार्य किए गए हैं। आध्यात्मिक पर्यटन सर्किट और आधुनिक तीर्थयात्री सुविधाओं के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान को फिर से सशक्त बनाया जा रहा है। इस बदलाव में संग्रहालय अनुदान योजना और सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा उत्पादन अनुदान योजना की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इन योजनाओं ने भारत की सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित रखने के साथ साथ सांस्कृतिक रचनात्मकता और स्थानीय स्तर पर लोगों की भागीदारी को भी बढ़ावा दिया है। संग्रहालय अनुदान योजना के तहत देश भर में 21 नए संग्रहालय स्थापित किए गए हैं और 23 पुराने संग्रहालयों का आधुनिकीकरण किया गया है। यह योजना नागालैंड जैसे राज्यों में भी काफी लाभकारी साबित हुई है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में नागालैंड के कला और संस्कृति विभाग के गाइड तालितिजेन ने इस योजना के लाभों पर बात की। सांस्कृतिक कार्यक्रम और उत्पादन अनुदान योजना भी देश भर में सांस्कृतिक सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनकर उभरी है। मणिपुर की सबसे पुरानी रंगमंच संस्था मणिपुर ड्रामेटिक यूनियन को हाल ही में वित्तीय

0: सहायता मिली है, जिसके बाद वह नए नाट्य प्रस्तुतियों की तैयारी कर रही है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में संस्था के सचिव सुरोख अबैम शरद चंद ने क्षेत्र कला और संस्कृति को मजबूत समर्थन देने के लिए सरकार का आभार व्यक्त किया है।
1: इस संगठन की स्थापना के बाद से हमें संस्कृति मंत्रालय से विभिन्न प्रकार के अनुदान प्राप्त हुए हैं। सांस्कृतिक अनुदान के अंतर्गत हमें इस वर्ष 1,25,000 रुपए प्राप्त हुए हैं। हमें स्वीकृत राशि का 75% प्राप्त हुआ है। मैं भारत सरकार और संस्कृति मंत्रालय का आभार व्यक्त करता हूँ।
0: भारत ने अपनी संस्कृति को संरक्षित और दुनिया तक पहुँचाने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। प्राचीन मंदिरों का जीर्णोद्धार किया है, तीर्थ स्थलों का विकास हुआ है और पुरानी परंपराओं को नया जीवन मिला है। साथ ही बेहतर सड़कें, स्वच्छ सुविधाएं और आधुनिक सेवाएं लोगों के लिए इन स्थानों तक पहुंचना अधिक आसान बना रही है। आज पूरी दुनिया भारत की संस्कृति, परंपराओं और जीवन शैली में रुचि दिखा रही है। भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत अब केवल देश में ही नहीं बल्कि विश्व भर में अपनी अलग पहचान बना रही है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और एआई से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
2: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत में खाड़ी में अमेरिकी नौसेना के हमलों पर कड़ा विरोध जताया है। इन हमलों में 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। डॉ जयशंकर ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पर इस तरह की घातक कार्रवाई उचित नहीं है।
4: ओमान तट पर टैंकर एम्प्टी स्टेटेबेलो पर अमेरिकी हमले में 3 भारतीय चालक दल के सदस्यों की मौत के कुछ दिनों बाद यह बातचीत हुई। जहाज पर भारतीय चालक दल के 24 सदस्य सवार थे। इनमें से किस सदस्यों को सुरक्षित बचा लिया गया? इस घटना के बाद भारत ने कड़ा विरोध जताते हुए अमेरिकी राजनयिक को नई दिल्ली में तलब किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इससे पहले कहा था कि भारतीय चालक दल के सदस्यों को ले जाने वाले व्यापारिक जहाजों पर हमले तुरंत बंद होने चाहिए। उन्होंने संवाद और कूटनीति के माध्यम से क्षेत्र में शांति और स्थिरता की शीघ्र बहाली सुनिश्चित करने का भी आह्वान किया। समाचार कक्ष से मेघना शर्मा।
2: अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि वो ईरान के नागरिक परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को मंजूरी देने के लिए तैयार है, लेकिन ईरान को परमाणु हथियार निर्माण से जुड़े बुनियादी ढांचे को खत्म करना होगा। अमेरिकी अधिकारी ने नागरिक परमाणु ऊर्जा उत्पादन और परमाणु हथियार क्षमता के बीच स्पष्ट अंतर बताया और कहा कि अमेरिका का उद्देश्य ईरान के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को समाप्त करना नहीं बल्कि ईरान को बम बनाने की क्षमता बनाए रखने से रोकना है। भारत और बांग्लादेश ने सीमा पर शांति, स्थिरता और सद्भाव बनाए रखने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। सीमा सुरक्षा बल और बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड के बीच 57वां महानिदेशक स्तरीय सीमा समन्वय सम्मेलन 8 से 11 जून तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के भारतीय सैन्य अकादमी में आज पासिंग आउट परेड आयोजित की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस अवसर पर परेड का निरीक्षण किया। इस वर्ष की ऐतिहासिक पासिंग आउट परेड में पहली बार महिला कैडेट्स भी शामिल हुई। कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की है। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। लॉस एंजल्स में फीफा फुटबॉल विश्व कप में पराग्वे के साथ मैच में ताजा समाचार मिलने तक अमरीका 3-1 से आगे चल रहा था। इससे पहले कनाडा और बोस्निया हर्जेगोविना का मैच 1-1 की बराबरी पर समाप्त हुआ। भारत की पीवी सिंधु आज सिडनी में ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में जापान की अकाने यामागुची से खेलेंगी। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चेन सू यू को हराया था। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में अगले 2 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के आसार हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
5: धन्यवाद विशाल। ओमान की खाड़ी में भारतीय चालक

0: दल वाले व्यावसायिक जहाजों पर अमरीकी हमलों पर भारत का कड़ा विरोध आज के अधिकांश अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। अमर उजाला की सुर्खी है, जहाजों को निशाना बनाने से भारत नाराज, अमरीका से कहा ऐसे हमले स्वीकार्य नहीं, अमरीकी दूतावास के प्रभारी को दूसरी बार किया तलब। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ईरान के साथ युद्ध समाप्ति समझौते का दावा भी अखबारों की सुर्खी बना है। दैनिक जागरण ने लिखा है, ईरान युद्ध खत्म, समझौता जल्द, तेहरान ने कहा अभी अंतिम फैसला नहीं। जिनेवा में कल मसौदे पर हस्ताक्षर संभव। वहीं हिंदुस्तान ने बिजनेस पन्ने पर लिखा है, शांति कायम होने के संकेतों से शेयर बाजारों में तूफानी तेजी। अमेरिका और पश्चिमी देशों के दोहरे रवैये पर विदेश मंत्री एस जयशंकर की खरी खरी राजस्थान पत्रिका में है। फिनलैंड में कुल तारंता टॉक्स में कहा, भारत ने नहीं पहुंचाया यूरोप की सुरक्षा को खतरा, हम जानते हैं खेल क्या है, यूरोप के हथियारों का इस्तेमाल भारत पर हमले के लिए किया जाता है। महिलाओं के लिए क्षमता दिखाने का माहौल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ये शब्द जनसत्ता में है। पीएम ने कहा, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं के नेतृत्व में विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया, सम्मान अवसर और सशक्तिकरण पर दिया जोर।
1: धन्यवाद वैष्णवी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। डीआरडीओ ने बहुस्तरीय बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा क्षमता का प्रदर्शन करते हुए लगातार 3 सफल परीक्षण किए। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने तेल टैंकर पर हमले के विरोध में अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से कड़ा विरोध जताया। हमले में मारे गए थे 3 भारतीय नाविक। भारत और बांग्लादेश ने सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने की प्रतिबद्धता दोहराई। अमरीका प्रस्तावित शांति समझौते के तहत ईरान के नागरिक परमाणु कार्यक्रम पर हुआ सहमत। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में आज भारत की पीवी सिंधु और जापान की अकाने यामागुची होंगी आमने सामने। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Sarabjit Kaur. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to embark on 6-day visit to France and Slovakia this morning. DRDO successfully conducts 3 consecutive flight tests to demonstrate multi-layered ballistic missile defense capability. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar lodges strong protest with US Secretary of State Marco Rubio over US strikes on oil ship that killed 3 Indian sailors. India and Bangladesh reaffirm their commitment to maintain peace and tranquility along the border. United States says it opened to civil nuclear program of Iran under proposed peace deal. In badminton, PV Sindhu to face world champion Akane Yamaguchi of Japan in women's single semi-finals of Australia Open today. And in FIFA World Cup, United States takes 3-1 lead in ongoing match against Paraguay in Group D at Los Angeles. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will be arriving in Nice, France this evening, embarking on a 2-nation European tour spanning France and Slovakia. This is the Prime Minister's 7th official visit to France since 2014 and carries special diplomatic weight. Prime Minister Modi and French President Emmanuel Macron are set to hold their first bilateral summit since the elevation of India-France ties to a special global strategic partnership earlier this year. The Prime Minister will also participate in the G7 summit in Ivan, reaffirming India's standing as an indispensable voice of the Global South on the world stage. Our correspondent joins us now from Nice, France.
3: On arrival this evening, Prime Minister Modi will proceed to his hotel, where he will attend a community reception bringing together members of the Indian diaspora from across the south of France. The engagements on 14th of June opened on a note of innovation and ambition. Prime Minister Modi, alongside President Macron, will inaugurate Bharat Innovates, India's flagship innovation showcase at the Palais des Expositions de Nice. More than 120 Indian startups and companies will come together with leading investors and business leaders from France and across the world, spotlighting India as a global destination for deep tech, artificial intelligence and entrepreneurship. Thereafter, the two leaders will proceed to the historic Villa Carlos for the bilateral summit, where defense, space, civil

0: भाग्यशाली होते हैं वो लोग जिनके पास भरोसेमंद रिश्ते और मित्र दोनों होते हैं।
1: क्या बात है वृंदा, सही कहा आपने, बहुत सही बात है।
0: तो नमस्कार उदयपुर प्रोग्राम में इसी भरोसेमंद रिश्ते को कायम रखते हुए आज है आपके दो रेडियो दोस्त, मैं वृंदा और मेरे साथ
1: परवीन।
0: तो स्वीकार कीजिए हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार।

0: और हम भी खुश हुए इस प्रोग्राम को स्टार्ट करके।
1: बिल्कुल वृंदा, और हर रोज हम खींचे चले आते हैं ना हमारे लिसनर्स से बात करने के लिए, उनको इन्फॉर्मेशन देने के लिए, क्योंकि नमस्कार उदयपुर का जो मकसद ही है ना वो है ज्ञान और मनोरंजन का संगम यहाँ पर होता है। तो आज के संगम की अगर बात करें तो आज है सैटरडे, कल्चर पॉप सैटरडे। हम आज बात करने वाले हैं हमारे श्रोताओं से। तो वीकेंड ओपनर में आज हमारे पास क्या रहेगा खास?
0: वीकेंड ओपनर में आज अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस के बारे में जानकारी दी जाएगी और प्रमुख स्थानीय खबरें हम सुनवाएंगे।
1: बिल्कुल वृंदा, बात करेंगे फोक एंड रूट्स में, तो आज हम मेवाड़ की लोक शिल्प और हस्तकलाएं बताएंगे हमारे लिसनर्स को।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, और मनोरंजन कक्ष में हम लेकर आएंगे बिंज वॉचिंग मनोरंजन या आदत, इस विषय पर हम बातचीत करेंगे।
1: बिल्कुल, और बात करेंगे जानकारी यानी कि अवेयरनेस की, AI ऐप जो मदद करे ऑफिशियल वर्क में।
0: तो शुरुआत करते हैं प्रमुख स्थानीय खबरों से।
1: बिल्कुल वृंदा, और बात करेंगे सज्जनगढ़ में प्लास्टिक

0: प्रतिबंध की। वन विभाग ने सज्जनगढ़ सेंचुरी और बायो पार्क को प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र बनाने के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। यदि आप यहां प्लास्टिक की पानी की बोतल ले जाते हैं तो आपको 1000 तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। विभाग द्वारा पर्यटकों को कांच की बोतलों में पानी उपलब्ध कराया जा रहा है।
1: गुलाब बाग को प्रदूषण मुक्त और सुरक्षित बनाने के लिए परिसर में दुपहिया और चार पहिया वाहनों के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है।
0: बिल्कुल वृंदा, अब हम बात करेंगे महिलाओं की सुरक्षा, आत्मविश्वास और सशक्तिकरण को समर्पित नाइट रन 2.0 शनिवार को होगी, यानी कि आज ही के दिन होगी। सेफ वुमेन ऑफ उदयपुर थीम पर आयोजित इस विशेष नाइट रन में 300 से ज्यादा महिलाओं ने पंजीकरण कराया है। महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के साथ महिलाओं में आत्मविश्वास का संचार करना है। शुभारंभ शाम 7:30 बजे महाकाल मंदिर से होगा, जहां से प्रतिभागी राजीव गांधी गार्डन तक नाइट रन में हिस्सा लेंगी।
1: राज्य सरकार ने जन्म एवं मृत्यु पंजीयन प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और नागरिक हितैषी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए पहचान पोर्टल और पहचान ऐप के माध्यम से विभिन्न डिजिटल सुविधा शुरू की है। अब जन्म, मृत्यु और विवाह प्रमाण पत्र ऑनलाइन प्राप्त करने के साथ साथ व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध हो सकेंगे।
0: बिल्कुल वृंदा, रुक करते हैं क्राइम और प्रशासनिक गतिविधियों पर। तो शहर के चेतक सर्कल स्थित व्यस्त इलाकों में बिजली के तारों में शॉर्ट सर्किट के मामले सामने आए हैं। तो इसके अलावा शहर के अलग अलग थानों में पुलिस द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान और शांति व्यवस्था को लेकर कार्रवाई की जा रही है।

0: परवीन, आज है 13 जून और 13 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस। इसका उद्देश्य एल्बिनिज्म से प्रभावित लोगों के प्रति जागरूकता बढ़ाना, उनके अधिकारों की रक्षा करना और समाज में फैली गलत धारणाओं को दूर करना है।
1: बिल्कुल बिंदा, रंग त्वचा का बदल सकता है लेकिन आत्मा की चमक और इंसानियत की खूबसूरती हमेशा एक जैसी रहती है। रंग के आधार पर होने वाला भेदभाव कई बार रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसे तरीकों से सामने आ सकता है जिन्हें अक्सर हानि रहित मान लिया जाता है, जैसे घूरना, उपहासपूर्ण टिप्पणियां, बहिष्कार, धमकाना, रूढ़िवादिता या अमानवीय भाषा का प्रयोग, तो ये रंगहीनता में आता है।
0: बिल्कुल, और जो एल्बिनिज्म है ये अनुवांशिक स्थिति है जिसमें व्यक्ति के शरीर, त्वचा, बालों और आंखों में मेलानिन की मात्रा बहुत कम या बिल्कुल नहीं होती। इसके कारण उनकी त्वचा और बाल सामान्य से अधिक सफ़ेद दिखाई देते हैं और उन्हें दृष्टि संबंधी समस्याएं भी हो सकती हैं। एल्बिनिज्म कोई बीमारी नहीं है, न ही यह छूने या साथ रहने से फैलता है। फिर भी कई बार जानकारी के अभाव में एल्बिनिज्म से प्रभावित लोगों को भेदभाव, उपेक्षा और सामाजिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
1: बिल्कुल वृंदा, अगर इस दिवस के महत्व और उद्देश्य की बात की जाए तो एल्बिनिज्म से पीड़ित लोगों को समाज में कई तरह के सामाजिक और शारीरिक भेदभाव का सामना करना पड़ता है और यह दिवस इस कलंक को मिटाने का संदेश देता है। इस दिन दुनिया भर में विशेष कैंप, गोष्ठियाँ और शैक्षिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं ताकि लोग इस बीमारी के बारे में सही जानकारी प्राप्त कर सकें और इस दिन यह सुनिश्चित कराया जाता है कि एल्बिनिज्म वाले व्यक्तियों को सामान्य जीवन जीने का, शिक्षा का और सामाजिक सुरक्षा का पूरा अधिकार है।
0: अगर इस बार की थीम की बात की जाए तो इस बार की थीम है प्राउडली इन माय स्किन, सेलिब्रेटिंग ऑल स्किन टोन्स।
1: बिल्कुल, मुझे अपनी त्वचा पर गर्व है, मैं सभी त्वचा के रंगों का जश्न मनाती हूँ।

0: और परवीन, अब हम बात करते हैं मेवाड़ की लोक शिल्प और हस्तकलाओं के बारे में। मेवाड़ जो अपनी वीरता, संस्कृति और परंपराओं के लिए प्रसिद्ध है, वहीं अपनी सुंदर हस्तकलाओं और लोक शिल्प के लिए भी जाना जाता है। यहाँ के कारीगर पीढ़ियों से अपनी कला को संजोए हुए हैं।
1: बिल्कुल वृंदा, मेवाड़ की माटी का जादू और हस्तशिल्पियों की साधना पत्थरों और रंगों में फूंक देती है, साक्षात

0: जीवंत भावना भर देती है। जहाँ इतिहास तलवार की धार से लिखा गया, वहाँ के हुनरमंदों ने मिट्टी, काष्ट और धातुओं से मेवाड़ का श्रृंगार किया।
1: मेवाड़ की सबसे प्रसिद्ध कलाओं में पिछवाई चित्रकला का विशेष स्थान है। यह कला मुख्य रूप से नाथद्वारा से जुड़ी हुई है। इसमें भगवान श्री नाथजी के जीवन और विभिन्न उत्सवों का चित्रण किया जाता है। इन चित्रों में रंगों और बारीक कामों का अद्भुत मेल देखने को मिलता है। इसके अलावा फड़ चित्रकला भी मेवाड़ की एक महत्वपूर्ण लोक कला है। इसमें कपड़े पर लोक देवताओं और ऐतिहासिक कथाओं को चित्रों के माध्यम से दर्शाया जाता है।
0: बिल्कुल वृंदा, मेवाड़ क्षेत्र मुख्य रूप से उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भिलवाड़ा, राजसमंद और प्रतापगढ़ जिला पारंपरिक कला और हस्तशिल्प का एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक केंद्र रहा है। काष्ठ कला यानी कि लकड़ी का हस्तशिल्प की अगर हम बात करें तो चित्तौड़गढ़ जिले का बस्सी गांव पूरे राजस्थान में काष्ठ शिल्प यानी लकड़ी की कला के लिए सबसे प्रसिद्ध केंद्र है। यहाँ के सुथार खाती समाज के लोग इस कला में निपुण होते हैं।
1: मेवाड़ की कठपुतली कला पूरे देश में प्रसिद्ध है। रंग बिरंगी कठपुतलियों के माध्यम से लोक कथाएं, इतिहास और सामाजिक संदेश लोगों तक पहुंचाए जाते हैं। यह कला मनोरंजन के साथ साथ शिक्षा का भी माध्यम रही है।
0: बिल्कुल, बात करें राजसमंद ज़िले की तो राजसमंद ज़िले का मौलेला गांव मिट्टी की पकी हुई मूर्तियां यानी कि टेराकोटा बनाने के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इसमें मुख्य रूप से लोक देवता देवनारायण जी और धर्मराज जी की मिट्टी की पट्टिकाएं बनाई जाती है, जिन्हें ग्रामीण क्षेत्रों और आदिवासी समाज के लोग अपने मंदिरों में स्थापित करते हैं।
1: बांधनी और लहरिया जैसी पारंपरिक वस्त्र कलाएँ भी मेवाड़ की पहचान है। इन रंग बिरंगे कपड़ों में राजस्थान की संस्कृति और लोक जीवन की झलक दिखाई देती है। इसके साथ ही चांदी के आभूषण, पत्थर पर नक्काशी और हाथ से बनी सजावटी वस्तुएं भी मेवाड़ के शिल्प की समृद्ध परंपरा को दर्शाती हैं।
0: बिल्कुल, बात करें थेवा आर्ट की यानी कि थेवा कला की। प्रतापगढ़ जिले की थेवा कला आभूषण निर्माण की एक अत्यंत बारीक और गुप्त कला है। इसमें हरे, नीले और लाल रंग के बेल्जियम कांच पर सोने यानी कि स्वर्ण के बेहद महीन तारों से नक्काशी और चित्रकारी की जाती है। इस हस्तकला के लिए प्रतापगढ़ का राज सोनी परिवार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त कर चुका है।
1: आज आधुनिकता के दौर में भी मेवाड़ के कारीगर अपनी कला को जीवित रखे हुए हैं। ये हस्तकलाएं न केवल हमारी सांस्कृतिक धरोहर हैं, बल्कि हजारों लोगों की आजीविका का भी महत्वपूर्ण साधन है। हम सभी मेवाड़ की इन अनमोल लोक कलाओं और हस्तशिल्पों को प्रोत्साहित करें, साथ अपनी सांस्कृतिक विरासत को आने वाली पीढ़ियों तक पहुँचाने में योगदान दें।
0: बिल्कुल।

श्रोताओं, अभी तक आप एंजॉय कर रहे थे प्रोग्राम नमस्कार उदयपुर। ये कार्यक्रम जारी रहेगा 9:10 से। अभी सुबह के 9 बजने वाले हैं। हमारे जयपुर केंद्र से सुनिए हिंदी में प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में सेवा पखवाड़ा का तहत लगाए जा रहे शहरी सेवा शिविरों में पहले ही दिन लगभग 10,000 मामलों का निस्तारण किया गया। राज्य सरकार ने एमएसपी पर गेहूं खरीद की अवधि बढ़ाकर 19 जून तक की। रेलवे भर्ती बोर्ड की सभी विभागीय परीक्षाएं अब से कंप्यूटर आधारित होंगी और पश्चिमी विक्षोभ के असर से प्रदेश में कई स्थानों पर तेज हवा के साथ बरसात हुई। हनुमानगढ़ में कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में सेवा पखवाड़ा के तहत आयोजित किए जा रहे शहरी सेवा शिविरों में पहले ही दिन लगभग 10,000 मामलों और शिकायतों का निस्तारण किया गया है। स्वायत्त शासन विभाग के अनुसार इन शिविरों में पट्टा, नामांतरण और नागरिक सुविधाओं से जुड़े मामलों का मौके पर ही समाधान किया जा रहा है। कल आयोजित शिविरों में पट्टा और भूमि से जुड़े 1,173 मामलों तथा नामांतरण और भू उपयोग परिवर्तन के 1,491 प्रकरणों का निस्तारण किया गया। इसके अलावा जनसेवाओं से जुड़ी 6,000 से अधिक शिकायतों का भी एक ही दिन में समाधान हुआ। इनमें जन्म, मृत्यु और विवाह पंजीयन, स्ट्रीट लाइट मरम्मत और आवारा पशुओं से संबंधित शिकायतें मुख्य रूप से शामिल हैं। पाली जिले में आयोजित एक शिविर में पशुपालन और देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत ने कहा कि ये शिविर नागरिक सेवाओं को पारदर्शी, त्वरित और सुगम बनाने के लिए आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने लोगों से इन शिविरों का अधिक से अधिक लाभ लेने की अपील की।
1: अभी जैसे सरकार ने इस कैंप में बहुत सारी छूट दी है, पट्टे बनाने में भी कृषि भूमि के पट्टे बनाने, 69A के पट्टे जो पट्टे हैं उनके बनाने में भी छूट दी है। 50% से ज्यादा छूट है अभी दी है। इससे क्या होगा कि पट्टों की राशि आधी लगेगी, इसलिए इसमें कैंपों में आवेदन करके आप ज्यादा से ज्यादा पट्टे भी बनाने की कार्रवाई करें। जैसे मकान की परमिशन में भी बहुत सारी छूट दी है।
0: राज्य सरकार ने प्रदेश के किसानों को बड़ी राहत देते हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर गेहूं खरीद की अवधि बढ़ाकर 19 जून तक कर दी है। पहले ये खरीद 10 जून तक की जानी थी। खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग के अनुसार ऐसे सभी पंजीकृत किसान जिनका गेहूं अभी तक नहीं बिक पाया है, वे बढ़ी हुई तारीख तक अपनी उपज समर्थन मूल्य पर बेच सकते हैं। विभाग ने गेहूं खरीद का लक्ष्य भी 23,50,000 से बढ़ाकर 28,50,000 मीट्रिक टन कर दिया है। इसमें अब तक 3 लाख से अधिक

किसानों से 25 लाख 90 हजार मीट्रिक टन गेहूं खरीदा जा चुका है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि राष्ट्र प्रथम की भावना और समाज के प्रति संवेदनशीलता ही एक सच्चे नागरिक की सबसे बड़ी पहचान होती है। श्री शर्मा ने जयपुर में फिल्म भारत भाग्य विधाता की विशेष स्क्रीनिंग के अवसर पर ये बात कही। उन्होंने कहा कि ये फिल्म देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने वाले गुमनाम नायकों की प्रेरक गाथा है। इसमें 26/11 आतंकी हमले और कोविड महामारी के दौरान चिकित्सकों, नर्सों और सुरक्षा कर्मियों के त्याग, साहस और सेवा भाव को प्रमुखता से दिखाया गया है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने राइजिंग राजस्थान के तहत हुए एमओयू को जल्दी से जल्दी धरातल पर उतारने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार का उद्देश्य राजस्थान को वैश्विक पर्यटन के मानचित्र पर शीर्ष स्थान दिलाना है। उप मुख्यमंत्री ने सचिवालय में पर्यटन, कला संस्कृति और पुरातत्व विभाग की 15 प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा बैठक में ये बात कही। उन्होंने पुष्कर विकास परियोजना, महाराणा प्रताप सर्किट, आमेर मास्टर प्लान, झुंझुनू वॉर म्यूजियम, अल्बर्ट हॉल के विकास और शिल्पग्राम पुनर्विकास जैसी परियोजनाओं को तय समय पर पूरा करने का जोर दिया। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, YouTube चैनल राजस्थान AIR न्यूज और Facebook AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। रेलवे बोर्ड की सभी विभागीय परीक्षाएं अब से पूरी तरह ऑनलाइन होंगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे भर्ती बोर्ड RRB की चयन प्रक्रिया की एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में ये निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, सटीक और तेज बनाने के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा CBT मोड में कराई जाएगी। इसके साथ ही भविष्य में टैबलेट आधारित परीक्षाओं का दायरा भी बढ़ाया जाएगा। रेल मंत्री ने चयन प्रक्रिया में तकनीक के अधिकतम उपयोग पर जोर दिया है। श्री वैष्णव ने बताया कि खाली पदों की जानकारी देने के लिए रेलवे द्वारा जारी किए गए वार्षिक भर्ती कैलेंडर को भी उम्मीदवारों की अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। कैबिनेट सचिव डॉ टीवी सोमनाथन ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के महानिदेशक के साथ नीट की पुनः परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की है। नीट की ये परीक्षा 21 जून को आयोजित की जाएगी। समीक्षा बैठक में कैबिनेट सचिव ने कहा कि परीक्षा में बाधा डालने या इसके साथ छेड़छाड़ करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि केंद्र और राज्य सरकार के साथ साथ जिला प्रशासन परीक्षा कराने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। इससे पहले श्री सोमनाथन ने 1 जून को केंद्र सरकार के सचिवों और 4 जून को राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ भी बैठक की थी। इन बैठकों का उद्देश्य परीक्षा में समन्वय और विश्वसनीयता बनाए रखना है। इस बीच नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने इस बार नीट परीक्षा की अवधि में बदलाव किया है। अब इस परीक्षा की अवधि 3 घंटे से बढ़ाकर 3.25 घंटे कर दी गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO को लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल रोधी और मध्यम दूरी की पोत रोधी क्षमता का प्रदर्शन करने वाले लगातार 3 सफल परीक्षणों के लिए बधाई दी है। ये बात उन्होंने कल हैदराबाद में DRDO की रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला में उन्नत हथियार प्रणाली परिसर के उद्घाटन के दौरान कही। श्री सिंह ने कहा कि इन परीक्षणों ने भारत को अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल हमले रोकने में सक्षम विशिष्ट देशों के समूह में शामिल कर दिया है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान स्वदेशी प्रक्षेपात्र प्रणालियों का असाधारण प्रदर्शन भारत की रक्षा अनुसंधान और विकास व्यवस्था की बढ़ती शक्ति का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि भारत अब देश विरोधी ताकतों को मुंह तोड़ जवाब देने की नीति पर काम कर रहा है। और अब मौसम। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के असर से कई स्थानों पर तेज हवा के साथ बरसात हुई। राजधानी जयपुर में देर रात से शुरू हुआ बरसात का दौर रुक रुक कर सुबह तक जारी है। पाली में अल सुबह से ही मौसम का मिजाज बदला हुआ है। सोजत, रानी, राणावास सहित आसपास के क्षेत्रों में हल्की बरसात हुई। कोटपुतली बहरोड में देर रात तक बरसात होती रही, इससे निचले इलाकों में पानी भर गया। बारां के शाहबाद कस्बे में कल 2 घंटे तक बरसात हुई। नागौर में देर रात तेज अंधड़ चला और बारिश हुई। बरसात से मौसम में ठंडक घुल गई है। हनुमानगढ़ में कई जगह ओले भी गिरे, साथ ही अंधड़
के कारण

0: बिजली के खंभे उखड़ गए। अधिक ब्यौरा दे रही हैं हमारी हनुमानगढ़ संवाददाता।
1: हनुमानगढ़ जिले सहित आसपास के क्षेत्रों में बीते देर शाम तेज अंधड़ के साथ आसमान में घने बादल छा गए और मेघ गर्जन के साथ कहीं हल्की तो कहीं मध्यम दर्जे की बारिश दर्ज की गई। इस दौरान कई ग्रामीण व शहरी इलाकों में तेज बारिश के साथ ओले भी गिरे। तेज हवाओं के चलते कई जगहों पर बिजली के पोल उखड़ गए और विशालकाय पेड़ टूटकर सड़कों पर गिर गए। पेड़ गिरने के कारण कई प्रमुख मार्ग पूरी तरह अवरुद्ध हो गए। हालांकि इस मौसमी बदलाव और बारिश के कारण पिछले कई दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी और झुलसाने वाली लू से आम जन को राहत मिली है। मैना देवी, आकाशवाणी समाचार, हनुमान।
0: मौसम विभाग ने आगामी दो दिनों के लिए प्रदेश के 16 शहरों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। हालांकि राज्य के कुछ पश्चिमी हिस्सों को गर्मी से अब भी निजात नहीं मिली है। वहां उमस भरी गर्मी जनजीवन को प्रभावित कर रही है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में सेवा पखवाड़ा के तहत लगाए जा रहे शहरी सेवा शिविरों में पहले ही दिन लगभग 10,000 मामलों का निस्तारण किया गया। राज्य सरकार ने एमएसपी पर गेहूं खरीद की अवधि बढ़ाकर 19 जून तक की। रेलवे भर्ती बोर्ड की सभी विभागीय परीक्षाएं अब से कंप्यूटर आधारित होंगी और पश्चिमी विक्षोभ के असर से प्रदेश में कई स्थानों पर तेज हवा के साथ बरसात हुई। हनुमानगढ़ में कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: नमस्कार। उदयपुर प्रोग्राम में एक बार फिर सभी सुनने वालों का हम स्वागत करते हैं। श्रोताओं, हम एक बार फिर से याद दिलाते हैं, आज आपके साथ आपके रेडियो दोस्त हैं वृंदा और
3: मैं परवीन।
2: तो एंजॉय कीजिए सबसे पहले ये गाना।
3: बिल्कुल।

0: परवीन, आज के समय में मोबाइल टीवी और ओटीटी प्लेटफॉर्म हमारी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन चुके हैं। इन्हीं के साथ एक नया शब्द प्रचलित हुआ है, बिंज वॉचिंग।
1: बिल्कुल बृंदा, डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स जैसे नेटफ्लिक्स, सोनी लाइव, अमेजन प्राइम, जियो हॉटस्टार के दौर में एक आदत बहुत आम हो गई है, जहां दर्शक एक ही बैठक में पूरी सीरीज़ खत्म कर देते हैं। क्योंकि हम बात कर रहे हैं बिंज वॉचिंग की। क्या होता है ये बिंज वॉचिंग? बिंज का अर्थ होता है किसी चीज़ का अत्यधिक या अनियंत्रित सेवन। जब इसे वॉचिंग के साथ जोड़ा जाता है तो इसका मतलब मनोरंजन सामग्री हो जाता है, जैसे फिल्में या टीवी शो देखना, लेकिन इनको लंबे समय तक लगातार देखना इज अ बिंज वॉचिंग।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, शुरुआत में यह केवल मनोरंजन का साधन लगता है। छुट्टी के दिन या खाली समय में अपने पसंदीदा सीरीज देखना अच्छा लगता है, इससे तनाव कम होता है और मन भी तरोताजा महसूस करता है। कई बार अच्छी कहानियां हमें नई बातें सीखने और अलग अलग संस्कृति को समझने का अवसर भी देती हैं। लेकिन यही आदत जरूरत से ज़्यादा बढ़ जाती है तो इसके कुछ नकारात्मक प्रभाव भी सामने आते हैं। कई लोग रात रात भर जागकर एपिसोड देखते रहते हैं, जिससे नींद पूरी नहीं हो पाती है। इसका असर स्वास्थ्य, कामकाज और पढ़ाई पर पड़ता है। लंबे समय तक स्क्रीन के सामने बैठे रहने से आंखों में थकान, सिरदर्द और शारीरिक गतिविधियों में कमी भी आ सकती है। बिंज वॉचिंग का एक और प्रभाव यह है कि कई बार लोग परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताने के बजाय स्क्रीन पर अधिक समय देने लगते हैं। इससे सामाजिक संबंधों पर भी असर पड़ता है।
1: बृंदा, लेकिन अगर हम इसके कुछ फायदों की बात करें तो कुछ शोधों के अनुसार सीमित और सही तरीके से की गई बिंज वॉचिंग के फायदे भी हो सकते हैं, जैसे कि एक अच्छी कहानी या शो आपको दैनिक जीवन से तनाव से अस्थायी राहत दे सकता है। विदेशी भाषा या अलग अलग संस्कृतियों की वेब सीरीज देखने से आपकी भाषा और समझ बेहतर होती है। बिंज वॉचिंग कैसे करें? क्योंकि अगर आप स्वस्थ तरीके से बिंज वॉचिंग करना चाहते हैं तो स्क्रीन ब्रेक लें, 40 से 50 मिनट बाद उठें, स्ट्रेचिंग करें, आंखों को आराम दें। नाइट मोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि रात के समय स्क्रीन की ब्राइटनेस कम रखें और आई कंफर्ट या नाइट शील्ड मोड ऑन कर सकते हैं, और सोने से कम आधा घंटे पहले स्क्रीन बंद कर दें।
0: हम तो यही कहना चाहेंगे कि मनोरंजन हमारी जिंदगी का हिस्सा होना चाहिए, पूरी जिंदगी नहीं। इसीलिए स्क्रीन टाइम पर नियंत्रण रखें और अपने स्वास्थ्य, परिवार और अन्य रुचियों के लिए भी समय निकालें।

0: काम करता है वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और आउटलुक में दस्तावेज तैयार करने, डेटा का विश्लेषण करने और प्रस्तुति बनाने में सहायता करता है।
1: बिल्कुल वृंदा, मीटिंग नोट्स और ट्रांसक्रिप्शन के लिए अगर आपको जिस एप्लीकेशन की ज़रूरत है उसके लिए आपको करना होगा ओटर एआई का इस्तेमाल। यह ऐप मीटिंग के दौरान होने वाली बातचीत को सुनता है और उसका सटीक टेस्ट अपने आप तैयार कर लेता है। जूम एआई कंपेनियन ऑनलाइन मीटिंग में नोट्स बनाने और मुख्य बातों का सारांश निकालने के लिए एक बेहतरीन ऐप है।
0: प्रोजेक्शन पोस्टर, सोशल मीडिया पोस्ट और रिपोर्ट के लिए आकर्षक डिज़ाइन तैयार करने में सहायक है कैनवा एआई। यह मदद करता है अच्छी से अच्छी डिज़ाइन आसानी से बनाने में।
1: बिल्कुल, अगर करना है राइटिंग और ड्राफ्टिंग का काम तो नोशन एआई का इस्तेमाल आपको बेहद ज़रूरी हो जाएगा करना। आपके प्रोजेक्ट नोट्स का समरी आपको अगर बनाना है, ईमेल लिखना है, आइडिया सोचने के लिए सबसे उपयोगी है ये। ग्रामरली, जी हाँ, ऑफिशियल ईमेल या डॉक्यूमेंट्स में ग्रामर की गलतियाँ सुधारने और सही टोन में लिखने में ये आपको बहुत मदद करता है।
0: एक और ऐप है गूगल जेमिनाई। यह गूगल का एआई सहायक है ईमेल ड्राफ्ट करने, जानकारी खोजने, लेखन कार्य और विचारों को व्यवस्थित करने में उपयोगी है।
1: गामा एआई वृंदा सिर्फ एक टॉपिक या टेस्ट लिखकर आप कुछ ही सेकंड में प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स तैयार कर सकते हैं।
0: एआई का उपयोग करते समय ध्यान रखें, संवेदनशील या गोपनीय जानकारी साझा करने से बचें। एआई द्वारा दी गई जानकारी को एक बार अवश्य जांच लें। एआई को सहायक के रूप में उपयोग करें, अंतिम निर्णय स्वयं लें। कुल मिलाकर एआई ऐप समय बचाने, दस्तावेज तैयार करने, डेटा एनालिसिस करने और दैनिक ऑफिशियल कार्यों को और अधिक प्रभावी बनाने में बहुत उपयोगी साबित हो रहे हैं। सही तरीके से उपयोग करने पर ये आपके कार्य की गुणवत्ता और उत्पादकता दोनों बढ़ा सकते हैं, लेकिन थोड़ा ध्यान रख के।
1: बिल्कुल वृंदा, आज की जो ये हमारी जानकारी थी, हमारे श्रोताओं को काफ़ी पसंद भी आई होगी और हम हमारे श्रोताओं को ले चलेंगे एक सॉन्ग की तरफ। लेकिन उससे पहले हमारे लिसनर्स को हम ये भी कह दें, क्योंकि घड़ी जो है हमें इशारा कर रही है कि हमारे नमस्कार उदयपुर का समय भी हो चला है, तो हम सिर्फ ये कहेंगे, दुनिया में रहने की सबसे अच्छी दो जगह हैं, या तो किसी के दिल में या फिर किसी की दुआओं में। और इसी के साथ इस प्रोग्राम से दीजिए इजाज़त, मैं आपकी दोस्त परवीन को और
0: और
1: मेरे
0: मैं
1: साथ
0: वृंदा, दीजिए इजाजत।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: एक और क्षेत्र जिसमें भारत तेजी से अपनी मजबूत पहचान बना रहा है, ये क्षेत्र है AI, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बिल्कुल वृंदा, आज हमारे लिसनर से हम बात करने वाले हैं कि अगर उनको अपने ऑफिशियल वर्क को करना है आसान, तो करनी होगी कुछ AI एप्स का इस्तेमाल।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, और इन एप्स में सबसे लोकप्रिय ऐप है ChatGPT। इसकी मदद से आप पत्र, ईमेल, रिपोर्ट, भाषण, नोटिस और प्रोजेक्ट प्रस्ताव तैयार कर सकते हैं। साथ ही किसी विषय पर जानकारी जुटाने और सामग्री को सरल भाषा में समझने में भी मदद मिलती है। माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट, ये माइक्रो ऑफिस के साथ

मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार उदयपुर अभी आपने सुना। आकाशवाणी का ये उदयपुर केंद्र है, सुगम संगीत। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में सुनिए सुलक्षणा पंडित के गाए कुछ गैर फिल्मी गाने।

सुगम संगीत का ये प्रोग्राम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं सुलक्षणा पंडित के गाए कुछ गैर फिल्मी नगमे।

सुलक्षणा पंडित को अभी आपने सुगम संगीत कार्यक्रम में सुना। हम आकाशवाणी उदयपुर से बोल रहे हैं। लीजिए अब सुनिए शीर्षक गीत। आज शीर्षक है दिल।

लता मंगेशकर की आवाज़ में अभी आपने मुकद्दर का सिकंदर इस फिल्म का गाना सुना। श्रोताओं, कहते हैं कि दिल सिर्फ एक अंग नहीं है बल्कि हमारी भावनाओं का प्रतीक भी है। जब हम खुश होते हैं तो कहते हैं कि दिल खुश हो गया, और जब हम दुखी होते तो कहते हैं दिल टूट गया। यानी दिल का रिश्ता सिर्फ शरीर से नहीं, हमारी ज़िंदगी और एहसासों से भी है।

0: तीनों कॉलेज में।
1: डोंट वरी।
0: फीस तो देखो।
2: क्या हाल है? क्या हुआ?
1: फीस की टेंशन।
2: राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही।
3: रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा और उसमें भी 4 लाख रुपए तक, नो कोलैटरल। वो कहाँ है? मिठाई।
4: आरबीआई कहता है
5: तरो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
6: जल्दी टिफिन पैक करो राजू, मोबाइल छोड़ो।
7: अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
6: अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
7: तो फिर सही नंबर,
6: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
7: आपने तो बचा लिया दीदी।
6: काम से नहीं।
8: आरबीआई कहता है
5: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।

दिल तो पागल है। इस फिल्म का गाना अभी आपने सुना लता मंगेशकर और उदित नारायण की आवाज़ में। कार्यक्रम का अगला गाना सुनते हैं राहत फतेह अली खान की आवाज़ और फिल्म है इश्कियाँ।

0: उदित नारायण की आवाज में अभी आप सुन रहे हैं दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, इस फिल्म का गाना शीर्षक गीत आप तक पहुंच रहा है आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से।
1: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

दिल चाहता है, इस फिल्म का गाना अभी आपने सुना, शंकर महादेवन की आवाज़। लीजिए अब सुनते हैं अलका याग्निक, उदित नारायण और कुमार सानू की मिली जुली आवाज़ों में, दिल है तुम्हारा, इस फिल्म का नगमा।

दिल का रिश्ता, इस फिल्म का गाना अभी आपने सुना अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज़ में। लीजिए अब सुनते हैं अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज़ में, फिल्म का नाम है हर दिल जो प्यार करेगा।

0: दिल का क्या कसूर, इस फिल्म का गाना अभी आपने सुना। कुमार सानू ने इस गाने को गाया। इस गाने के साथ ही शीर्षक गीत ये प्रोग्राम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: मीडियम वेव 266.6 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। सुबह के 11:01 हो चुके हैं। श्रोताओं, आइए सुनते हैं शास्त्रीय संगीत। आज आपको सुनवाते हैं नरेश कुमार ब्यावर की आवाज़ में राग अहिर भैरव।

0: प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस के यात्रियों
1: का
2: स्वागत है। तुमने इसे मोबाइल चार्ज करना,
1: दिमाग चार्ज कर अपना।
3: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक।
1: देखा
2: पापा, रुको मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल।
3: अब क्या करोगे?
2: फ्री वाईफाई है ना?
1: बुद्धू सुधर जा।
3: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई।
2: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय।
3: RBI कहता है
4: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
5: हो गया इंतजाम।
6: किसका?
5: गुड्डी की फीस का।
6: दिखा 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
7: RBI कहता है
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: श्रोताओं, अभी आपने सुना शास्त्रीय संगीत नरेश कुमार ब्यावर की आवाज में। ये आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है।

ये आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। मीडियम वेव 266.66 मीटर अर्थात 1125 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं, आइए सुनते हैं सुगम संगीत। तो आप तक पहुंचाते हैं ये गजल।

0: तीनों कॉलेज में
1: डोंट वरी
0: फीस तो देखो
2: क्या हाल है क्या हुआ
1: फीस की टेंशन
2: राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही
3: रास्ता क्लियर बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा और उसमें भी 4 लाख रुपए का नो कोलैटरल
2: वो कहाँ है
3: मिठाई
4: आरबीआई कहता है
5: करो से ही शुरुआत बनो फाइनेंशियली स्मार्ट
6: जल्दी टिफिन पैक करो राजू मोबाइल छोड़ो
7: अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए रिफंड ही नहीं आया है मिल गया अब भी कॉल करता हूँ दीदी
6: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं
7: तो फिर सही नंबर
6: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड
7: आपने तो बचा लिया दीदी
6: काम से नहीं
8: आरबीआई कहता है
9: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव
10: श्रोताओं ये आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है और आप सुन रहे हैं सुगम संगीत आइए आपको सुनवाते हैं अगली गजल जगजीत सिंह की आवाज में

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए, उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: श्रोताओं, आइए आपको सुनवाते हैं चित्रा सिंह और जगजीत सिंह की आवाज में ये गजल।

श्रोताओं, अभी आपने सुना ये प्यारा सा गीत। आइए आपको सुनवाते हैं अगला गाना आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाज में। फिल्म है पवित्र गंगा।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: श्रोताओं, इससे पहले आपने सुना था बंजारन फिल्म का गाना। आइए अब आपको सुनवाते हैं कर्तव्य फिल्म का ये गीत। इसे गाया है लता मंगेशकर ने।

Akashwani at 90. श्रोताओं, यह आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है और आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। आइए आपको सुनवाते हैं अगला गाना। फिल्म है सरगम और इसे गाया है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी ने। तो ये गाना पहुंचाते हैं आप तक।

श्रोताओं, आइए अब आपको सुनवाते हैं गाइड फिल्म का ये गाना, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ में।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: श्रोताओं, ये आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है और आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। आइए सुनते हैं शोर फिल्म का ये गाना, मन्ना डे और महेंद्र कपूर की आवाज में।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब यही समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। श्रोताओं, आइए जुड़ते हैं हमारे जयपुर अजमेर केंद्र से, वहां से सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार।

0: समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवा विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, विनिर्माण, सेमीकंडक्टर और ड्रोन जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत आज दुनिया के प्रमुख स्टार्टअप केंद्रों में शामिल है और इसकी सफलता में छोटे शहरों और गांवों के युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री ने खेलों में युवाओं के उत्कृष्ट प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा कि भारतीय खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में देश का गौरव बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया और अटल इनोवेशन मिशन जैसी पहलों ने नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा दिया है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों से एनडीए सरकार युवा नेतृत्व वाले विकास को प्रोत्साहित कर रही है, जिससे देश के युवाओं का आत्मविश्वास बढ़ा है और वे अपने सपनों को साकार कर रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज हैदराबाद के दुंडीगल स्थित वायुसेना अकादमी के 217वें बैच की संयुक्त दीक्षांत परेड का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने नव नियुक्त अधिकारियों से बदलती युद्ध तकनीकों के अनुरूप खुद को तैयार रखने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आधुनिक युद्ध में ड्रोन, उपग्रह और रोबोटिक्स जैसी तकनीकों की भूमिका बढ़ रही है। रक्षा मंत्री ने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रशिक्षित महिला कैडेट्स के पहले बैच को भी शामिल किया। समारोह में सुखोई 30, एमकेआई, सारंग और सूर्य किरण एरोबेटिक टीम द्वारा हवाई प्रदर्शन किया गया। असम में आज सुबह भारतीय वायुसेना का एक AN-32 विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। यह हादसा जोरहाट वायुसेना स्टेशन पर हुआ। विमान क्रैश होने के बाद उसमें आग लग गई। फिलहाल दमकल की गाड़ियां घटनास्थल पर मौजूद हैं और राहत बचाव कार्य जारी है। घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है। राजस्थान काडर के 2 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों को केंद्र सरकार में महानिदेशक यानी डीजी स्तर के पदों पर नियुक्ति के लिए चुना गया है। केंद्र की कैबिनेट नियुक्ति समिति ने राजस्थान के 1995 बैच के आईपीएस अधिकारी एमएन दिनेश और बीजू जॉर्ज जोसेफ को केंद्र में डीजी या उसके समकक्ष पदों पर पदस्थापना के लिए सूचीबद्ध करने की मंजूरी दे दी है। इस सूची में इन दोनों अधिकारियों सहित देश भर के विभिन्न राज्यों के कुल 33 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों को जगह मिली है, जिनमें 1990 से 1995 बैच तक के अधिकारी शामिल हैं। राज्य सरकार द्वारा जयपुर डेयरी के संयंत्र का आधुनिकीकरण किया गया है। इस पर 133 करोड़ रुपए की लागत आई है। डेयरी मंत्री जोराराम कुमावत ने बताया कि प्लांट के नवीनीकरण से इसकी दूध प्रसंस्करण क्षमता 20 लाख लीटर प्रतिदिन हो गई है। वहीं दूध पैकिंग की क्षमता भी 16.5 लाख प्रतिदिन पहुंच गई है। पहले इसकी दूध पैकिंग क्षमता 10 लाख लीटर थी। इस मेगा प्लांट का जल्द ही उद्घाटन किया जाएगा। इस प्लांट से जयपुर और आसपास के उपभोक्ताओं को उच्च गुणवत्ता वाला दूध मिलेगा। साथ ही पशुपालकों से अधिक मात्रा में दूध खरीद होने से उन्हें सीधा फायदा होगा। पाली के सोजत सिटी में मेहंदी व्यापारियों के लिए एक कार्यशाला रखी गई। डाक विभाग और मेहंदी व्यापार संघ की ओर से आयोजित इस कार्यशाला में सोजत की विश्व प्रसिद्ध मेहंदी और अन्य स्थानीय उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने पर चर्चा की गई। कार्यशाला में पाली के डाकघर अधीक्षक तरुण शर्मा ने बताया कि डाकघर निर्यात केंद्र छोटे और मध्यम व्यापारियों के लिए वैश्विक बाजार से जुड़ने का एक आसान और प्रभावी माध्यम है। इस दौरान व्यापारियों को निर्यात पंजीकरण, अंतर्राष्ट्रीय पार्सल बुकिंग, कस्टम प्रक्रियाएं, जीएसटी और आयात निर्यात कोड की जानकारी दी गई। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से राज्य में अधिकांश हिस्सों में मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया है। अधिक आंधी और बारिश से लोगों को भीषण गर्मी और उमस से राहत मिली है। मौसम विभाग ने आज भी राज्य के 23 जिलों में तेज हवाओं और बारिश का अलर्ट जारी किया है। पिछले 24 घंटों के दौरान राजधानी जयपुर सहित कई जिलों में रुक रुक कर बारिश का दौर चला। हनुमानगढ़, सीकर, श्रीगंगानगर और चूरू के कुछ इलाकों में ओले भी गिरे। प्रदेश में सबसे ज्यादा 50 मिलीमीटर बारिश सीकर के दांता रामगढ़ में दर्ज की गई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज़ पर।

0: राम राम ममता भैसा,
1: राम राम नीमा भैसा, राम राम।
0: और आपने कार्यक्रम होने वाली आपानी सखी सहेलियां आपानी हाथना आपानी बेना सब ने आपनो
1: राम राम सा।
0: देखो आपने कार्यक्रम रो टेम भी और देखो भैसा आपी दोई भी आई गया और आपानी बेना भी आई गई है कि आज आपने कार्यक्रम में जानकारी देवांगा आपी महिला ने और नरी तरीकारी आपे जानकारी रेला रेला रे मनोरंजन भी करावांगा। देखो देश दुनिया री बात भी करांगा और खेतीबाड़ी री बात, बाल बच्चा री बात, अपने विकास री मतलब अपनो विकास किस तरह कर सका, अपा रोजगार किस तरह कमाई सका, अड़ा सब रे बारे में आप ही अपनी बेना ने आज जानकारी दंगा। और सबों पहली विचार वाली बात यह है कि देखो अपनी जो बेना है महिला है जी लुगाया, हाँ आप ही देखो कहवे कि लुगाया एक घर री धुरी वेवे, एक समाज री धुरी वेवे। और बच्चा रे बात यो क्यों जावे कि एक बच्चो है अगर अच्छो शिक्षित है, अच्छो भण्यो पढ़ियो है तो वो एक बड़ो वेन एक अच्छो नागरिक बन सके। तो केवारो मतलब यो है कि महिला और बाल यानी कि बच्चा रे और महिला रो अगर विकास अगर सही वे जागा तो वनारो बहुत अच्छी तरीके से सशक्तिकरण वे जागा सा।
1: बिल्कुल सा, महिला और बाल विकास समाज रा सब दो महत्वपूर्ण पहलू है सा, जेटे महिला और बच्चा है वनारो सशक्तिकरण ही समग्र समाज रो उन्नति करेगा, क्योंकि देखो महिला और बच्चे ही समाज की धुरी है सा।
0: बिल्कुल सा, और जितने बात करा भी मैं बार क्यों कि आपने आर्थिक सशक्तिकरण और आर्थिक सशक्तिकरण अपने बेनरों में बहुत ही जरूरी है। देखो कौशल विकास रे जरिए अपने नरे हरा व्यवसाय है आप जो बेना कर सके, जैसा सिलाई कर सके, थोड़ी घनी भणी पड़ी है तो कंप्यूटर रो कर सके है, और नरे सारी अपनी बेना है जी हस्तशिल्प रो भी कर सके, जैसे मिट्टी रा बर्तन बनावना है या खिलौना बनावना है, नरे हर ऐसा चीज है वनारो काम भी कर सके, जैसे गोदड़िया बनावनी आजकल बहुत सारी ऐसी चीज़ है, गोदड़िया भी खूब बिक्री है नहीं सा। तो और ये तो घर बैठा बैठा ये नरे सारा जो काम है वणियों करी जो अपनी बेना है भी दो पैसा कमाई सके।
1: बिल्कुल सा, अपनी बेना पुरानी जे परंपरा है जैसे कि आप बताई गोदड़िया, तो वे कतरन वे तो अणी जो मौसम गर्मी रो मौसम है वे गोदड़िया अपने वाते नरी उपयोगी भी वे और ठंडक भी रहे वे। तो आप अपना पारंपरिक अपना व्यवसाय नहीं शुरू कर सके लारे लारे अपन हिमा बैसा स्वयं सहायता समूह की बात करा तो महिला छोटा छोटा समूह में जोड़ी ने वित्तीय सहायता और ऋण की सुविधा भी बनाने मिले है जणी हुए अपनो स्वयं रो व्यवसाय खड़ो कर सके सा।
0: बिल्कुल सा, और देखो ये सब काम करवा वाते बेनारो स्वास्थ्य यानी कि शरीर हाउ बेनो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर स्वस्थ शरीर वेगा जदिस आप ही धमकिन काम कर सका। तो अंडे वास्ते गाँव में आंगनवाड़ी जी भी केंद्र है, विने आप कही सका कि भी अपने बेना और बाल बच्चा रे वाते रीढ़ री हड्डी है, क्योंकि वे जतरी भी गर्भवती महिला है या जी दूध पाव वाली बेना है या छोटा 6 सालों छोटा बच्चा है अपना बाल बच्चा है वना ने पूरक जो पोषक आहार है वो टेम टेम पे अपने आंगनवाड़िया जरे दियो जावे और टेम टेम पे वना रे स्वास्थ्य री जांच भी वे वैसा।
1: बिल्कुल सा, और निमा वैसा कहवे है कि स्वास्थ्य अपनो पहलो धन वे, अगर आप स्वस्थ रहवांगा तो आप बढ़िया काम करांगा। लारे लारे आप पोषण री बात करा तो पोषण अभियान है जैसे कार्यक्रम है वना में बच्चा री शारीरिक जो कमजोरी है वने दूर कियो जावे और बच्चा स्वस्थ वेगा जदिस वे आगे जाइने एक सशक्त नागरिक बन सकेगा सा।
0: और देखो सा अगर आपने जीवन में सब कुछ है लेकिन शांति नहीं है, कोई अपने आपने परेशान कर रही हो जैसे अपनी बेना है अबे घरेलू हिंसा में अगर परेशान कर रहा है, कटे भी काम कर रही है, कार्यस्थल पे कोई भी वना ने परेशान कर रहा है या वना छोटा बना में वना रो व्याव कर ही रहा है या अपने बाल बच्चा है वना ने छोटा छोटा नहीं कोई काम पे ले जा रो है काम करवाते, तो ये ऐसी समस्या है जिनके खिलाफ भी अपने सामाजिक सुरक्षा देनी पड़े सा।
1: बिल्कुल सा, लारे लारे आपा आपातकालीन सहायता की बात करा तो वन टॉप सेंटर जणी में सखी और महिला हेल्पलाइन 100

0: कोई भी चीज़ मंगावनी है, बाजार नहीं जानो तावड़ा में, तो भी आप घरे आई जाए सा ऑनलाइन। और जिस तरह अपने घर री सुरक्षा जरूरी है, हर कीमती सामान री सुरक्षा जरूरी है, जिस तरह इस ममता भाई सा अपना जो ये मोबाइल है, ये जितना भी डिजिटल गैजेट से अपना ची चीज़ा है, वन में सुरक्षा भी बहुत जरूरी है। देखो सा अभी गेला में चला है नहीं सा, तो वन में भी तो हाव चेत रहना पड़े अपने, एक भाई कटी ठोकर नहीं लागी जा, कटी कोई आई दे पड़ी नहीं जा, कोई आड़े पड़े है नहीं सा। तो अनेस तरीके अपने अना सबरी भी सुरक्षा रखनी बहुत जरूरी है, नहीं तो अपने घणो आरो नुकसान वही जा सा।
1: बिल्कुल, केवे है नहीं कि भाई सावधानी हटी ने दुर्घटना घटी, चाहे घर में वो चाहे बाने वो। और आप कह रहा कि भाई मोबाइल तो मोबाइल में कई करे ऑनलाइन शॉपिंग और कई खरीदारी लाइन भर बैठा बैठा
0: आप ही है नहीं, कतरी बार खरीदारी करा तो पैसा भी वन में ही से अपना,
1: हाँ
0: अपना जो भी बैंक रहा नंबर है भी वन में ही से, हर चीज अपने वन में ही से, मतलब एक क्लिक करे नहीं कोई और अपना बैंक रो खातो खाली कर सके।
1: बिल्कुल,
0: चोरी करवारी जरूरत ही नहीं,
1: बस अटू ही जा सब चोरी।
0: चोरी
1: तो साइबर सुरक्षा जागरूकता अपने सहेले ने बतावा कि कतरी जरूरी है सा।
0: अणि
1: डिजिटल युग में आपने जीवन ने आसान बने दीदो है, लेकिन आपा देखा कि अणि में आपने नरिहार नुकसान है। तो अणि में आपा एक बात करा फिशिंग री। फिशिंग में देखो फर्जी मैसेज, ईमेल या पचे व्हाट्सएप रा लिंक जो बिल्कुल आपने असली बैंक या सरकारी योजना जैसा दिखे है, अण आपे क्लिक करते ही अपनी जो निजी जानकारी है वह बिल्कुल

0: ईमेल या पचे व्हाट्सएप रा लिंक जो बिल्कुल आपने असली बैंक या सरकारी योजना जैसा दिखे है और आप क्लिक करते हैं आपनी जो निजी जानकारी है वह बिल्कुल चोरी वे जैसा
1: बिल्कुल सा। और अन्य अलावा देखो आप ऑनलाइन बैंकिंग धोखाधड़ी भी वे जैसे कोई आपने फोन करे भाई था लॉटरी जीती ली थी कोई बिजली का यूँ धमकी देवे कि थाने बिजली का बिल कट जाएगा नहीं तो था अतरा पया भेजो। अबे केवाईसी रे बात है केवे तो केवाईसी अपने बैंक में जाइन अपडेट करानी यूँ नहीं आप फोन पे देता रहन कहता रहन कोई ओटीपी मांगे न कोई की मांगे ना आप ही देता रहा और पचे अपन सब सूचना मंडे को पहुँच जा। तो अन्य बात है बहुत ही ज़्यादा हावचेत रहना है कि मोबाइल पर अपने कोई भी चीज़ें आई रही है कोई ओटीपी पूछी रहो कोई कोई पूछी रहो तो अपने कह दो ना भाई भाई देख मु काले बैंक में जाइन मिल जूंगा न अबार मु बैंक रे पड़े सू बैंक में जाइन मिली रहूँ तो देखो अपने भी थोड़ो जीव में संतोष भी जाएगा सा है
0: बिल्कुल सा। और आजकल नीमा भाईसा एक जनगणना रो भी चली रो है तो वणी में भी आजकल हुणमा में आयो कि भाई ओटीपी मांगी रहा तो वणी में भी आपने सावधानी रखनी जरूरी है ओटीपी नहीं देनो बिल्कुल।
1: हाँ देखो सा मारे घरे तो जनगणना वाला है तो मैं तो वंडो आई कार्ड देखियो मैं कह भाई मुँह भी बहन जी तू पहली मैंने आई कार्ड बता है नहीं सा मैं वंडो पूरो आई कार्ड देखियो वंडो पूरो करसा स्कूल में आयो कटू आयो कहीं नहीं है सब देखी तू कहीं पचे मैं हमारी जनगणना की जानकारी दी थी तो अपन ही बहना ने यू इसको कि भाई आप भी यू इस हाव चेत रहो भाई देखो भाई कसा स्कूल आया थानो नाम कही है मान साहब बटे का कई विषय बनाओ ताकि वो सक पकड़ जाए और हाकड़ो काकड़ो भेज जा तो समझ लो कहीं कहीं गड़बड़ है नहीं सा और वो राजी राजी बताई देता हाँ भाई ठीक है
0: तो अणि हूँ अपनी निजी जानकारी आप वहाँ कने दूसरा ने नहीं देवांगा और सावचेत वही अपने ध्यान रखना। अणि मैं आप देखो साइबर सुरक्षा में आगे बात करी रहा माल वेयरी तो मोबाइल या पचे कंप्यूटर में अनजाना में कोई खतरनाक ऐप या वायरस डाउनलोड वही जावे जो आपरा डेटा ने हैक कर सके। और आप देखो दिन भर मोबाइल चलाए तो अपने जो काम री ऐप नहीं है वने अपने वे सके जतरे सहेलिया ने यो कहना है कि भाई डाउनलोड नहीं करनी है
1: नहीं भी करनी और डाउनलोड वे भी की तो आप दिन भर में दे अपने घर री साफ सफाई करा बिस्तर ही झांझ पड़िया थोड़ो आधो घंटो निकाली ना मोबाइल पे जी भी गलत चीज आई रही है या जहाँ ये थाने नहीं पसंद है भी हटे दो। अन्य अलावा भी देखो सोशल मीडिया हैक भी वही जा जैसे फेसबुक है व्हाट्सअप है या इंस्टाग्राम पर आई डी हैक कर आप दोस्तों को भी कोई पैसा मांग सके और यो आजकल बहुत ही ज़्यादा चली रही और अन्य अलावा अपना जो सोशल मीडिया रहा बैंकिंग एप्स है जनाने अन्नो कई करनो कि आपने खोलवा वाते पासवर्ड है नहीं बिल्कुल मजबूत पासवर्ड बनानो यानी कि असो बनानो जे दूसरों कोई होच नहीं सके कंडो पासवर्ड कही है नहीं सा व्हाट्सअप रो पासवर्ड और सब रो पासवर्ड अन्य वाला आपनी जानकारी रे सभी जी जरूरी जानकारियां है वने अकाउंट में डालवा वाते एक आवे 2FA तो यो चालू कर लेनो और अनमें पासवर्ड पतो वेवा पर भी आपनो अकाउंट बिना ओटीपी कोई नहीं खोल सकेगा यो आपने अगर आप डाउन कर लोड कर लोगा तो साइबर क्राइम हो आप ही वंची सका सा
0: बिल्कुल सा। और एक यो है कि आपनो जो बैंक अकाउंट है वना नंबर आपने एटीएम और पिन यूपीआई पिन ओटीपी कदी भी कोई भी कन मांगे तो वने लारे साझा नहीं करनो है। लारे लारे एक बात रो और ध्यान रखना है कि सार्वजनिक जा जगह है बटे आपने वाईफाई रो इस्तेमाल कदी नहीं करनो क्योंकि पैसा लेन देन भी वनी वाईफाई आपने नहीं करनो
1: बिल्कुल सा बटे सार्वजनिक जगह रो जो वाईफाई वे वन में अपना जो नंबर चला जावे अन्य अलावा अगर आप रे लारे असो भगवान नहीं करे वही जावे और कदी असो वे गयो कि पया निकल गया है या कोई भी साइबर क्राइम में गयो तो तुरंत आपने शिकायत करनी शिकायत रा नंबर है 1930 अणी पे आपने फ़ोन करनो है। अन्य अलावा www.cybercrime.government.in पर जाइन आपने ऑनलाइन शिकायत भी आप ही दर्ज कर सका सा।
0: लारे लारे बैंक ने भी आपने तुरंत सूचित करना है अपना एटीएम कार्ड यूपीआई और नेट बैंकिंग ने आपने ब्लॉक करवाना वनी स्टेम पे
1: तो बिल्कुल सा अगर आपने बिना हावचेत रहेगा आप ही जी जानकारियां दे दी वणी हूणी हावचेत रहेगा तो वना ने देखो ये यानी साइबर क्राइम हो वंची सकेगा। और देखो सा आभार तो अपनी बिना पियर में है लेकिन देखो सा अबे तो वर्का छांटो आवा वाला है सावन भी आवा वालो है न देखो सा अबे लेरिया वेरिया ले लो मम्मी कोड़ू है नहीं सा अपनी मम्मी कोड़ू ले लो भाई मैंने लेरियो देवाई दे और अब अपना हारे भी तो जानो पाचो
0: बिल्कुल सा
1: तो पहुँचावा सा हारे
0: पहुँचाई दो।

0: रंगरेजा रंगदे लहरियो सासरिये जाणो है। भाई छुट्टियाँ वेगी पूरी है, भाई सासरे तो जाणो ही पड़ेगा। और देखो अपनी बिना जैसे सासरे जाएगा तो देखो बाल बच्चा तो अभी स्कूल खुलवा वाला स्कूल पर जाएगा। और देखो महंगाई रो जमानो है बार, तो एक रे कमाइयों तो काम चाले नहीं। अपने बिना ने भी देखो खेती बाड़ी में तो करे है, लेकिन टेम पे में बच्चे अगर टाइम मिले खेती बाड़ी रे न रो हारो टाइम असो मिले 2-4 घंटा कि आप घर में रहो, अपने घर मोबाइल देखो उन घरे हुआ अच्छो है कि आप ही कहीं ना कहीं उद्योग धंधा करा। तो अपने बिना ने बतावा आप ही कि खिलौना उद्योग, क्योंकि अपने बिना जाने हैं कि बच्चा ने कसो खिलौनो पसंद है, कसो खिलौना खेलेगा तो बच्चा रे लागी नहीं सके, वो पड़ी जा तो भी नहीं लागी सके। तो अन्य जानकारी वे अपनी बिना ने है। अणी बात है खिलौना उद्योग अगर अपनी बिना खोलेगा तो वड़ा ने बहुत ही अच्छो मुनाफो वे सके और बहुत ही अच्छो चाल सके सा।
1: बिल्कुल सा, महिला देखो खिलौना उद्योग अगर करेगा तो वो एक बेहतरीन और सफल करियर बिना आनी में बनी सके। आज रा टेम पे आपा देखा सरकार वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत रे तहत पारंपरिक और आधुनिक जो भारतीय खिलौना है वणा ने बढ़ावो दे रही है। और अणु जो है ये क्षेत्र महिला रे वाते आर्थिक रूप मजबूत वणा ने वे सके, महिला और वणा रे वाते एक अच्छो व्यवसाय है क्योंकि घर बैठा भी यो काम वे कर सके और उन्हें छोटा रूप प्रारंभ वे कर सके ने अपने व्यवसाय ने अच्छो ऊपर तक ले जा सके।
0: बिल्कुल सा। और अणि में जो खिलौना वणा वाली जटे बात करा तो आपने पारंपरिक और हस्तशिल्प खिलौना जैसे कि आपने अबार छुट्टियां में डुलिया बनावे नहीं कपड़ा री डुलिया, पहले तो आप
1: पहली बनाता
0: पहले आप छोटा यदि ये कपड़ा री डुलियो खेलता जैसे कपड़ा री डुलिया बनाई सके, लकड़ी री कठपुतलियां बनवाई सके, अन्य अलावा लकड़ी रा नरे हारा खिलौना पहली मतलब आज 20-25 साल पहली उदयपुर रा

अभी आपने सुना बहनों का कार्यक्रम सहेलिया रिबाड़ी। ये आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। मीडियम बीप 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। तो आपको सुनवाते हैं ये गाना अनुराधा पौडवाल और साथियों की आवाज़ में। फिल्म है नागमणी।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। आइए आपको सुनवाते हैं अगला गाना अनुराधा पौडवाल और पंकज उदास की आवाज में। फिल्म है लाल दुपट्टा मलमल का।

0: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
1: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

श्रोताओं, यह आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है और आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। आइए आपको सुनवाते हैं अगला गाना लता मंगेशकर की आवाज़ में, और फिल्म है खानदान।

श्रोताओं, इस प्रोमो से पहले अभी आपने सुना था गीत चांदनी फिल्म से। इसे गाया था लता मंगेशकर और बाबेल मेहता ने। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, आइए सुनते हैं विकास चर्चा।

सेंटर, ग्लोबल कैपेबिलिटी और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग जैसे उभरते क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करना, औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति, राज्य में बुनियादी ढांचे को विश्व स्तरीय बनाने के लिए यह नीति निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करती है। इसका जो विकास मॉडल है, इसमें पूर्ण निजी स्वामित्व, हाइब्रिड मॉडल, सार्वजनिक निजी भागीदारी जैसे विकल्प दिए गए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए 20 करोड़ से लेकर 40 करोड़ रुपए तक की कैपिटल सब्सिडी का प्रावधान है। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना जैसे कार्यक्रमों के जरिए उद्यमियों को आसान ऋण और ब्याज अनुदान दिया जा रहा है।

आत्मनिर्भरता और मेक इन इंडिया, ये योजनाएं न केवल राज्य स्तर पर बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्यों को पूरा करने में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं।

अभी आपने सुना विकास चर्चा, ये आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। श्रोताओं आइए जुड़ते हैं हमारे दिल्ली केंद्र से, वहां से सुनेंगे हिंदी में दोपहर समाचार का ये अंक। समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 दिन की फ्रांस और स्लोवाकिया यात्रा पर रवाना। कहा, यात्रा से फ्रांस के साथ आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध मजबूत होंगे, स्लोवाकिया के साथ द्विपक्षीय सहयोग को नई गति मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी की पासिंग आउट परेड में कैडेटों की सराहना की। कहा, पहली बार 9 महिला कैडेट का शामिल होना महिला नेतृत्व वाले विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम। भारत ने खाड़ी क्षेत्र में तेल पोत पर अमरीकी नौसेना के हमले का कड़ा विरोध किया। हमले में 3 भारतीय नाविकों की मौत हुई थी। वायुसेना का AN-32 विमान असम के जोरहाट स्टेशन पर दुर्घटनाग्रस्त। और धर्मशाला में भारत अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला के पहले मैच में बारिश के कारण देरी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने प्रस्थान वक्तव्य में कहा कि फ्रांस भारत के लिए रणनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। श्री मोदी ने कहा कि इस यात्रा से भारत और फ्रांस के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध और प्रगाढ़ होंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट्स सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। नीस से हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले नीस में भारतीय समुदाय और कारोबारी जगत में उत्साह का माहौल है। उनके स्वागत के लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। भारत और फ्रांस के लोगों के बीच संबंध

0: लगातार मजबूत हो रहे हैं। वर्तमान में लगभग 10,000 भारतीय छात्र फ्रांस में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। दोनों देशों का लक्ष्य है कि वर्ष 2030 तक ये संख्या बढ़कर 30,000 हो जाए। खासकर विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित यानी स्टेम क्षेत्रों में छात्रों को बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है। फ्रांस ने भारतीय छात्रों और युवाओं के लिए 5 वर्ष का शेंगेन वीजा, पढ़ाई पूरी करने के बाद 2 वर्ष का वर्क परमिट और 18 से 35 वर्ष के युवाओं के लिए यंग प्रोफेशनल स्कीम जैसे कई अवसर उपलब्ध कराए हैं। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में फ्रांस में भारत के राजदूत संजीव सिंघला ने बताया,
1: वहाँ ये स्पष्ट सोच है कि फ्रांस जैसी महत्वपूर्ण साझेदारियाँ जिनके साथ भारत की एक विशेष वैश्विक रणनीतिक भागीदारी है, केवल सरकारों के स्तर पर नहीं बल्कि लोगों के बीच मजबूत संबंधों पर आधारित होनी चाहिए।
0: राजदूत सिंघला ने कहा कि भारत इनोवेट्स कार्यक्रम भारत और फ्रांस की मजबूत होती साझेदारी को नई दिशा देगा। नीस से शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
2: यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी कल स्लोवाकिया के लिए रवाना होंगे। एक रिपोर्ट।
3: ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको से मुलाकात करेंगे। उन्होंने कहा कि यह यात्रा यूरोपियन यूनियन के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगी, जिसमें स्लोवाकिया एक महत्वपूर्ण और मूल्यवान भागीदार है। स्लोवाकिया यात्रा के बाद प्रधानमंत्री फ्रांस के एवियन जाएंगे, जहां वे 16 और 17 जून को आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 में भारत की मौजूदगी दुनिया में भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा और उसके प्रति देशों के विश्वास को दर्शाती है। उन्होंने बताया कि यह लगातार 8वां G7 शिखर सम्मेलन है जिसमें भारत को आमंत्रित किया गया है। अपनी यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जून को पेरिस में आयोजित वाइवाटेक 2026 में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ शामिल होंगे। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: स्लोवाकिया में भारतीय समुदाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली यात्रा का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने कहा कि भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के अंतिम रूप लेने से भारत और स्लोवाकिया के बीच सहयोग को नई गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि दोनों देश रक्षा क्षेत्र में संयुक्त उत्पादन और शोध को बढ़ावा देने के इच्छुक हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारतीय सेना को आज 481 नए युवा अधिकारी मिले हैं। पहली बार 9 महिला कैडेट को भी इसमें शामिल किया गया है। ये महिला नेतृत्व वाले विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उत्तराखंड स्थित भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में आज 158वीं पासिंग आउट परेड का आयोजन हुआ। इस दौरान युवा कैडेट्स ने अनुशासन, परिश्रम और सैन्य गौरव का अनुकरणीय प्रदर्शन किया। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
4: आईएमए स्थित ऐतिहासिक चेटवुड भवन के समक्ष आयोजित परेड ग्राउंड में कुल 515 जेंटलमैन और महिला कैडेट ने अंतिम पग पार कर सेना अधिकारी बनने का गौरव प्राप्त किया। इनमें 34 कैडेट मित्र राष्ट्रों से हैं, जो प्रशिक्षण पूरा कर अब अपने अपने देशों की सेनाओं में शामिल होंगे। परेड का निरीक्षण राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विंग ऑफिसर के रूप में किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा,
5: इन एन एरा ऑफ रैपिडली चेंजिंग सिक्योरिटी चैलेंजेस, टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस एंड कॉम्प्लेक्स ग्लोबल Governments, the Indian Army must remain adaptive and future ready. I urge you to be lifelong leaders, learners, courageous decision makers and ethical leaders.
4: पासिंग आउट में प्रशिक्षण अवधि के दौरान समग्र उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित सॉर्ड ऑफ ऑनर विशाल कुमार को प्रदान किया गया। ऑर्डर ऑफ मेरिट में भी ऑफिसर कैडेट विशाल कुमार प्रथम स्थान पर रहे, प्रिंस राज दूसरे स्थान पर रहे, जबकि तेजस भट्ट ने तीसरा स्थान हासिल किया। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
2: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज हैदराबाद के डुंडीगल स्थित वायुसेना अकादमी में 217वें बैच की संयुक्त दीक्षांत परेड का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने नवनियुक्त अधिकारियों से बदलती युद्ध तकनीकों के अनुरूप खुद को तैयार रखने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आधुनिक युद्ध में ड्रोन, उपग्रह और रोबोटिक्स जैसी तकनीकों की भूमिका बढ़ रही है।
6: राडार, सैटेलाइट, ड्रोन, सेंसर और रोबोटिक्स जैसे अनेक सिस्टम आज के युद्ध में डिप्लॉय हैं, जिनमें न तो फाइटर का पता चलता है न उसकी मशीनरी और इक्विपमेंट का। तो अब तो ऐसे सिनेरियो भी सामने आ रहे हैं जहां पूरी तरह से अपने एडवर्सरी के ट्रैफिक सिस्टम और सीसीटीवी तक को कंट्रोल कर लिया जा रहा है।

0: आज वारफेयर की डेफिनेशन काफी हद तक बदल चुकी है।
1: समारोह में सुखोई 30, एमकेआई, सारंग और सूर्य किरण एरोबेटिक्स टीम द्वारा हवाई प्रदर्शन किया गया। रक्षा मंत्री ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ को लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल रोधी तथा मध्यम दूरी की पोत रोधी क्षमता का प्रदर्शन करने वाले लगातार 3 सफल परीक्षणों के लिए बधाई दी है। रक्षा मंत्री ने कहा कि इन परीक्षणों से भारत अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल हमले रोकने में सक्षम विशिष्ट देशों के समूह में

0: बदलावों का अध्ययन करने के निर्देश दिए। बैठक में गृहमंत्री ने आयोग से सीमावर्ती क्षेत्रों, महानगरों और औद्योगिक शहरों का दौरा कर स्थिति का आकलन करने को भी कहा। केंद्र सरकार ने पिछले महीने अवैध प्रवासन और अन्य असामान्य कारणों से हो रहे जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का अध्ययन करने तथा उनसे निपटने के उपाय सुझाने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत में खाड़ी में अमरीकी नौसेना के हमलों पर कड़ा विरोध जताया है। इन हमलों में 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। डॉ जयशंकर ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पर इस तरह की घातक कार्रवाई उचित नहीं है। एक रिपोर्ट।
1: ओमान तट पर टैंकर एम्प्टी स्टेटेबेलो पर अमेरिकी हमले में 3 भारतीय चालक दल के सदस्यों की मौत के कुछ दिनों बाद यह बातचीत हुई। जहाज पर भारतीय चालक दल के 24 सदस्य सवार थे। इनमें से 21 सदस्यों को सुरक्षित बचा लिया गया। इस घटना के बाद भारत ने कड़ा विरोध जताते हुए अमेरिकी राजनयिक को नई दिल्ली में तलब किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इससे पहले कहा था कि भारतीय चालक दल के सदस्यों को ले जाने वाले व्यापारिक जहाजों पर हमले तुरंत बंद होने चाहिए। समाचार कक्ष से मेघना शर्मा।
0: प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा ने कहा है कि भारत के शहरों को आर्थिक रूप से मजबूत, पर्यावरण के अनुकूल, सामाजिक रूप से समावेशी, तकनीक आधारित और चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होना चाहिए। नई दिल्ली में राष्ट्रीय शहरी मामलों के संस्थान के स्वर्ण जयंती समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि संस्थान ने देश में शहरी विकास को दिशा देने और शहरों की क्षमताओं को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। खुदरा मुद्रास्फीति इस वर्ष मई में बढ़कर 3.93% हो गई है। लगातार 5वें महीने महंगाई में वृद्धि दर्ज हुई है। अप्रैल में ये 3.48% थी। ग्रामीण क्षेत्रों में मुद्रास्फीति बढ़कर 4.25% हो गई, जबकि शहरी क्षेत्रों में ये 3.53% रही। भारतीय वायुसेना का AN-32 विमान आज सुबह असम में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। यह हादसा जोरहाट वायुसेना स्टेशन पर हुआ। विमान क्रैश होने के बाद आग लग गई। वायुसेना ने कहा है कि दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए जांच समिति गठित की जा रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ईरान ने कहा है कि वह अमरीका के साथ जारी संघर्ष को समाप्त करने के लिए अंतिम शांति समझौते पर तब तक हस्ताक्षर नहीं करेगा जब तक उसकी प्रमुख शर्तें पूरी नहीं हो जाती। हालांकि ऐसी खबरें हैं कि दोनों पक्ष शुरुआती समझौते के करीब हैं।
2: ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने कहा है कि समझौता ज्ञापन का मसौदा तैयार कर लिया गया है और आने वाले दिनों में इस पर डिजिटल रूप से हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। हालांकि ईरान ने कहा है कि वो तब तक स्थायी समझौता नहीं करेगा जब तक अमरीका अपनी नौसैनिक नाकाबंदी नहीं हटाता और अरबों डॉलर की फ्रीज की गई परिसंपत्तियों के नुकसान की भरपाई नहीं करता। इस बीच पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में चल रही गुप्त वार्ता में अमरीकी और पाकिस्तानी मध्यस्थों ने पुष्टि की है कि दोनों पक्ष शांति समझौते के मसौदे पर सहमत हो गए हैं। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: इस बीच ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि वह ईरान के नागरिक परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को मंजूरी देने के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए तेहरान को परमाणु हथियार निर्माण से जुड़ी बुनियादी ढांचे को खत्म करना होगा। ये स्पष्टीकरण तब आया है जब ट्रंप प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कल प्रस्तावित अमरीका ईरान परमाणु समझौते का विवरण प्रस्तुत किया। फिनलैंड की विदेश मंत्री एलिना वाल्टुनेन ने रूस से तेल खरीदने के भारत के निर्णय का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि भारत ने पश्चिमी देशों की निर्धारित मूल्य सीमा का पालन किया है। फिनलैंड में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ बैठक में उन्होंने कहा कि ये मूल्य सीमा वैश्विक तेल आपूर्ति को बनाए रखने और रूस के मुनाफे को सीमित करने के लिए बनाई गई थी। नीति आयोग और जर्मनी के प्रतिनिधिमंडल के बीच नई दिल्ली में भारत जर्मनी विकास सहयोग को मजबूत करने के लिए एक बैठक हुई। बैठक में स्वच्छ ऊर्जा, पर्यावरण संरक्षण, टिकाऊ विकास, कृषि सुधार, जल प्रबंधन और हरित अर्थव्यवस्था में छोटे और मध्यम उद्यमों की भागीदारी जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। दोनों पक्षों ने जलवायु परिवर्तन से निपटने और सतत विकास के लिए आपसी सहयोग बढ़ाने पर भी जोर दिया। दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी एलन मस्क दुनिया के पहले खरबपति बन गए हैं। ये उपलब्धि उनकी कंपनी

0: स्पेस एक्स के शेयर बाजार में शानदार शुरुआत के बाद हासिल हुई है। स्पेस एक्स के शेयरों का मूल्यांकन बढ़कर लगभग 2,10,000 करोड़ डॉलर हो गया है। कारोबार के पहले दिन स्पेस एक्स के शेयरों में 19% से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की गई। ऑस्ट्रेलियाई बैडमिंटन ओपन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में भारत की दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु को हार का सामना करना पड़ा। सिडनी में जापान की अकाने यामागुची ने सिंधु को पराजित किया। इसके साथ ही प्रतियोगिता में भारत का सफर समाप्त हो गया है। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में बारिश के कारण देरी हो रही है। टॉस का समय दोपहर 1 बजे निर्धारित था, लेकिन तेज बारिश के कारण टॉस अभी नहीं हो पाया है। ये मैच हिमाचल के धर्मशाला में खेला जाना है। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 2-3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के मध्य अरब सागर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड और बिहार के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना है। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भी आज रात गरज और तेज हवाओं के साथ वर्षा की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 दिन की फ्रांस और स्लोवाकिया यात्रा पर रवाना। कहा, यात्रा से फ्रांस के साथ आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध मजबूत होंगे। स्लोवाकिया के साथ द्विपक्षीय सहयोग को नई गति मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी की पासिंग आउट परेड में कैडेटों की सराहना की। कहा, पहली बार 9 महिला कैडेट का शामिल होना महिला नेतृत्व वाले विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम। और धर्मशाला में भारत अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला के पहले मैच में बारिश के कारण देरी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 266.66 मीटर अर्थात 1125 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। दिन के 2:30 हुए हैं। श्रोताओं, आइए सुनते हैं किसान भाइयों का दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत।

0: राम राम ममता भैसा।
1: राम राम नीमा भैसा। राम राम।
0: और कृषि जगत कार्यक्रम होने वाला अपने सब किसान भाई और बहना ने अपनो
1: राम राम सा।
0: देखो सा अपने कार्यक्रम रो टाइम भी हो और दोपहरी रो टाइम भी हो तो भोजन करें सब किसान भाई और बहना थोड़ा फारिक भिया है और थकिया बच्चा थोड़ी देर बैठा है तो आपकी खेती बाड़ी री थोड़ी और वाताचीता कर ला ताकि वनारे खेती बाड़ी करवा में आसानी रहे सा।
1: बिल्कुल सा। और नीमा भाई सा जटे अपना किसान भाई खेती बाड़ी करे और लारे लारे देखो पशुपालन भी करे।
0: बिल्कुल।
1: और पशुपालन में गाय भैंस रो पालन करे। पर देखो आज आप किसान भाई ने किसान की बात में जानकारी करावा कि भाई गाय भैंस रो पालन तो ठीक है पर अगर बकरी रो पालन करे तो बनी वनारे एक अतिरिक्त आय वे सके। क्योंकि देखो बकरी ने आप गरीब री गाय के वहाँ अन्य कम खावारो चावे अन्य कम जगह चावे और आपने मुनाफो दुगुनो वे।
0: बिल्कुल सर। देखो गाय और भैंस अगर आप ही पाड़ा हाँ तो देखो बनारे गाय भेर देखो वाड़ा में अच्छी सुविधा करनी पड़े बनारे खावा पीवा रो भी जटे आप बात की थी और ये आवे भी बहुत महंगी है नहीं सा। तो जटे आप एक गाय खरीदो बनी गाय वर्त्रा पया में आपने 5-6 बकरी आई जावे तो केवारो मतलब है कि यो व्यवसाय शुरू करवा रहे बात है बहुत ही अच्छो है क्योंकि आपके पास अगर पैसों कम है तो आप बकरी पालन शुरुआत कर सको सा।
1: और अणी में वहाँ ने ज़्यादा मुनाफो भी मिले है सा। आप देखा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था जी डे जटे कम जगह और आप देखा बुनियादी ढांचा री बात करा तो बकरिया रे रेवा रे वाते कसे महंगा या बाड़ा री शेड री जरूरत नहीं पड़े। गरीब पड़ी जो थोड़ी खाली जगह है पुरानो छप्पर है वटे आप आसानी उन्हें बांधी सका सा।
0: बिल्कुल सा। अपने आंगना में और कटे भी एक आड़ी कटे खूणा में खाली जगह है तो वटे ही बांध सका। और अन्य अलावा देखो चारा री जटे बात करा तो बकरिया कणी भी पेड़ री झाड़िया है पेड़ रा पत्ता है खरपतवार है आपने रसोड़ा में वंचो कुंचो हरो कचरो है वो भी खाई जीवित रह सके। देखो अन्य अलावा आपने जैसे वंची कुंची घर में रोटियां है हुकी रोटियां है चापड़ो है कई भी चीज है तो अड़ा ने भी बकरी खाई जीवित रह सके सर।
1: तो अणी वणारो जो चारा रो खर्चो है वो ही वंची जा
0: कम वे
1: हाँ तो वना खावा पीवा पे भी यूं कह सका किसान भाई रत्रो बकरी रो खर्चो नहीं वे।

0: और
1: बिल्कुल
0: बाजार में आप देखिए ना कि आज रे टाइम पे यानी निरंतर मांग बनी थकी है। बकरी रो जो दूध है वनो जो मांस है अन्य बाजार में आपने 12 महीना मांग बनी थकी रहे। अन्य बात है कशो विशेष आप देखा कि मार्केटिंग रेणी में जरूरत नहीं पड़े। और खरीदारी की बात करा तो अन्य में देखो सही नस्ल और उचित प्रबंधन रे लारे 10 बकरिया रो अगर आप सालाना पालन करा तो 2-4 लाख तक आप लाभ कमाई सका सा।
1: बिल्कुल सर। दूध री जटे बात करा तो दूध रो उत्पादन भी अच्छो हुए। और एक बात मैं बताऊँ ममता भाई साहब कि आपने कही है कि बकरिया रो जो दूध वेवे आपने छोटा बच्चा रे वाते या बीमार बच्चा कोई बीमार वेवे मतलब कोई भी बीमार है कि भाई जन्ने खाणो नहीं पची रो या भारी चीज़ नहीं पची रही है तो ये बकरी रो दूध पिए तो वो बहुत ही फायदो करे। और आप इमने या जानकारी बताओ मू कि गाय और भैंस रो दूध ज़्यादा महंगो अबार बकरी रो दूध मिले सा। तो अन्य बात है आपने बकरी पालनो बहुत ही फायदेमंद है। और दूध रो उत्पादन की जटे बात करा तो जमुनापारी या सिरोही जैसी दूध देवा वाली नस्ला हैं रोज आपने 1.5-2 लीटर तक दूध दे सके।
0: तो अपने नस्ल रो चुनाव करता टाइम भी ध्यान रखना।
1: बिल्कुल बिल्कुल ध्यान रखना। देखो जैविक खाद रीज बात करा तो बकरी रीज बीट वे मींगणिया जड़ा ने आपी केवा तो मींगणिया जी वेवे खेत में बहुत ही अच्छो और गुणवत्ता वालों आपने कहिए कि खाद वेवे अना ने आपने जैसे आपने रोड़ी पे गोबर भेड़ो करा वणिस तरीके वही मींगणिया रोज रोज भेली करीन करता रहो तो यो भी है एक 4-5 महीना में आपने बहुत ही अच्छो खाद वेवे। और जटे आप ये मींगणिया रे खाद री बात करा तो अबार देखो शेरा में आपने कहिए कि गमला बटे जगह तो वेवे ही नहीं गमला में पौधा लगावे और सेरा में भी इन्हें मिंगणिया रे खादरी बहुत ही ज़्यादा डिमांड है सा।
0: अन्य ऊन और चमड़ा की बात करा तो कुछ देखो विशेष अणा में नस्ला वे जनी ऊन और बकरिया रे काटवा रे बाद वणा जो चमड़ो है वणी अतिरिक्त आय वे सके। अबे आपने देखो अणी व्यवसाय की शुरुआत की तर सबू पहले आपा देखो बात की दी नस्ल रो चयन सबू बढ़िया जतरी नस्ल लेवांगा अच्छो दूध प्राप्त वेगा। वणा रे आवास और देखभाल वणा रो टीकाकरण वणा रे चारा और सरकारी सहायता री अगर आपा बात करा तो देखो कम लागत में अधिक मुनाफो आपने मिले हैं और कम लागत में आपने शुरू कर सका सा।
1: बिल्कुल सा। और दूध आपी अतिरिक्त आय भी कर सका अंडे अलावा ऊन अगर आपकी भेड़ बकरिया जी भी है अच्छी है तो वणी ऊन भी प्राप्त कर सको। अंडे अलावा छोटा किसान जी है जना पर ज़्यादा पैसों नहीं है तो वणारे बात है बहुत ही बढ़िया है। और किसान भी अगर नहीं करे तो अपनी बेना है ये बेना भी घर में रहे तो मतलब छोटा स्तर पे अपने शुरुआत कर सके और अंडे बेच सके। और अंडे अलावा देखो आपने कहीं करना कि बकरी पालन कर रहे हाँ व्यवसाय कर रहे हाँ तो टेम टेम पे वणारे टीकाकरण कराना खुर पका मुँह पका रोग रे भी टीकाकरण कराना गलगोटू रोग भी वेवेड़ा ने कृमिनाशक ने दवाई भी आपने देनी है सा।
0: अणि में आप आवास प्रबंधन की बात करना तो ऊंची और जो सूखी जगह वे वटे वाड़ो बनाणो पानी की निकासी रे वाते भी उचित व्यवस्था करनी है। धूप और हवा वाली भी आपने बकरिया की व्यवस्था करनी है नियमित सफाई वटे राखनी है और बरसात में आपे वटे जो जगह वे वणी में नमी नहीं रहवा देनी है सा।
1: बिल्कुल सर। तो आज तो यह जानकारी मिली अपने किसान भाई और बहना ने कि बकरी पालन किस तरह करना है कई कई नस्ला है अंडो चुनाव किस तरह करना है। तो देखो सर जन्ने पास जो बकरी पालन करना चाहे तो अपने आशा है कि अपने किसान भाई अपनी जो बातचीत है वही लाभ उठाएगा और अंडो फायदो लेगा।
0: तो देखो नीमा बैसाया तो भी जानकारी और अबे किसान भाइयों मनोरंजन करावा और एक प्यारो सो राजस्थानी गीत सुनावा सा।
1: बिल्कुल होना सर।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: हुनियो यो बहुत ही बढ़िया गीत और लारे लारे हुनिया संदेश। और अबे देखो वर्का छांटारा दन आई रहा है। तो अपने किसान भाइयों और बहनों ने जानकारी देवा कि मशरूम रो उत्पादन में किस तरह कर सके। मशरूम जिन्हें कि आपने जैसे रोडी पेन में उगे नहीं उगे छतरिया आपा छोटा हा जदि खेलता ना अपने बिना जानती हुई। लेकिन वो जो मशरूम है विने आप ही खेती रे तौर पर अगर आप ही करा हाँ विने अपने घरे है या कटे वाड़ा में कटे उगई तो अंडी भी मांग देखो बाजार में बहुत ही ज़्यादा है और ये उच्च दाम पे भी बेचे जाए।
3: बिल्कुल सा, देखो वर्तमान टाइम पे निमा बैसा खेतीबाड़ी और बागवानी का जो क्षेत्र है वटे लाभकारी और कम लागत छोटे किसान भाई रे कम खर्च होवे अच्छा मुनाफा होवे उच्च मुनाफा वालों अगर व्यवसाय कह रहा हाँ तो वे मशरूम रो उत्पादन कर सके सा। छोटे देखो पारंपरिक खेती की तुलना में अन्य वते उपजाऊ भूमि की आवश्यकता नहीं वेवे बल्कि अणी में एक बंद कमरो या शेड में अर्धवदाकार रूप में रेक वणी ने उगायो जाई सके। यू इस कारण है कि बिना जमीन की खेती भी पाने के वहाँ हासा।
2: बिल्कुल सा। और देखो जो मशरूम में जटे बात कर रहा तो यो एक प्रकार रो कवक है यो नहीं अपने आप ही उग जाए जैसे अपन रोड़िया पे उगे ही सहसा।
3: हाँ सा।
2: जो प्रोटीन विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर वेवे पोषण भी अंडे भरपूर हुए और बढ़ती मांग के कारण शहरी क्षेत्र में अंडी बहुत ही ज़्यादा मांग है। तो अपनी बेना ने चावे कि भाई छोटो आपने घर में अगर छोटी सी जगह है कोई कमरों है या कोई ढाड़ियो है तो वटे भी आपने कर सको सर।
3: बिल्कुल सा। और अणी में आप देखा कि प्रोटीन विटामिन लारे एंटीऑक्सीडेंट भी भरपूर वे पोषण संबंधी अणी में जो गुण वे बनारी बढ़ती थकी मांग रे कारण अपने गांव और शहर दो ही क्षेत्र में मशरूम उत्पादन रो चलन तेजी बढ़ी रो है सा।
2: और मशरूम री प्रमुख प्रजातियारी जटे बात करा तो भारत और वैश्विक स्तर पर अणारे मुख्य रूप वी चार प्रजातियाँ है जिन्हें बटन मशरूम आयस्टर या ढींगरी मशरूम मिल्की मशरूम और सीटा के मशरूम। तो बटन मशरूम की बात करा तो भारत कुल मशरूम उत्पादन रो लगभग 75% हिस्सों अणी रो है और अन्नी मांग बाजारा में होटला में व्याव मंडा में गणी वेवे और अन्य उगावाते ठंडी जलवायु यानी कि 15°C 22°C तापमान री आवश्यकता वैसा।
3: अब यानी मैं आप आयस्टर या ढींगरी मशरूम की बात करा तो यो उगावा में सबू आसान और कम खर्चीलो वे अणी में 20°C 30°C तापमान पे आसानी उन्हें उगायो जाई सके। अणी बातें अपने भारत रा अधिकांश हिस्सा में अनु है जो आप देखा के वर्ष भर तक आपने उगाई सका सा।
2: और देखो मिल्की मशरूम की बात करा तो दूधिया मशरूम भी कहवे ही नहीं क्योंकि अड़मे कही है कि थोड़ा सा दूध टाइप निकले अगर आप ही इन्हें तोड़ा तो हल्को सो दूध निकले तो यो गर्म जलवायु रो है यो 30°-38° में वह सके और बहुत ही बढ़िया वे। अन्य बात है गर्मियों रो मौसम यानी कि अबार जो टेम है और मैदानी इलाका यानी कि अन्य बात है बहुत ही काली और सॉफ्ट मिट्टी की आवश्यकता वेवे जटा यो आराम वे सके सा।
3: लारे लारे आप सीटा के मशरूम की बात करा तो यो मुख्य रूपों अपना जो औषधि गुण है और बेहतरीन स्वाद रे वाते ने जानियो जावे और बाजार में इनकी कीमत काफ़ी अधिक रहे। मशरूम उत्पादन रे वाते आपने एक कमरो या शेड या पछ कमरा में हवा रे आवा जावा री अच्छी व्यवस्था करनी है लेकिन सीधी धूप पटन नहीं पड़नी चाहे और हवा रो जो वेंटिलेशन है वो बढ़िया वेणो चावे सा।
2: देखो साहब ये तो बताइए आप ही मशरूम री जो प्रजातियाँ हैं कि कसी कसी है लेकिन अन्य बारे में और भी आगे बात करांगा लेकिन पहले हुनावा अपने किसान भाई ने यो बढ़िया सो गीत।

अभी आपने सुना कृषि जगत, ये आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। आइए जुड़ते हैं हमारे दिल्ली केंद्र से, वहां से सुनेंगे हिंदी में समाचार। समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने प्रस्थान वक्तव्य में कहा कि फ्रांस भारत के लिए रणनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। श्री मोदी ने कहा कि इस यात्रा से भारत और फ्रांस के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध और प्रगाढ़ होंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट्स सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। नीस से हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले नीस में भारतीय समुदाय और कारोबारी जगत में उत्साह का माहौल है। उनके स्वागत के लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। भारत और फ्रांस के लोगों के बीच संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। वर्तमान में लगभग 10,000 भारतीय छात्र फ्रांस में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। दोनों देशों का लक्ष्य है कि वर्ष 2030 तक ये संख्या बढ़कर 30,000 हो जाए। खासकर विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित यानी स्टेम क्षेत्रों में छात्रों को बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है। फ्रांस ने भारतीय छात्रों और युवाओं के लिए 5 वर्ष का शेंगेन वीजा, पढ़ाई पूरी करने के बाद 2 वर्ष का वर्क परमिट और 18 से 35 वर्ष के युवाओं के लिए यंग प्रोफेशनल स्कीम जैसे कई अवसर उपलब्ध कराए हैं। राजदूत सिंगला ने कहा कि भारत इनोवेट्स कार्यक्रम भारत और फ्रांस की मजबूत होती साझेदारी को नई दिशा देगा। नीस से शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी कल स्लोवाकिया के लिए रवाना होंगे। भारतीय सेना को आज 481 नए युवा अधिकारी मिले हैं। पहली बार 9 महिला कैडेट को भी इसमें शामिल किया गया है। ये महिला नेतृत्व वाले विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उत्तराखंड स्थित भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में आज 158वीं पासिंग आउट परेड का आयोजन हुआ। कुल 515 जेंटलमैन और महिला कैडेट्स ने अंतिम पग पार कर सेना अधिकारी बनने का गौरव प्राप्त किया है। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पासिंग आउट परेड की सलामी भी ली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज हैदराबाद के डुंडीगल स्थित वायुसेना अकादमी में 217वें बैच की संयुक्त दीक्षांत परेड का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने नवनियुक्त अधिकारियों से बदलती युद्ध तकनीकों के अनुरूप खुद को तैयार रखने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आधुनिक युद्ध में ड्रोन, उपग्रह और रोबोटिक्स जैसी तकनीकों की भूमिका बढ़ रही है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत में खाड़ी में अमरीकी नौसेना के हमलों पर कड़ा विरोध व्यक्त किया है। इन हमलों में 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। डॉ जयशंकर ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पर इस तरह की घातक कार्रवाई उचित नहीं है। ओमान तट पर टैंकर एमटी सेट्टेबेलो पर अमरीकी हमले में 3 भारतीय चालक दल के सदस्यों की मौत के बाद ये बातचीत हुई। ईरान ने कहा है कि वह अमरीका के साथ जारी संघर्ष को समाप्त करने के लिए अंतिम शांति समझौते पर तब तक हस्ताक्षर नहीं करेगा जब तक उसकी प्रमुख शर्तें पूरी

0: नहीं हो जाती। हालांकि ऐसी खबरें हैं कि दोनों पक्ष शुरुआती समझौते के करीब हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने कहा कि समझौता ज्ञापन का मसौदा तैयार कर लिया गया है। हालांकि ईरान ने कहा है कि वह तब तक स्थायी समझौता नहीं करेगा जब तक अमरीका अपनी नौसैनिक नाकाबंदी नहीं हटाता और अरबों डॉलर की फ्रीज की गई परिसंपत्तियों के नुकसान की भरपाई नहीं करता। इस बीच ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि वह ईरान के नागरिक परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को मंजूरी देने के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए तेहरान को परमाणु हथियार निर्माण से जुड़े बुनियादी ढांचे को खत्म करना होगा। केरलम स्थित प्रसिद्ध सबरीमला अयप्पा मंदिर कल से मलयालम माह मिथुनम की पूजा के लिए खुलेगा। तांत्री कंदारारू महेश मोहनारू की उपस्थिति में मेल संथी ईडी प्रसाद शाम 5 बजे गर्भगृह के द्वार खोलेंगे और दीप प्रज्वलित करेंगे। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में बारिश के कारण देरी हो रही है। टॉस का समय दोपहर 1 बजे निर्धारित था, लेकिन तेज बारिश के कारण टॉस अभी तक नहीं हो पाया है। ये मैच हिमाचल के धर्मशाला में खेला जाना है। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भी आज रात गरज और तेज हवाओं के साथ वर्षा की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 266.66 मीटर अर्थात 1125 किलोहर्ट्ज पर यह है आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र। दोपहर के 3:05 हुए हैं। हमारी आज की इस सभा के प्रसारण अब यहीं पर विराम लेते हैं। सांध्यकालीन सभा के साथ शाम 5 बजे फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए।

मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी उदयपुर से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजे हैं। हमारी आज की सांध्यकालीन सभा अब आरंभ होती है। आइए सभा की शुरुआत में हम सुनते हैं युवा साथियों का दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम युवाणी में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं आपके काम की जानकारियां, प्रेरणा से भरी बातें और मनोरंजन से भरपूर कई खास प्रस्तुतियां। आज के कार्यक्रम में बात होगी उत्तराखंड के 3 शहरों की, उसके बाद जानेंगे उन युवाओं के

0: इससे जो समाज में ला रहे हैं बदलाव, जानेंगे द अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट के बारे में और साथ ही कई पर्सनालिटीज़ के बारे में भी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा कार्यक्रम युवाणी। मैं हूँ आपका रेडियो दोस्त मानस और मेरे साथ हैं,
1: गीतांजलि।
0: स्वीकार कीजिए हमारा प्यार भरा नमस्कार।
1: नमस्कार।

0: आइए सुनते हैं एल्बिनिज्म पर जानकारी और अन्य स्किन इन्फेक्शंस का आयुर्वेद के माध्यम से उपचार पर डॉक्टर सुमन मीणा से मनोज कुमार अंबेश की बातचीत।
1: नमस्कार दोस्तों, कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम कार्यक्रम में चर्चा करेंगे अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म यानी रंगहीनता जागरूकता दिवस पर, और साथ ही जानेंगे आयुर्वेद के माध्यम से कैसे त्वचा के रोगों का उपचार किया जाए। और इन सभी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद है हमारे विशेष अतिथि डॉक्टर सुमन मीणा जी। आप आयुर्वेद चिकित्सक हैं और साथ ही आप उदयपुर में सरकारी अस्पताल में आप कार्यरत हैं। मैडम जी नमस्कार, और कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
2: धन्यवाद। सबसे पहले आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
1: मैडम, शुरुआत करेंगे हम एल्बिनिज्म से। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे किस तरह की स्किन डिजीज है और इसका मुख्य कारण क्या है।
2: आपने कहा एल्बिनिज्म के मेन कारण क्या है।
1: जी,
2: बेसिकली एक ये अनुवांशिक बीमारी है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, जो कि माँ बाप से अपने बच्चों को एट द टाइम ऑफ बर्थ मिलती है। ये बाद में नहीं होती, ये जन्म के समय ही होती है।
1: अच्छा, तो इसका मुख्य कारण क्या है, किस चीज की कमी से ये होती है?
2: ये बेसिकली मिनेलिन पिगमेंट हमारी बॉडी में होते हैं, जो हमको नेचुरल कलर देते हैं, हमारी आईज को, ईयर हेयर्स को, बॉडी को जो नेचुरल कलर प्रोवाइड करता है वो मिलेनिन पिगमेंट होता है। ड्यू टू जेनेटिक म्यूटेशन ये हमको शरीर में बन नहीं पाता, जिसके कारण कि हमारी बॉडी का कलर जो नेचुरल आना चाहिए उससे ना आके लाइट कलर होता है, जैसे वाइट होता है या फिर स्काई कलर, लाइट कलर्स में जाता है रेंज में।
1: तो क्या मैडम इसका इलाज बिल्कुल भी संभव नहीं है?
2: जी, ये एक जेनेटिक बीमारी है, इसलिए इसका इलाज कहना तो संभव नहीं है। आयुर्वेद में भी इसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन जो इसके सिम्टम्स हमको देखने को मिलते हैं उनको हम क्योर कर सकते हैं, वो अपनी और आगे की कंडीशंस में ना जाए उस पर हम कार्य कर सकते हैं।
1: तो मैडम एल्बिनिज्म के जो मरीज हैं, जैसे आपने बताया उनकी बॉडी में मेलेनिन और पिगमेंटेशन की कमी होती है, तो ऐसे मरीजों को किस तरह के प्रिकॉशंस लेने चाहिए, खासकर उस समय जब हीट रेडिएशन कुछ ज़्यादा ही हो?
2: इसके अंदर सबसे पहले दो चीज़ें होती है, एक ही अपनी बॉडी के कलर पे काम करता है, दूसरा अपने इसमें आई विजन का बहुत ज़्यादा रोल होता है। तो जो मिलेनिन पिगमेंट होता है दोनों ही कार्य करता है। इसके अंदर हमको सबसे पहले अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करना चाहिए, डायरेक्ट सन एक्सपोजर से बचना चाहिए, जब भी धूप से बाहर निकले तो अपन को सनस्क्रीन्स वगैरह लोशंस का यूज़ करना चाहिए, फुल आस्टिन के क्लोथ्स पहनने चाहिए, यूवी प्रोटेक्टेड रेज के सनग्लासेस आंखों में लगाने चाहिए, मतलब डायरेक्ट सन के कॉन्टेक्ट से आप बचें, सबसे बेसिक।
1: मैडम अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के थ्रू बाकी स्किन डिसीज को कैसे क्योर किया जाता है। मैडम होता ये कि जब हम डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो वो हमें ब्लड टेस्ट रिकमेंड करता है ताकि वो रूट कॉज जान सके बीमारी का, तो आयुर्वेद में इसको डिटेक्ट करने के लिए क्या प्रोसीजर है?
2: बेसिकली सबसे पहले कोई भी पेशेंट हमारे पास आता है, हम उसकी प्रकृति देख के उसकी बॉडी टाइप को फाइन करने की कोशिश करते हैं कि ये व्यक्ति वातज प्रकृति का है, पित्तज का है या कफज का है। बेसिकली जो भी स्किन डिजीजेज होती है वो पित्त नेचर की होती है, पित्त के बढ़ने के कारण कोई भी डिजीज है वो स्किन की अपनी बेसिकली मानी जाती है कि पित्त डिस्टर्ब हुआ बॉडी में तो हमको स्किन डिजीजेज होगी। अगर पित्तज प्रकृति के व्यक्ति है तो उसके अंदर ऑफकोर्स सी बात है वो खुद पित्तज है, और वो अगर पित्त को एग्रीवेट करने वाले फैक्टर्स को ज़्यादा लेगा तो उसमें पित्त प्रकृति के कारण स्किन डिजीजेज ज़्यादा मिलेगी। अच्छा। तो इसीलिए सबसे पहले हम उसके बॉडी टाइप को डिटेक्ट करने की कोशिश करते हैं।
1: मैडम जैसे एलोपैथी में स्किन डिजीज को कैरेक्टराइज किया गया है, जैसे ऑटो इम्यून और इन्फेक्शियस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो क्या उसी तरह से आयुर्वेद भी इन सब के लिए अलग अलग टाइप डिसाइड किए गए हैं या कैटेगराइज किया गया है इनको भी?
2: आयुर्वेद में बेसिकली ऐसे नहीं बोलेंगे कि अलग अलग कैटेगरीज में लिखा गया है, उन्होंने जितनी भी बीमारियां है उनको कुष्ठ कहा है।
1: कुष्ठ? अच्छा,
2: आयुर्वेद में कुष्ठ शब्द, हाँ, कुष्ठ रोग सारे स्किन डिजीजेस के लिए है, नॉट ओनली फॉर लेप्रेसी, सिर्फ लेप्रेसी को कुष्ठ नहीं बोला है आयुर्वेद में, जितने अच्छा। भी स्किन डिजीजेस है सबको कुष्ठ में लिया है उन्होंने।
1: तो ये वता पिता और फिर ये कफा,
2: ये दोषों के अकॉर्डिंग है कि किसी बीमार के अंदर कौन सा दोष एग्रीवेट होता है, जैसे कि सोरियोसिस बहुत ज्यादा कॉमन बोलते हैं, वो वात और कफ के दोष के दूषित होने के कारण होता है।
1: अच्छा।
2: और वहीं पे जब अपनी बात करें कि पित्त के कारण, जैसे कि धूप में बहुत ज्यादा जाते हैं तो अपना पित्त होता है वो बहुत ज्यादा दूषित होता है, वो अपने रक्त के साथ मिलता है, उसके कारण जितने भी जो रेड स्पॉट्स होते हैं

0: बॉडी में ईचिंग होती है, जलन होती है, ये सारी चीजें अपने पित्त के कारण होती है।
1: मैडम, ऐसा कहा जाता है कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम और जो आपके ब्लड में जो टॉक्सिन्स हैं, इम्प्योरिटीज़ हैं, उनकी वजह से भी आपको काफ़ी स्किन डिजीजेस होती हैं। इसमें आयुर्वेद का क्या पर्सपेक्टिव है? और साथ ही जो अग्नि और अमा है, ये कौन से टर्म है, इनको किस तरह से डिफाइन किया जाता है?
0: बेसिकली आयुर्वेद में किसी भी डिजीज के होने का रीज़न मंदाग्नि बताया है।
1: मंदाग्नि,
0: जी,
1: इसे
0: मंदाग्नि मतलब
1: अच्छा।
0: अपनी डाइजेस्टिव फायर है उसका कम होना। अगर अपनी डाइजेस्टिव फायर कम है तो इसका मतलब आम प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है। आम का मतलब अपच्य भोजन का ज़्यादा बनना, शरीर में जो डाइजेशन होना चाहिए प्रॉपर वो ना हो के आधा उसका पाचन होता है, तो उस कंडीशन को पार्शियली डाइजेस्टेड फूड जिसको बोला गया है वो है आमा।
1: आमा,
0: आमा
1: ओके।
0: जितना ज़्यादा आम बनेगा उतनी ज़्यादा डिजीजेज होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है।
1: मैडम, आपके पास जब कोई पेशेंट अपनी स्किन प्रॉब्लम्स लेकर आता है, तो एज एन आयुर्वेदिक स्पेशलिस्ट, तो आप उसके ट्रीटमेंट की शुरुआत कहाँ से करती हैं? इनिशियल स्टेप्स क्या होते हैं?
0: बेसिकली तो कोई भी पेशेंट हमारे पास आया, सबसे पहले तो अपनी चीफ कंप्लेंस हमें बताएगा, मुख्य
1: जी।
0: वेदनाएं जो उसको हमको हो रही है कि मैम रैशेज हो रहे हैं, इचिंग हो रही है, जो भी है, हम सबसे पहले तो उसको उसको देखते हैं। उसके बाद में उसके बॉडी टाइप को देखते हैं, दोनों दोषों का देखते हैं कि ये कहीं एक जैसे तो नहीं है, विपरीत तो नहीं है, और आहार विहार कैसा वो ले रहा है, उसका रूटीन क्या है नॉर्मली, उन चीज़ों को देख के हम उसकी डिजीज ट्रीटमेंट देते हैं।
1: और ये पंचकर्मा ट्रीटमेंट,
0: जी बिल्कुल,
1: वो
0: आयुर्वेद में स्किन
1: हाँ,
0: डिजीज इसके लिए बेसिकली पंचकर्मा बहुत अच्छा इफेक्ट करता है। इसको शोधन चिकित्सा बोला गया है।
1: शोधन
0: पंचकर्मा के अंदर 5 प्रोसीजर्स होते हैं, लेकिन
1: जी,
0: रक्त जो व्याधियाँ हैं, अपने जो स्किन डिजीजेज है उनमें बेसिकली वमन और विरेचन, दो शब्द ये काफ़ी है।
1: मैडम ये पंचकर्मा, इसके बारे में सुना तो काफी है आयुर्वेद में, लेकिन ये एग्जैक्टली होता क्या है? इसके 5 स्टेप्स या 5 लेवल क्या है? इसके बारे में अब किसी को बहुत ही कम पता होगा, तो आपसे जानना चाहेंगे एग्जैक्टली ये है क्या?
0: देखो पंचकर्मा कुछ भी नहीं, बॉडी को डिटॉक्सफाई करने का एक तरीका है। इसमें 5 प्रोसीजर्स होते हैं, स्नेहन, स्वेदन, वमन, विरेचन और नस्य, ये 3 चीज़ें, 5 चीज़ें है टोटल। इसके अंदर जो रक्तज विकार है उनको निकालने के लिए वमन और विरेचन है। वमन मीन कि अपन को कोई भी मेडिसिन देके वॉमिट कराई जाती है पेशेंट को,
1: अच्छा।
0: जिससे कि जो उसका आम बन रहा है बॉडी में वो बाहर निकले, उसकी टॉक्सिन्स रिमूव हो। और विरेचन इज अ लाइक अ उसको मतलब डायरिया कराया जाता है, लूज मोशंस कराए जाते हैं
1: अच्छा मैडम,
0: विरेचन में।
1: जब हम किसी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, तो होता यह है कि वो हमें दवाइयाँ दे देता है, लोशन दे देता है, जिससे हमें कुछ दिन तो आराम मिलता है, फ़र्क दिखता है, लेकिन उसके बाद घूम फिर कर समस्या वहीं के वहीं आके खड़ी हो जाती है। तो क्या आपके पास कोई पेशेंट आता है, तो आप भी क्या दवाइयाँ जो आपके इसमें कहते हैं लेप वगैरह, वो आप रिकमेंड करती हैं?
0: नहीं, कंडीशन देख के रिकमेंड किया जाता है कि
1: अच्छा।
0: उसको किस चीज़ की ज़रूरत है, कि सिर्फ आहार विहार से ही हो जाएगा या फिर इंटरनल मेडिकेशंस के यूज़ से ही हो जाएगा, या फिर कोई प्रोसीजर भी कराना पड़ेगा, या फिर लेप या फिर कोई लोशन उसको देना पड़ेगा। ये पेशेंट की कंडीशन को देख के हम डिसाइड करते हैं, सबको नहीं दिया जाता।
1: और ये सब सारी मेडिसिन लेप वगैरह इजीली अवेलेबल है
0: जी
1: मार्केट में?
0: बिल्कुल, इजीली अवेलेबल सर।
1: अच्छा, किसी भी जनरल स्टोर पे?
0: जी जनरल स्टोर क्या, हमारे घर में भी मिल जाएगी आपको।
1: अच्छा, हम घर पे भी कर सकते हैं ये
0: जी
1: चीज़ें?
0: बिल्कुल,
1: जैसे कि कौन सी चीज़ें हैं जिसे हम अगर घर पे
0: जैसे
1: ही?
0: नॉर्मली चंदन सबके घरों में मिलेगा, चंदन
1: हाँ
0: का लेप कीजिए
1: अच्छा,
0: बॉडी पे, बहुत अच्छा उसका इफेक्ट है। शीतलता जिसका इसका गुण है, जितनी भी पित्त बीमारियां हैं गर्मी के कारण हो रही है तो बॉडी को कूलनेस प्रोवाइड करवाएगा चंदन का लेप है। नॉर्मली अपने हल्दी भी बताइए है, मुल्तानी मिट्टी है, अपने नॉर्मल घरों में मिल जाती है।
1: अच्छा मैडम
0: एलोवेरा सबके घरों में आजकल लगा हुआ आता है, बेस्ट
1: जी
0: है
1: जी वो तो फेस पे भी लगाते हैं
0: जी।
1: काफ़ी
0: हाँ,
1: लोग।
0: जो कहीं भी
1: हाँ
0: लगाइए आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
1: जी, मैडम ये जो वर्किंग क्लास है, जिनको तेज़ तरह धूप में बाहर निकलना पड़ता है, वैसे तो वो अपनी बॉडी पे सनस्क्रीन, बॉडी लोशन, काफ़ी कुछ अप्लाई करके निकलते हैं, पर प्रॉब्लम है ये है कि ये प्रोडक्ट्स काफ़ी कॉस्टली आते हैं और उनकी जेब पे इसका असर पड़ता है। तो ऐसी कौन सी चीज़ है मैडम आयुर्वेद के पर्सपेक्टिव से, जिसे हम अगर लगा के बाहर निकलें, जिसकी वजह से जो सन रेडिएशन का इफेक्ट है हमारी बॉडी पे काफ़ी कम पड़ेगा और हमारे पॉकेट पे भी इतना ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े?
0: अब ऐसे होम कोई घरेलू नुस्खा बताने की बजाय तो इसमें एक आयुर्वेद का आता है शतजोत घृत, मतलब 100

0: उनके कारण अपन मान सकते हैं कि हेयर फॉल होता है।
1: तो दोस्तों, आप थे डॉक्टर सुमन मीना, आयुर्वेदिक चिकित्सक। आज हमने इनसे स्टूडियो में एल्बिनिज्म और साथ ही साथ आयुर्वेद के माध्यम से कैसे स्किन रिलेटेड डिसीजेस को ट्रीट किया जाता है, इस संदर्भ में काफ़ी चर्चा की। और इन्होंने हमें काफ़ी बढ़िया सुझाव दिए हैं जिन्हें आप अपनी डेली लाइफ में उपयोग करके आप अपनी स्किन का ख्याल रख सकते हैं, उन्हें तेज तर्रार रेडिएशन से बचा सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। मैडम, आप हमारे स्टूडियो में पधारे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक।
2: आप सुन रहे थे एल्बिनिज्म पर जानकारी और अन्य स्किन इन्फेक्शंस का आयुर्वेद के माध्यम से उपचार पर डॉक्टर सुमन मीणा से मनोज कुमार अम्बेश की बातचीत।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: दोस्तों आप सुन रहे हैं हमारा खास सेगमेंट शेयर की बात, जहां हम आपको लेकर चलते हैं उन शहरों की ओर जो अपनी अलग पहचान, कल्चर और खूबसूरती के लिए जाने जाते हैं। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड के 3 खास शहरों की, रुद्रपुर, काशीपुर और ऋषिकेश।
3: एक और रुद्रपुर जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी और डेवलपमेंट की कहानी लिख रहा है, दूसरी ओर एक काशीपुर जो सांस्कृतिक विरासत को अपने भीतर समेटे हुए है, वहीं ऋषिकेश जिसे दुनिया योग नगरी के नाम के साथ ही एडवेंचर एक्टिविटीज़ के लिए भी जानती है।
2: अब बात करते हैं दोस्तों सबसे पहले रुद्रपुर की, जो कि उत्तराखंड का एक ऐसा शहर है जिसने एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल फील्ड से अपनी अलग पहचान बनाई है। यह शहर उद्यम सिंह जिला नगर का मुख्यालय है, जो कि बिजनेस एंड इंडस्ट्री का इम्पोर्टेंट सेंटर माना जाता है।
3: रुद्रपुर को उत्तराखंड की इंडस्ट्रियल कैपिटल भी कहा जाता है। यहाँ औद्योगिक क्षेत्र में कई बड़ी कंपनियों ने अपने प्लांट्स लगा रखे हैं। ऑटोमोबाइल, फूड इंडस्ट्री और डेली कंज्यूमिंग आइटम से जुड़ी कई फैक्ट्रीज यहाँ पर स्थापित है और इनमें यहाँ के और बाहर के हज़ारों लोगों को रोज़गार मिल रहा है।
2: उद्योगों के साथ में रुद्रपुर कृषि के लिए भी काफ़ी पॉपुलर है। यहाँ का जो बासमती चावल है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है।
3: एग्रीकल्चर और बिजनेस का यह तालमेल रुद्रपुर को उत्तराखंड की इकोनॉमी का मेन सेंटर बनाता है।
2: यहाँ पर आप धार्मिक और प्राकृतिक स्थलों का आनंद ले सकते हैं। अटारिया देवी का मंदिर और नानक मत्ता गुरुद्वारा यहाँ का जो मुख्य आकर्षण है। नेचर लवर्स यहाँ नानक मत्ता डैम और लेक भी देख सकते हैं।
3: डेवलपमेंट की बात करेंगे तो कुछ सालों में शहर की सड़क और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का काफ़ी तेज़ी से विकास हुआ है। रिंग रोड जैसी परियोजनाएं शहर की यातायात और परिवहन को बेहतर बनाने में मदद करती है।
2: इससे हमें पता चलता है दोस्तों कि रुद्रपुर केवल एक शहर नहीं है बल्कि उत्तराखंड के विकास और मल्टीकल्चर का जीवंत उदाहरण है।
3: रुद्रपुर के बाद अब बात करते हैं दूसरे शहर काशीपुर की, जो कि तराई क्षेत्र में स्थित है और अपनी ऐतिहासिक विरासत, धार्मिक स्थल के लिए जाना जाता है।
2: प्राचीन समय में काशीपुर को गोविशान नाम से जाना जाता था। यह 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री हेनसांग ने इस क्षेत्र का वर्णन किया और यहाँ से जो मिलने वाले पुरातात्विक अवशेष है उससे इस प्राचीन सभ्यता और समृद्ध इतिहास की जानकारी देते हैं।
3: यहाँ मोटेश्वर महादेव मंदिर है, जो कि भगवान शिव का काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है। शिवरात्रि के समय ही इसे दूसरे धार्मिक अवसरों पर यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। इस मंदिर की धार्मिक मान्यता और जो शांत वातावरण है वह लोगों को आकर्षित करता है।
2: साथ ही यहाँ पे जो द्रोणाचार्य झील है वह भी, जिसका संबंध महाभारत काल से गुरु द्रोणाचार्य से जोड़ा जाता है, इसलिए इसे भी ऐतिहासिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है।
3: काशीपुर के आसपास का तराई क्षेत्र में हरियाली और प्राकृतिक वातावरण देखने को मिलता है। पीसफुल लोकेशन के साथ लेक्स और ग्रामीण इलाके नेचर लवर्स को काफ़ी पसंद आते हैं। जंगल, पेड़ पौधे, पक्षी, जानवर इसे और भी खास बनाते हैं।
2: यहाँ घूमने का जो बेस्ट टाइम है वो अक्टूबर से मार्च माना जाता है, क्योंकि इन दिनों यहाँ मौसम सुहावना रहता है और बरसात में हरियाली से भी बढ़ जाता है। और उत्तर भारत के कई जो प्रमुख शहर है उससे जुड़ा हुआ है, तो बाय रोड भी कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है
3: और यहाँ रेलवे स्टेशन भी है, तो बाय ट्रेन भी आ सकते हैं। हवाई मार्ग के लिए यहाँ पास ही का एयरपोर्ट पंत नगर भी है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क काशीपुर से ज़्यादा दूर नहीं है, इसलिए वाइल्ड लाइफ लवर्स चाहें तो अपने ट्रिप में इसे भी कवर कर सकते हैं।
2: आगे बात करते हैं विश्व की योग राजधानी, योगा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाने जाने वाली शहर ऋषिकेश की, जो कि उत्तराखंड का स्पिरिचुअल और टूरिस्ट शहर है।
3: गंगा नदी के किनारे बसा यह शहर स्पिरिचुअलिटी, एडवेंचर एक्टिविटीज़ और नेचुरल ब्यूटी की का अनोखा संगम है, जिसका संबंध प्राचीन भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है।
2: मान्यता है कि भगवान विष्णु ने यहाँ पर ऋषिकेश रूप में दर्शन दिए थे, इसलिए इसका नाम ऋषिकेश पड़ा। चारधाम यात्रा का जो महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार है इसे ही माना जाता है, क्योंकि यहाँ से बद्रीनाथ मंदिर और अन्य कई तीर्थस्थल की शुरुआत होती है और यहाँ बहने वाली गंगा नदी भी इस शहर की पहचान है।
3: यहाँ साधु संत, योग साधक और आध्यात्मिक पर्यटक बड़ी संख्या में देखने को मिल जाते हैं। त्रिवेणी घाट पर होने वाली गंगा आरती एक प्रमुख आकर्षण है, जहाँ श्रद्धालु और टूरिस्ट स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट का एक्सपीरियंस ले सकते हैं।
2: टूरिस्ट स्पॉट की बात करें तो गंगा नदी पर बने पुल, लक्ष्मण झूला, राम झूला इस शहर की पहचान है, जहाँ की कई धार्मिक मान्यताएं प्रसिद्ध है। इन पुल पर से ही आप नदी घाट और आसपास के पहाड़ों और सुंदर सा व्यू भी देखने को मिलता है।
3: इनके अलावा प्रसिद्ध आध्यात्मिक आश्रम परमार्थ निकेतन भी है, जहां योग, ध्यान और अध्यात्म से जुड़े कई कार्यक्रम आयोजित

0: किए जाते हैं।
1: भगवान शिव को समर्पित प्रसिद्ध मंदिर नीलकंठ महादेव मंदिर में दर्शन कर सकते हैं। इस मंदिर तक पहुंचने का रास्ता भी पूरी तरह से प्रकृति के बीच है।
0: एडवेंचर एक्टिविटीज़ में भी आपको कई गतिविधियाँ देखने मिल जाएगी, जैसे तेज लहरों के बीच रिवर राफ्टिंग का रोमांचक एक्सपीरियंस, युवाओं में लोकप्रिय बंजी जंपिंग,
1: और हिमालयन एनवायरनमेंट और नेचर्स का लवर लेने के लिए, आनंद लेने के लिए ट्रेकिंग और कैंपिंग भी देखने को मिलेगी। साथ ही कायाकिंग और क्लिफ जंपिंग भी टूरिस्ट को काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है।
0: यहाँ घूमने का सही समय सेप्टेम्बर से नवंबर और फरवरी से अप्रैल माना जाता है। हालांकि पहाड़ी इलाका होने के कारण यहाँ गर्मियों में भी टूरिस्ट आते हैं।
1: भारतीय पर्यटकों के साथ ही फॉरेनर्स की भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पसंद रहती है, इसलिए यहाँ दुनिया के कई शहरों से टूरिस्ट आते हैं, जिससे यहाँ अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक माहौल को देखने को मिलता है।

0: कहते हैं बड़े बदलाव के लिए बड़ी उम्र की नहीं बल्कि बड़ी सोच की ज़रूरत होती है। आज हम बात करेंगे ऐसे युवा की जिसने बचपन में ही अपनी सोच और तकनीक से दुनिया को चौंका दिया। नाम है शुभम बनर्जी, जिन्होंने छोटे ही से विचार को बदल दिया और ऐसी खोज में लगाया जिसने दृष्टिहीन लोगों के लिए उम्मीद की नई किरण बन गई।
1: शुभम बनर्जी एक भारतीय मूल के युवा उद्यमी और इनोवेटर हैं जिन्होंने बहुत कम उम्र में ऐसी तकनीक विकसित की जिसने दुनिया भर में ध्यान आकर्षित किया। वे खास तौर पर ब्रेगो नामक कम लागत वाली ब्रेल प्रिंटर टेक्निक के लिए जाने जाते हैं।
0: इनका जन्म बेल्जियम में हुआ था और बाद में ये परिवार के साथ में कैलिफोर्निया में चले गए और वहीं से इन्होंने अपनी पढ़ाई भी पूरी की। बचपन से ही उन्हें साइंस और टेक्नोलॉजी के साथ में न्यू इन्वेंशंस में काफ़ी ज़्यादा रुचि थी।
1: उनकी सोच सिर्फ मशीन बनाने तक सीमित नहीं थी बल्कि वे ऐसी समस्या का समाधान चाहते थे जिससे समाज को फ़ायदा मिल सके। इसी के चलते एक दिन शुभम ने सोचा, आखिर दृष्टिहीन लोग कैसे पढ़ते हैं?
0: और इस सवाल ने उन्हें ब्रेल लिपि और प्रिंटर के बारे में जानने के लिए ज़्यादा प्रेरित किया। उन्होंने पाया कि प्रिंटर काफ़ी ज़्यादा महंगे होते हैं जिससे कई लोग इसे खरीद भी नहीं पाते हैं।
1: इसके बाद उन्होंने अपने स्कूल प्रोजेक्ट के लिए लेगो किट की मदद से एक सस्ता ब्रेल प्रिंटर बनाया जिसका नाम ब्रेल और लेगो के आधार पर ब्रेगो रखा।
0: यह प्रिंटर नॉर्मल डिजिटल टेक्स्ट को ब्रेल में बदलकर प्रिंट करता है जिसका उद्देश्य दृष्टिहीन लोगों के लिए ब्रेल सामग्री को अधिक सुलभ और किफ़ायती बनाना रहता है।
1: साल 2014 में शुभम ने ब्रेगो लैब्स नाम की कंपनी शुरू की जिसका उद्देश्य ब्रेल तकनीक को बेहतर बनाना था। उनकी इस प्रतिभा को देखते हुए इंटेल ने भी उनकी कंपनी में निवेश किया
0: और उन्हें कई इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर भी अपना आविष्कार जो है वो प्रस्तुत करने का भी मौका मिला।
1: अब आगे बात करते हैं एक युवा लड़की की जिसने चेहरे के भावों में छिपे संकेतों को समझने की कोशिश की और AI की मदद से स्वास्थ्य क्षेत्र में नई उम्मीद जगाई। एरिन स्मिथ एक अमरीकी युवा उद्यमी और आविष्कारक
0: जिन्होंने AI की मदद से पेरिक्सन्स डिजीज़ की पहचान में मदद करने वाली तकनीक विकसित की और वे अपनी कंपनी फेस प्रिंट के लिए जानी जाती हैं। इनका जन्म साल 2000 में हुआ था और बचपन से इन्हें कंप्यूटर और न्यू टेक्नोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था।
1: हाई स्कूल के समय उन्होंने इंटरव्यू देखा, उन्होंने ध्यान दिया कि पार्किंसन बीमारी से जुड़े लोगों के चेहरे के भावों में बदलाव दिखाई दे सकते हैं। यही बात उनके शोध की शुरुआत बनी।
0: फेस प्रिंट टेक्नोलॉजी सामान्यतः जो कैमरे होते हैं और कंप्यूटर की मदद से चेहरे की जो मूवमेंट्स होते हैं उन्हें नोटिस करती है और उन्होंने अपने इस शोध को जो है वो स्टार्टअप का भी रूप दिया।
1: उन्हें ट्रायल फेलोशिप के लिए चुना गया जिससे उन्हें अपने आइडिया को आगे बढ़ाने में सहायता मिली।
0: उन्हें अपने इस नवाचार के लिए कई सम्मान मिले, फोर्ब्स 30 अंडर 30 में स्थान मिला और यूरोपियन पेटेंट ऑफिस यंग इन्वेस्टर में भी फर्स्ट प्राइज जीता। साथ ही उन्होंने स्वास्थ्य और तकनीक के क्षेत्र में युवा नवाचार के लिए अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली।

0: प्रकृति और मानव जीवन का रिश्ता सदियों पुराना है। जब जब पर्यावरण पर संकट आता है तब तब इंसान ने हरियाली को बचाने की कोशिश की है। आज हम बात करेंगे ऐसी ही पहल की जो भारत की प्राचीन अरावली पर्वतमाला को फिर से हरा भरा बनाने का सपना लेकर आगे बढ़ रही है।
1: अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट, यह भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय पहल है जिसका उद्देश्य अरावली पर्वतमाला के आसपास हरित क्षेत्र यानी कि ग्रीन बेल्ट को वापस से विकसित करना है और साथ ही लैंड डिग्रेडेशन और मरुस्थलीकरण यानी कि डेजर्टिफिकेशन को कंट्रोल करना है।
0: इस परियोजना की शुरुआत मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज द्वारा साल 2023 में की गई थी, जिसका उद्देश्य अरावली क्षेत्र में घटते वन क्षेत्र को पुनर्जीवित करना और थार मरुस्थल का जो विस्तार हो रहा है वह और ना बढ़े।
1: यहाँ की जो ज़मीन है जो ख़राब हो रही है, मिट्टी का जो कटाव हो रहा है उसे कम करते हुए जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी को बढ़ावा देना, इतना ही नहीं भूजल संरक्षण और जल स्रोत को पुनर्जीवन में भी सहायता देना है।
0: इस परियोजना के क्षेत्र की बात करें तो यह ग्रीन बेल्ट लगभग 1400 किलोमीटर लंबी है और लगभग 5 किलोमीटर चौड़ी हरित पट्टी के रूप में विकसित करने की योजना जो कि गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली के अरावली क्षेत्र को कवर करेगी।
1: इस प्रोजेक्ट में बड़े लेवल पर वृक्षारोपण चल रहे हैं, स्थानीय प्रजाति के जो पेड़ पौधे हैं उनको बढ़ावा दिया जा रहा है, खराब हो चुकी भूमि को फिर से हरा भरा बनाया जा रहा है और इसके तहत तालाबों और वाटर सोर्सेस का जो पुनर्जीवन भी रखा है और एग्रो फॉरेस्ट्री को भी बढ़ावा दिया जा रहा है।
0: दोस्तों, ये प्रोजेक्ट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अरावली पर्वतमाला भी है। इसे पूरे विश्व की सबसे पुरानी पर्वतमाला में से माना जाता है जो उत्तर पश्चिम भारत के इकोसिस्टम को बैलेंस्ड रखने का काम करती है। रेगिस्तान की हवाओं और धूल के प्रभाव को कम करने

0: ये प्राकृतिक कवच की भूमिका भी निभाती है।
1: अरावली पर्वतमाला की जो हरियाली है, पेड़ पौधे हैं, ये सभी एयर पोल्यूशन को कंट्रोल में रखते हैं, शहर की गर्मी तापमान को भी बढ़ाने से रोकते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ का जो जंगल है कई वन्य जीवों का भी आवास है। अगर यहाँ हम नॉर्मली भी देखें तो हमें कई जंगली जानवर देखने को मिल जाते हैं।

0: आज हम लेकर आए हैं प्रेरणा, संघर्ष, कला और सफलता से जुड़ी तीन अनोखी कहानियाँ। आज के हमारे तीन सितारे हैं मेहदी हसन, स्टेलन स्कार्सगार्ड और जीवी प्रकाश कुमार। तीनों अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं, लेकिन इनकी यात्राओं में एक बात समान है, अपने जुनून के प्रति समर्पण और निरंतर मेहनत।
1: तो चलिए शुरुआत करते हैं मेहदी हसन से, एक ऐसे फनकार की जिनकी आवाज़ ने सरहदों की सीमाएं पार कर करोड़ों दिलों को छुआ। उन्हें इस दुनिया शाहजहां गज़ल के नाम से जानती है। महान गज़ल गायक मेहदी हसन 18 जुलाई 1927 को राजस्थान के लूणा गांव में जन्मे। मेहदी हसन संगीतकारों के परिवार से थे। संगीत उनके लिए सिर्फ कला ही नहीं था, बल्कि विरासत थी। बचपन से ही उन्हें हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की जो साधना थी, उन्होंने शुरू कर दी थी।
0: 1947 के विभाजन के बाद उनका परिवार पाकिस्तान चला गया। वहाँ आर्थिक परिस्थितियाँ आसान नहीं थी। कभी साइकिल रिपेयर की दुकान पर काम किया तो कभी ट्रैक्टर और कार मैकेनिक के रूप में, लेकिन संगीत का रियाज कभी नहीं छोड़ा। दोस्तों, यही बात हमें सिखाती है कि हालात चाहे जैसे हों, अगर जुनून जिंदा है तो अपने सपने भी जिंदा रहते हैं।
1: 1950 के दशक में उन्होंने रेडियो पाकिस्तान पर गाने का अवसर मिला। शुरुआत ठुमरी और शास्त्रीय गायन से एक हुई, लेकिन जल्द ही उन्होंने गज़ल गायकी में अपनी अलग पहचान बना ली। उनकी आवाज़ ने गहराई थी, इसलिए एहसास था, और शब्दों को जीवंत कर देने की अद्भुत क्षमता थी। यही वजह थी कि उनकी जो गज़लें थी वह सिर्फ सुनी नहीं जाती थी, बल्कि महसूस की जाती थी।
0: जब भी मेहंदी हसन का नाम आता है, कुछ अमर गज़लें अपने आप याद आती हैं। रंजिशी सही, गुलों में रंग भरे, दिल ए नादान तुझे क्या हुआ, जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, अब कि हम बिछड़े। मेहदी हसन ने 300 से अधिक फिल्मों में अपनी आवाज़ दी। उनकी गायकी ने भारत, पाकिस्तान, नेपाल और दुनिया के कई देशों में श्रोताओं को प्रभावित किया।
1: 2010 में उन्होंने महान गायकी लता मंगेशकर के साथ यादगार युगल गीत तेरा मिलना रिकॉर्ड किया, जो संगीत प्रेमियों के लिए एक अनमोल उपहार बन गया। उनकी कला और सम्मान में उन्हें कई बड़े पुरस्कार मिले, जैसे प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, तमगा इम्ताज़, हिलाल इम्ताज़, निशान इम्ताज़ और कई अन्य निगार अवार्ड्स।
0: ये सम्मान केवल उनकी लोकप्रियता नहीं, बल्कि संगीत के प्रति उनके असाधारण योगदान का प्रमाण है। 13 जून 2012 को मेहदी हसन ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। आज उनकी पुण्यतिथि पर हम उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। अब बढ़ते हैं एक ऐसे कलाकार की ओर जिन्होंने अपनी शानदार एक्टिंग और वर्सैलिटी से विश्व सिनेमा में खास पहचान बनाई। स्टेलन स्कार्सगार्ड का जन्म 13 जून 1951 को गोथेनबर्ग, स्वीडन में हुआ था। उन्होंने अपनी एक्टिंग करियर की शुरुआत बहुत कम उम्र में की।
1: उनकी शुरुआती इंग्लिश लैंग्वेज फिल्मों में द अनबियरेबल लाइटनेस ऑफ बींग, द हंट फॉर रेड अक्टूबर, गुड विल ऑफ हंटिंग और रोनिन शामिल है। स्टेलन स्कार्सगार्ड ने डायरेक्टर लॉर्स वॉन ट्रायर के साथ में कई यादगार फिल्मों में काम किया, जिसमें ब्रेकिंग द वेव्स, डांसर इन द डार्क और मेलिंकोलिया प्रमुख है। इनकी परफॉर्मेंस हमेशा गहराई और भावनात्मक की ताकत से भरपूर रही है। अगर आप हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर के फैन हैं तो आपने उन्हें पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन, डेड मैन्स चेस्ट, पायरेट ऑफ द कैरिबियन एंड द वर्ल्ड्स एंड में ज़रूर देखा होगा। वहीं फिल्में मामा मियाँ के भी लिए उन्होंने भूमिका में काफ़ी पसंद किया गया था।
0: मार्वल सिनेमेटिक के फैंस उन्हें डॉक्टर एरिक सेल्विक के रूप में जानते हैं। उन्होंने थॉर सहित कई मार्वल फिल्मों में यह किरदार निभाया और दुनिया भर के दर्शकों का प्यार पाया। टेलीविज़न की बात करें तो HBO की प्रसिद्ध सीरीज़ चेर्नोबिल में बोरिस शेरबनिया की भूमिका में के लिए उन्हें गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला। इसके अलावा एंडर में लूथेन रेल का किरदार भी दर्शकों के बीच काफ़ी लोकप्रिय रहा।
1: दूसरे स्टेलन स्कार्सगार्ड की जो सबसे बड़ी खासियत थी वह थी उनकी वर्सेटिलिटी। चाहे ड्रामा हो या फिर थ्रिलर हो, साइंस फिक्शन हो या फिर हिस्टोरिकल स्टोरीज, हर किरदार में पूरी तरह से ढल जाते थे। और दोस्तों, यही थी उनकी कहानी स्टेलन स्कार्सगार्ड की।
0: अब चलते हैं एंटरटेनमेंट और म्यूज़िक की दुनिया में और मिलते हैं एक ऐसे मल्टी टैलेंटेड आर्टिस्ट से जिन्होंने एक्टिंग, सिंगिंग और म्यूज़िक कंपोजिशन तीनों क्षेत्रों में अपनी खास पहचान बनाई है। आइए जानते हैं साउथ इंडियन सिनेमा के डायनेमिक म्यूजिशियन, सिंगर और एक्टर जीवी प्रकाश कुमार की प्रेरणादायक कहानी।
1: जीवी प्रकाश कुमार, जिनका जन्म 13 जून 1987 को चेन्नई में हुआ था, संगीत उनका परिवार की विरासत से हिस्सा रहा था और उनकी माता का जो प्रसिद्ध प्लेबैक सिंगर रही हैं और परिवार का संगीत से गहरा जुड़ाव रहा है।
0: जीवी प्रकाश कुमार ने बहुत कम उम्र में म्यूजिक कंपोजिंग शुरू कर दी थी। उनका पहला बड़ा मौका तमिल फिल्म वेल के साथ आया। केवल कंपोजर नहीं, जीवी प्रकाश ने कई लोकप्रिय सॉन्ग्स में अपनी आवाज़ भी दी है। उनकी एनर्जेटिक सिंगिंग स्टाइल और यूनिक वॉइस ऑडियंस को बहुत पसंद आती है। यह दिखाता है कि इंसान को अपनी एक

0: पहचान तक सीमित नहीं रहना चाहिए। जब आपके अंदर कई टैलेंट हो तो उन्हें एक्सप्लोर करने से डरना नहीं चाहिए।
1: जीवी प्रकाश कुमार ने एक्टिंग की दुनिया में भी कदम रखा और एक सफल म्यूजिक डायरेक्टर से एक्टर बनना आसान नहीं था। लोगों की अपेक्षाएं अलग थी और चुनौतियां भी। प्रकाश ने अपनी एक्टिंग डेब्यू 2015 में डार्लिंग मूवी से किया था। प्रकाश ने अपने टैलेंट और मेहनत से 2 नेशनल फिल्म अवार्ड जीते, 3 फिल्मफेयर अवार्ड जीते और 3 सेमा अवार्ड्स भी जीते।
0: दोस्तों, आज की तीनों कहानियां हमें यही सिखाती है कि टैलेंट आपको शुरुआत दिलाता है, लेकिन डेडिकेशन आपको मंजिल तक पहुंचाता है। अपने सपनों पर भरोसा रखिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो कभी हार नहीं मानते।

0: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिन बन गया।
1: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
2: RBI कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: दोस्तों, अब हम बात करेंगे तीन ऐसे महान खिलाड़ियों की जिन्होंने अपनी मेहनत, संघर्ष और समर्पण से दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई। आज की इस प्रेरणादायक यात्रा में हम जानेंगे भारत की स्टार तीरंदाज दीपिका कुमारी, इथियोपिया की महान धावक केनेनिसा बेकेले और फेमस वेट लिफ्टर यूरिक वर्धनयान के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं आज का खास सफर।
4: दीपिका कुमारी, इनका जन्म 13 जून 1994 को रातूचट्टी झारखंड में हुआ था। इनके पिता ऑटो रिक्शा चलाते थे और माता एक नर्सिंग सहायक के रूप में काम करती थी। बचपन में जब दूसरे बच्चे खिलौनों से खेलते थे तब दीपिका पेड़ों से आम गिराने के लिए पत्थर से और लकड़ी से निशाना लगाती थी। शायद तभी उनके भीतर का जो बेहतरीन आर्चर था उसने बनने की नींव ले ली थी। रिसोर्सेज की कमी के बावजूद दीपिका ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने कड़ी मेहनत की और जल्द ही राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में अपनी पहचान बनाई।
3: साल 2009 में उन्होंने कैडेट वर्ल्ड चैंपियनशिप टाइटल जीतकर दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। इसके बाद उनकी सफलता का सिलसिला लगातार बढ़ता गया। उन्होंने कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारत के लिए पदक जीते और दुनिया की नंबर वन महिला तीरंदाज भी बनी। यह उपलब्धि किसी भी खिलाड़ी के लिए बहुत बड़ी होती है और दीपिका ने यह साबित किया कि भारतीय खिलाड़ी विश्व मंच पर किसी से कम नहीं।
4: दोस्तों, साल 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स में दीपिका कुमारी ने शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने व्यक्तिगत और टीम इवेंट में स्वर्ण पदक जीतकर पूरे देश को गर्व महसूस कराया। साल 2012 में दीपिका ने अपना जो पहला इंडिविजुअल वर्ल्ड कप था वो तुर्की के अंताल्या में जीता। 2014 में फोर्स ने दीपिका को 30 अंडर 30 में भी शामिल किया।
3: दीपिका को उनकी मेहनत और टैलेंट के लिए कई अवार्ड्स मिले, अर्जुन अवार्ड, FICCI स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड, पद्मश्री और यंग अचीवर्स अवार्ड। दोस्तों, दीपिका कुमारी ने हमें सिखाया कि लक्ष्य कितना भी बड़ा हो, अगर फोकस मजबूत हो तो सफलता ज़रूर मिलती है। अब बढ़ते हैं ऐसे खिलाड़ी की ओर जिसने दौड़ की दुनिया में नए कीर्तिमान स्थापित किए। एक ऐसा नाम जिसे लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग का लेजेंड कहा जाता है, केनेनिसा बेकेले। केनेनिसा बेकेले का जन्म 13 जून 1982 को इथियोपिया में हुआ था। इथियोपिया लंबे समय से वर्ल्ड क्लास रनर्स की धरती माना जाता है, लेकिन बेकेले का बचपन किसी लग्जरी में नहीं बीता। साल 2001 और साल 2002 में केनेनिसा बेकेले ने क्रॉस कंट्री रनिंग इंटरनेशनल कंपटीशन में अपनी पहचान बनानी शुरू की। उनकी खासियत थी एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंड्योरेंस और रेस के अंतिम चरण में तेज़ी से गति बढ़ाने की क्षमता। केनेनिसा बेकेले का सबसे बड़ा सपना था ओलंपिक चैंपियन बनना। यह सपना पूरा हुआ 2004 ओलंपिक्स में, जहां उन्होंने 10,000 मीटर में गोल्ड जीता और 5,000 मीटर में सिल्वर मेडल जीता।
4: इसके बाद 2008 बीजिंग ओलंपिक्स में उन्होंने 5,000 मीटर और 10,000 मीटर दोनों स्पर्धाओं में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। दोस्तों, केनेनिसा बेकेले केवल ओलंपिक चैंपियन ही नहीं बल्कि कई वर्ल्ड चैंपियन के जो रिकॉर्ड होल्डर्स हैं वह भी रह चुके हैं। उन्होंने 5,000 मीटर और 10,000 मीटर दोनों में विश्व रिकॉर्ड स्थापित किए। ट्रैक इवेंट्स में सफलता हासिल करने के बाद बेकेले ने 2014 में मैराथन रनिंग की ओर कदम बढ़ाया।
3: दोस्तों, हर चैंपियन की ज़िंदगी में मुश्किल दौर आता है। बेकेले के जीवन में भी कई इंजरीज और चैलेंजेस आए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने कड़ी मेहनत की और फिर से ट्रैक पर लौटे। यही रेजिलेंस उन्हें महान बनाती है। युवा साथियों, जीवन में सेटबैक्स आना स्वाभाविक है। महत्वपूर्ण है कि हम उनसे कैसे उभरते हैं। दोस्तों, केनेनिसा की कहानी में बताती कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती बल्कि हज़ारों दिनों की मेहनत का परिणाम होती है।
4: अब बात करते हैं शक्ति, साहस और रिकॉर्ड्स के पर्याय बने महान खिलाड़ी की। सोवियत संघ के गौरव बने यूरिक वर्धनयान की, जो कि विश्व वेटलिफ्टिंग इतिहास के सबसे महान खिलाड़ियों में से गिने जाते हैं। दोस्तों, यूरिक वर्धनयान का जन्म 13 जुलाई को 1956 में हुआ था, लेनिनग्राद में हुआ था, जो कि आज के आर्मेनिया में स्थित है।
3: 1970 के दशक में यूरिक वर्धनयान ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेना शुरू किया। अब बात करते हैं उनके करियर के सबसे यादगार पल की। साल 1980 के समर ओलंपिक की, यूरिक वर्धनयान ने 82.5 किलोग्राम वर्ग में हिस्सा लिया और ऐसा प्रदर्शन किया जिससे पूरी दुनिया को हैरान कर दिया।
4: उन्होंने न केवल स्वर्ण पदक जीते बल्कि कई विश्व रिकॉर्ड भी बनाए। उन्होंने अपने करियर में 40 से भी ज़्यादा अधिक विश्व रिकॉर्ड बनाए और 2009 में वर्धनयान ने एडवाइजर टू प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए। 2013 में वर्धनयान मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स और यूथ अफेयर्स के लिए भी अपॉइंट हुए।

0: ट्रैक इवेंट्स में सफलता हासिल करने के बाद बेकले ने 2014 में मैराथन रनिंग की ओर कदम बढ़ाया।
1: दोस्तों, हर चैंपियन की ज़िंदगी में मुश्किल दौर आता है। बेकेले के जीवन में भी कई इंजरीज और चैलेंजेस आए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने कड़ी मेहनत की और फिर से ट्रैक पर लौटे। यही रेजिलेंस उन्हें महान बनाती है। युवा साथियों, जीवन में सेटबैक्स आना स्वाभाविक है। महत्वपूर्ण है कि हम उनसे कैसे उभरते हैं। दोस्तों, केनेनिसा की कहानियाँ हमें बताती है कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, बल्कि हज़ारों दिनों की मेहनत का परिणाम होती है।
0: अब बात करते हैं शक्ति, साहस और रिकॉर्ड्स के पर्याय बने महान खिलाड़ी की। सोवियत संघ के गौरव बने यूरिक वर्धनान की, जो कि विश्व वेटलिफ्टिंग इतिहास के सबसे महान खिलाड़ियों में से गिने जाते हैं। दोस्तों, यूरिक वर्धनान का जन्म 13 जुलाई को 1956 में हुआ था, लेनिनग्राद में हुआ था, जो कि आज के आर्मेनिया में स्थित है।
1: 1970 के दशक में यूरिक वर्धनान ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेना शुरू किया। अब बात करते हैं उनके करियर के सबसे यादगार पल की। साल 1980 के समर ओलंपिक की, यूरिक वर्धनान ने 82.5 किलोग्राम वर्ग में हिस्सा लिया और ऐसा प्रदर्शन किया जिससे पूरी दुनिया को हैरान कर दिया।
0: उन्होंने

0: दोस्तों बात करते हैं आज के इतिहास की। 1879 में गणेश दामोदर सावरकर, जो कि इंडियन फ्रीडम फाइटर थे, नेशनलिस्ट थे और अभिनव भारत सोसाइटी के फाउंडर थे, उनका जन्म हुआ। 1992 में इंडियन एक्ट्रेस दिशा पाटनी का जन्म हुआ।
1: और 1932 की बात करें तो आज ही के दिन इंग्लैंड और फ्रांस ने पीस ट्रीटी की साइन की थी। और 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी से टोक्यो की जो जर्नी थी वो सबमरीन से स्टार्ट करी थी।
0: 2005 में ईरान ने 2009 के एंड से 25 साल तक इंडिया को लिक्विफाइड नेचुरल गैस एक्सपोर्ट करने की सहमति व्यक्त की थी।
1: और 2010 में आज ही के दिन एस्ट्रॉइड एक्सप्लोरर हयाबूस अर्थ पर लौटे। और 1924-20 की बात करें तो जलालुद्दीन फिरोज शाह ने दिल्ली के थ्रोन को असेंड किया था।
0: तो दोस्तों इसी के साथ वक्त हो चला आपसे विदा लेने का। कल फिर मिलने के वादे के साथ आज मैं थी आपकी रेडियो दोस्त गीतांजलि और मेरे साथ
1: मानस व्यास।
0: नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी उदयपुर है। आइए आकाशवाणी दिल्ली से अब हम सुनते हैं हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने प्रस्थान वक्तव्य में कहा कि फ्रांस भारत के लिए रणनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है और इस यात्रा से आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध और भी प्रगाढ़ होंगे। प्रधानमंत्री कल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन में भी शामिल होंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले नीस में भारतीय समुदाय और कारोबारी जगत में उत्साह का माहौल है। उनके स्वागत के लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। भारत और फ्रांस के लोगों के बीच संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। वर्तमान में लगभग 10,000 भारतीय छात्र फ्रांस में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। दोनों देशों का लक्ष्य है कि वर्ष 2030 तक ये संख्या बढ़कर 30,000 हो जाए। फ्रांस ने भारतीय छात्रों और युवाओं के लिए 5 वर्ष का शेंगेन वीजा, पढ़ाई पूरी करने के बाद 2 वर्ष का वर्क परमिट और 18 से 35 वर्ष के युवाओं के लिए यंग प्रोफेशनल स्कीम जैसे कई अवसर उपलब्ध कराए हैं। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में

0: फ्रांस में भारत के राजदूत संजीव सिंघला ने बताया कि भारत इनोवेट्स कार्यक्रम भारत और फ्रांस की मजबूत होती साझेदारी को नई दिशा देगा। नीस से शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: असम के जोरहाट में आज सुबह AN-32 विमान दुर्घटना में 5 जवानों की मौत हो गई है। इनमें स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सार्जेंट जितेंद्र शर्मा, अग्निवीर वायु खेमाराम कुमावत और दानिश आलम शामिल हैं। AN-32 विमान आज सुबह जोरहाट में अपनी नियमित उड़ान पर था। लैंडिंग के दौरान विमान एयरबेस परिसर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसमें आग लग गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि राष्ट्र के प्रति जवानों के साहस और सेवा को हमेशा गर्व और कृतज्ञता से याद किया जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह ने सीमावर्ती जिलों में जनसांख्यिकी परिवर्तनों का अध्ययन करने का निर्देश दिया है। श्री शाह ने एक बैठक के दौरान स्थिति के आकलन के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों, महानगरों और औद्योगिक शहरों का दौरा करने का भी निर्देश दिया। केंद्र सरकार ने अवैध अप्रवासन और अन्य असामान्य कारणों से हुए जनसांख्यिकी परिवर्तनों के अध्ययन और इस समस्या से निपटने के उपाय सुझाने के लिए पिछले महीने एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया था। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 12 वर्षों में देश में शिक्षा, कौशल विकास, नवाचार और स्टार्टअप की एक नई संस्कृति को बढ़ावा दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की नीतियों से भारत आज विश्व का दूसरे सबसे बड़ा उच्च शिक्षा नेटवर्क बन गया है और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा AI प्रतिभा केंद्र भी बन रहा है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया बड़ा स्टार्टअप वाला देश है, जहां 2 लाख से भी ज्यादा स्टार्टअप हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सरकार रोजगार सृजन के साथ बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर दे रही है। श्री गडकरी ने नागपुर में केंद्र सरकार की 12 साल की उपलब्धियों का ब्यौरा देते हुए बताया कि उनका मंत्रालय देश भर में वाहन चालक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित कर रहा है। देश भर में इस तरह के 1600 केंद्र स्थापित किए जाने हैं और अब तक 24 केंद्र स्थापित हो चुके हैं। इन केंद्रों में अभी तक लगभग 10 लाख लोगों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा है कि देश में एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव लागू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। पुदुचेरी में उन्होंने कहा कि एक साथ चुनाव करने से खर्चा कम होगा और संसाधनों का अधिक कुशल उपयोग हो सकेगा। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ देश के नए थल सेनाध्यक्ष होंगे। वे फिलहाल थल सेना में वाइस चीफ के रूप में कार्यरत हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सेठ 30 जून को कार्यभार संभालेंगे। वर्तमान सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी 30 जून को अवकाश ग्रहण कर रहे हैं। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मुकाबला धर्मशाला में जारी है। ताजा समाचार मिलने तक अफगानिस्तान ने तीसरे ओवर में 1 विकेट पर 16 रन बना लिए हैं। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी उदयपुर है। 6:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। पहला गीत किशोर कुमार की आवाज में अनुरोध फिल्म से।

साथी फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे मुकेश और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ में। फिल्म संगीत में अब आपको सुनवाते हैं किशोर कुमार की आवाज़ में महबूब की मेहंदी, इस फिल्म का ये गाना।

0: इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम यही समाप्त होता है। हम आकाशवाणी उदयपुर से बोल रहे हैं, 6:30 होने को हैं। आइए आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से सुनते हैं प्रादेशिक समाचार और जिले की चिट्ठी।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। भारतीय सैन्य अकादमी की पासिंग आउट परेड में पहली बार 9 महिला कैडेट शामिल। महिला नेतृत्व वाले विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम। भारतीय सेना के उप सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ अगले आर्मी चीफ नियुक्त। 30 जून को सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी का स्थान लेंगे। भजनलाल शर्मा ने कहा, केंद्र की एनडीए सरकार की नियमों में पारदर्शिता और नीतियों में दूरदर्शी

0: पारदर्शिता से देश प्रगति के पथ पर अग्रसर, और प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता और प्री मॉनसून गतिविधियों के कारण कई स्थानों पर आंधी बारिश का सिलसिला, तापमान में 8 डिग्री तक की गिरावट। समाचारों के साथ मैं अल्पना राठौड़, और अब समाचार विस्तार से। भारतीय सेना को आज 481 नए युवा अधिकारी मिले हैं। पहली बार 9 महिला कैडेटों को भी इसमें शामिल किया गया है। ये महिला नेतृत्व वाले विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी की 158वीं पासिंग आउट परेड का आयोजन हुआ। इसमें महिला कैडेटों ने अंतिम पग पार कर सेना अधिकारी बनने का गौरव प्राप्त किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने परेड का निरीक्षण किया। भारतीय सेना के उप सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को नया आर्मी चीफ नियुक्त किया गया है। वे 30 जून को सेवानिवृत्त हो रहे सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी का स्थान लेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल सेठ वर्तमान में 49वें उप सेना प्रमुख के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे खड़गवासला नेशनल डिफेंस अकादमी के पूर्व छात्र हैं। दिसंबर 1986 में आर्म्ड कॉर्प्स में कमीशन हुए धीरज सेठ को भारतीय सेना में करीब 4 दशकों का अनुभव है। इस दौरान उन्होंने कई कमान संभाली और कई महत्वपूर्ण ऑपरेशंस का हिस्सा रहे। लेफ्टिनेंट जनरल सेठ यूनाइटेड नेशंस के साथ भी काम कर चुके हैं। असम के जोरहाट में आज सुबह भारतीय वायुसेना का एक विमान AN-32 दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 5 जवान शहीद हो गए। वायुसेना ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि हादसे में स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सार्जेंट जितेंद्र शर्मा, अग्निवीर खेमा राम कुमावत और अग्निवीर दानिश आलम का निधन हो गया। वायुसेना ने बताया कि दुर्घटनास्थल पर आवश्यक कार्रवाई और प्रारंभिक जाँच जारी है। इंदौर में आयोजित ब्रिक्स कृषि मंत्रियों के सम्मेलन में कई महत्वपूर्ण पहलों पर सहमति बनी है। भारत की अध्यक्षता में हुए इस सम्मेलन में बीजों की प्रणालियों को लेकर ग्लोबल फोरम और फार्मर्स साइड्स इन सीड सिस्टम बनाने पर मोहर लगी है। साथ ही ब्रिक्स सदस्यों ने सतत कृषि नेटवर्क और कृषि पारिस्थितिकी के लिए एक्सीलेंस सेंटर बनाने का भी निर्णय लिया है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि देश के 87% किसान छोटे और सीमांत हैं, इन्हें मजबूत करके ही खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है।
1: भारत खाद्य सुरक्षा, कृषि व्यापार, जलवायु परिवर्तन, डिजिटल कृषि समाधानों तथा कृषि क्षेत्र को अधिक सुदृढ़, समावेशी और भविष्य के लिए तैयार बनाने से जुड़े विषयों पर सहयोग को और आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। किसानों को केंद्र में रखकर खाद्य सुरक्षा, पोषण, आजीविका, कृषि व्यापार, नवाचार, निवेश तथा जलवायु सहिष्णु एवं सतत कृषि विकास को आगे बढ़ाने की हमारी साझा प्रतिबद्धता को प्रतिबिंबित करता है।
0: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज जनसांख्यिकीय परिवर्तन को लेकर एक बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने इस संबंध में गठित आयोग को सीमावर्ती जिलों में आबादी में हो रहे बदलावों का अध्ययन करने के निर्देश दिए। गृहमंत्री ने आयोग से सीमावर्ती क्षेत्रों, महानगरों और औद्योगिक शहरों का दौरा कर स्थिति का आकलन करने को भी कहा। केंद्र सरकार ने पिछले महीने घुसपैठ और दूसरे कारणों से हो रहे आबादी बदलावों से निपटने के उपाय सुझाने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का किया था। केंद्र सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना देश खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है।
1: भारत खाद्य सुरक्षा, कृषि व्यापार, जलवायु परिवर्तन, डिजिटल कृषि समाधानों तथा कृषि क्षेत्र को अधिक सुदृढ़, समावेशी और भविष्य के लिए तैयार बनाने से जुड़े विषयों पर सहयोग को और आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। किसानों को केंद्र में रखकर खाद्य सुरक्षा, पोषण, आजीविका, कृषि व्यापार, नवाचार, निवेश तथा जलवायु सहिष्णु एवं सतत कृषि विकास को आगे बढ़ाने की हमारी साझा प्रतिबद्धता को प्रतिबिंबित करता है।
0: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज जनसांख्यिकीय परिवर्तन को लेकर एक बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने इस संबंध में गठित आयोग को सीमावर्ती जिलों में आबादी में हो रहे बदलावों का अध्ययन

0: चुका है। वहीं 26 जिलों में किसानों को दिन में बिजली दी जा रही है। जिला प्रभारी मंत्रियों ने भी प्रेस वार्ता कर केंद्र सरकार की उपलब्धियों की जानकारी दी। साथ ही प्रदर्शनियों के माध्यम से भी केंद्र और राज्य सरकार की जनहित योजनाओं को बताया जा रहा है। प्रदेश में कल से शुरू हुए ग्रामीण और शहरी सेवा शिविरों के जरिए लोगों को लाभान्वित किया जा रहा है। इसके तहत लोगों की समस्याओं का मौके पर ही निपटारा कर उन्हें विभिन्न जनहित योजनाओं से भी जोड़ा जा रहा है। इसी कड़ी में जैसलमेर के पशुपालक गणपत कुमार ने बताया कि उन्हें ग्रामीण सेवा शिविर में मंगला पशु बीमा योजना का फायदा मिला है।
1: मैंने मंगला पशु बीमा योजना के तहत दो गायों का बीमा करवाया था, जिसमें एक गाय की डेथ होने के बाद मुझे 18,000 रुपए क्लेम मंगला पशु बीमा योजना के तहत मिल चुका है। और ग्रामीण सेवा क्षेत्र जैसे अमर सागर से हूँ मैं, और मैं अभी नरेंद्र मोदी जी और सीएम भजनलाल जी का तहे दिल से स्वागत धन्यवाद करना।
0: पाली के गुणा एंदला ग्रामीण सेवा शिविर में टीबी मरीजों को निक्षय पोषण किट वितरित किए गए। राजस्थान लोक सेवा आयोग के भर्ती पोर्टल में सेंधमारी के प्रयास का मामला सामने आया है। सहायक खनिज अभियंता भर्ती 2024 के तहत 3 अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदनों को विड्रॉ करने का मामला संज्ञान में आते ही आयोग ने त्वरित कार्यवाही करते हुए अजमेर में FIR दर्ज करवाई है। आयोग के सचिव ने बताया कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने सोची समझी साजिश के तहत इस पोर्टल को अवैध रूप से एक्सेस कर 3 अभ्यर्थियों के आवेदनों को समाप्त किया था, जिससे अन्य अभ्यर्थियों को उसका फायदा मिल सके। उन्होंने कहा कि आयोग युवाओं के भविष्य और परीक्षा प्रणाली की शुचिता को लेकर अत्यंत संवेदनशील है। पोर्टल से छेड़छाड़ कर परीक्षा प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। और अब मौसम। प्रदेश में नए पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता और प्री मॉनसून की गतिविधियों के कारण आज 5 संभागों में अंधड़ और गरज के साथ बरसात का अलर्ट है। इस दौरान कहीं कहीं 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से हवाओं से नमी की आपूर्ति हो रही है, इससे कई जगह पानी बरसने के आसार हैं। वहीं बीते 24 घंटों में अनेक स्थानों पर हल्के से मध्यम बारिश हुई। सबसे ज्यादा 5 सेंटीमीटर पानी दातारामगढ़ में बरसा। श्रीगंगानगर, चूरू और सीकर में ओले भी गिरे, इससे तापमान में 8 डिग्री तक की गिरावट आई है। राजधानी जयपुर में भी देर रात शुरू हुआ बारिश का दौर रुक रुक कर आज सुबह भी जारी रहा। भीलवाड़ा में भी आज सुबह हल्की बरसात हुई, इससे गर्मी और उमस में कमी आई है। राज्य में अंधड़ और बरसात का सिलसिला अगले 3-4 दिन तक बना रह सकता है। उधर जैसलमेर में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप है। दिन का पारा 44 डिग्री के पार दर्ज हुआ। यहां धूल भरी आंधी चलने का अंदेशा भी जताया गया है। मौसम विभाग ने लोगों को गरज चमक और तेज हवाओं के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी है। वहीं किसानों को फसलों की कटाई और भंडारण का काम सावधानी से करने को कहा गया है। 21 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए दुनिया भर में बड़े पैमाने पर तैयारियां की जा रही हैं। लगभग 190 देशों में इसका आयोजन होगा। इस वर्ष योग दिवस की थीम योग फॉर हेल्दी एजिंग रखी गई है। इसका उद्देश्य बढ़ती उम्र में लोगों को स्वस्थ और सक्रिय जीवन जीने के लिए प्रेरित करना है। योग दिवस काउंटडाउन के तहत प्रदेश में भी अनेक स्थानों पर योग शिविर लगाए जा रहे हैं, जिनमें सामूहिक रूप से योगाभ्यास किया जा रहा है। उधर अहमदाबाद में हुई पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले पाली के अर्जुन परमार ने लोगों से योग से जुड़ने की अपील की है।
2: भारत में हुई विश्व स्तरीय योगासन प्रतियोगिता में मैंने भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए 2 स्वर्ण पदक प्राप्त किए, एक आर्टिस्टिक सिंगल और एक आर्टिस्टिक ग्रुप में प्राप्त किया। आगामी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए कहना चाहता हूँ कि योग केवल एक शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी सभी लोगों के लिए कार्य करता है। मैं विशेष रूप से युवाओं का आग्रह करना चाहूंगा कि योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करें।
0: जयपुर सैन्य स्टेशन में शिक्षा और समाज कल्याण से जुड़ी पहलों को आगे बढ़ाने के लिए एक विशेष कार्यक्रम रखा गया। इसमें सेना और सिविल सोसाइटी के बीच सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया। जनसंपर्क अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल निखिल धवन ने बताया कि इस दौरान वीर नारियों का सम्मान और सशस्त्र बलों के सैनिकों के मेधावी बच्चों को टैबलेट वितरित किए गए। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय सैन्य अकादमी की पासिंग आउट परेड में पहली बार 9 महिला कैडेट शामिल। महिला नेतृत्व वाले विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम। भारतीय सेना के उप सेना प्रमुख

लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ अगले आर्मी चीफ नियुक्त, 30 जून को सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी का स्थान लेंगे। भजन लाल शर्मा ने कहा, केंद्र की एनडीए सरकार की नियमों में पारदर्शिता और नीतियों में दूरदर्शिता से देश प्रगति के पथ पर अग्रसर। और प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता और प्री मॉनसून गतिविधियों के कारण कई स्थानों पर आंधी बारिश का सिलसिला, तापमान में 8 डिग्री तक गिरावट। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से सिरोही जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख साकेत गोयल ने तैयार किया है। सिरोही जिले में इन दिनों मॉनसून पूर्व तैयारियों के साथ साथ विभिन्न जनकल्याणकारी और जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। प्रशासनिक स्तर पर विकास कार्यों की समीक्षा का दौर जारी है, तो वहीं जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, स्वास्थ्य सेवाओं और सामाजिक सरोकारों से जुड़े कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। आज की जिले की चिट्ठी में बात करेंगे ऐसी ही कुछ प्रमुख गतिविधियों की। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर जिला प्रशासन द्वारा बाल श्रम मुक्त सिरोही अभियान चलाया गया। जिला कलेक्टर रोहिताश्व सिंह तोमर के निर्देशन में आबू पर्वत और सिरोही क्षेत्र में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। होटल, रेस्टोरेंट और दुकानों पर निरीक्षण कर बाल श्रमिकों के चिन्हीकरण की कार्रवाई की गई। साथ ही आशा सहयोगिनियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और ग्रामीण महिलाओं को बाल श्रम उन्मूलन तथा बच्चों के अधिकारों के संबंध में जानकारी दी गई। चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 तथा विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी इस अभियान में भाग लिया। आमजन को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा शहरी सेवा शिविर अभियान शुरू किया गया है। अभियान के तहत 15 जुलाई तक विभिन्न स्थानों पर शिविर लगाए जाएंगे। इन शिविरों के माध्यम से भूमि नियमन, पट्टा वितरण, कच्ची बस्ती नियमन तथा अन्य लंबित मामलों का समाधान किया जाएगा। विभिन्न श्रेणियों में दी गई छूट का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए नगर परिषद द्वारा आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं। स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा के लिए जिले के प्रभारी मंत्री के विश्नोई ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। उन्होंने ट्रॉमा सेंटर, ओपीडी, दवा वितरण केंद्र तथा अन्य विभागों का अवलोकन कर व्यवस्थाओं की जानकारी ली। इस दौरान सड़क सुरक्षा में घायल मरीजों से मुलाकात कर उनकी उन्होंने कुशल क्षेम पूछी, चिकित्सकों को आवश्यक निर्देश दिए, अस्पताल में आने वाले मरीजों और उनके परिजनों की समस्याओं पर चर्चा भी की। जिला प्रशासन द्वारा आमजन की समस्याओं के समाधान के लिए लगातार जनसुनवाई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। पंचायत समिति आबू रोड में आयोजित उपखंड स्तरीय जनसुनवाई में जिला कलेक्टर रोहिताश्व सिंह तोमर ने ग्रामीणों और नागरिकों की समस्याएं सुनी। जलापूर्ति, खाद्य सुरक्षा, विद्युत लाइन, प्रधानमंत्री आवास योजना, पार्क विस्तार तथा अन्य सुविधाओं से जुड़े मसलों पर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए। साथ ही पात्र व्यक्तियों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने पर जोर दिया गया। प्रदेश में अच्छी वर्षा और खुशहाली की कामना को लेकर जिले के विभिन्न धार्मिक स्थलों पर पूजा अर्चना के कार्यक्रम आयोजित किए गए। सिरोही के सारणेश्वर महादेव मंदिर तथा पिंडवाड़ा क्षेत्र के गोपेश्वर महादेव मंदिर में जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों और श्रद्धालुओं ने भाग लिया। ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग की योजनाओं की समीक्षा के लिए जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में पिछले दिनों बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया और राहत तथा बचाव व्यवस्थाओं पर चर्चा की गई। मॉनसून को देखते हुए जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। संभावित बाढ़, अतिवृष्टि तथा अन्य प्राकृतिक परिस्थितियों से निपटने के लिए जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जिला प्रशासन और वन विभाग के संयुक्त तत्वावधान में लवकुश वाटिका में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का समापन हुआ, साथ ही हरियालो राजस्थान अभियान की शुरुआत हुई। कार्यक्रम में जल संरक्षण, पौधरोपण और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण का संदेश दिया गया। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत बत्तीसा बांध पर भी कार्यक्रम रखा गया। प्रभारी मंत्री के विश्नोई ने जल संरक्षण के महत्व पर प्रकाश डाला। जिले भर में आयोजित विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से लोगों को जल बचाने और वर्षा जल संचयन के प्रति जागरूक किया गया। अंतर्राष्ट्रीय

0: योग दिवस के सिलसिले में जिले में विभिन्न गतिविधियां की जा रही हैं। माधव विश्वविद्यालय की ओर से योग महोत्सव 2026 के 100 दिवसीय काउंटडाउन कार्यक्रम चल रहे हैं। कार्यक्रमों का उद्देश्य युवाओं को योग, स्वास्थ्य और संतुलित जीवन शैली के प्रति जागरूक करना है। सिरोही जिले की चिट्ठी में इतना ही। नमस्कार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर हूँ। पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार, इंडियन मिलिट्री एकेडमी री पासिंग आउट परेड में पहली दफा 9 महिला कैडेट शामिल। महिला हमारी अगुवाई में विकास रे दिशा में खास कदम। उपसेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ अगला सेना प्रमुख फैला। 30 जून न जनरल उपेंद्र द्विवेदी री ठौर लेवेला। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा कहो, केंद्र री एनडीए सरकार री नियमा माय साफ कोई और नीतियां माय आगे री सोचूं देश बरकत रा गेला माथे चाल रियो है। और प्रदेश माय कई ठोणा आंधी बारिश रो सिलसिलो, पारा माय 8 डिग्री सेल्सियस ताई री गिरावट। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। फौज ने आज 481 नुआ नौजवान अहलकार मिल गया। आम आए 9 महिला कैडेट शामिल है जो महिलाओं री अगुवाई माए विकास री दिशा माए खास जतन है। देहरादून री भारतीय सैन्य अकादमी माए राखी जी 158वीं पासिंग आउट परेड माए महिला कैडेट आखिरी पग पार कर फौजी अहलकार बनवारो गौरव हासिल कीनो। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पासिंग आउट परेड रो निरीक्षण कीनो। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ फौज रा आगला मुखिया फैला। जनरल सेठ फिलहाल फौज रा उप प्रमुख रा तौर सेवा दे रहा है। केंद्र सरकार माने 30 जून आ नियुक्ति दीनी है। वह मौजूदा चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी रिठौड़ लेवेला। लेफ्टिनेंट जनरल सेठ खड़गवासला री नेशनल डिफेंस एकेडमी रा विद्यार्थी रहा है। करीब 40 साल री फौजी सेवा माए वे ऑपरेशनल रणनीतिक क्षमता विकास और संस्थागत हलका माए खास भूमिका निभाई। वे दिल्ली एरिया रा जनरल ऑफिसर कमांडिंग रहा और दक्षिण पश्चिम कमानी संभाली। असम रा जोरहाट माए आज समारे भारतीय वायुसेना रो एक जहाज AN-32 हादसा रो शिकार फेंक्यो। इन कारण 5 जवान शहीद फेंक्या। वायुसेना कन्यू करीचिया सोशल मीडिया पोस्ट रे मुजब हादसा रे कारण स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सार्जेंट जितेंद्र शर्मा, अग्निवीर खेमाराम कुमावत और अग्निवीर दानिश आलम री मौत वेकी। हादसा री ठौड़ सर्वाती जांच सागे जरूरी कार्रवाई करी जा रही है। ब्रिक्स देशां रा कृषि मंत्रियां रा इंदौर माए राखी जिया सम्मेलन माए बीजां री प्रणालियां रा बारा माए ग्लोबल फोरम और फार्मर साइट्स इन सीड सिस्टम बनावन री मंजूरी दी रीची है। भारत री सदारत माए भी आई सम्मेलन माए ब्रिक्स रा सदस्य देश कृषि नेटवर्क और कृषि पारिस्थितिकी सारू एक्सलेंस सेंटर बनावन रोई फैसलो कीनो। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान कहो के देश रा 87% किसान नाना और सीमांत है जाने मजबूत बना रही देश रे खाद्य सुरक्षा तय करी जा सके है।
2: भारत खाद्य सुरक्षा, कृषि व्यापार, जलवायु परिवर्तन, डिजिटल कृषि समाधानों तथा कृषि क्षेत्र को अधिक सुदृढ़, समावेशी और भविष्य के लिए तैयार बनाने से जुड़े विषयों पर सहयोग को और आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। किसानों को केंद्र में रखकर खाद्य सुरक्षा, पोषण, आजीविका, कृषि व्यापार, नवाचार, निवेश तथा जलवायु सहिष्णु एवं सतत कृषि विकास को आगे बढ़ाने की हमारी साझा प्रतिबद्धता को प्रतिबिंबित करता है।
1: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जनसांख्यिकी माए बदलाव रेठा करण सारू बनाई चिया आयोग ने सरहदी जिला माए आबादी रा बदलाव रे जानकारी करण बाबत कहो है। वह आज इंबारा माए राखी जी मीटिंग माए बोल रहा है। गृह मंत्री आयोग सरहदी हलका महानगरा और औद्योगिक शहरां रो दौरो कर हालात रो जायजो लेवन सारू कहो। ध्यान जोग है कि केंद्र सरकार घुसपैठ और दूजा कारणों आबादी में बदलाव न रोकने रा उपाय सुझावन सारू आला दर्जारी समिति।

0: बनाई है। देश में लारला 10 साल में जन्म री भगत हर 1000 लड़का ने मुकाबले लड़कियां री तादाद 918 बेधर 929 वेगी है। स्कूलों में माध्यमिक स्तर माथे टाबनिया री तादाद 75 बेधर 80% रे करीब फेंकी है। महिला और बाल विकास मंत्रालय रे मुजब केंद्र सरकार री बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना देश भर में टाबनिया ने मजबूत बनावन रो मोटो अभियान बन रही है। समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारा एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक मथे AIR न्यूज राजस्थान पर आई सुन सको हो। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा कहो है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री अगुवाई माए देश माए हर हलका माए तरक्की भी है। वे आज जयपुर माए खबर नवीसा सागे बातचीत कर रहा है। केंद्र माए एनडीए सरकार रा 12 साल री उपलब्धियां रो जिक्र करता थका श्री शर्मा कहो के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र प्रथम री सोच सागे नियमा माए साफ गोई और नीतियां माए आगे री सोच सागे देश ने विकास रा गेला माथे आगे बधायो है।
1: आत्मनिर्भर के बिना विकसित भारत का सपना पूरा नहीं हो सकता। इसी प्रेरणा से मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान को गति प्रदान की गई। आज भारत रक्षा, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, फार्मा जैसे अनेक क्षेत्रों में विनिर्माण और निर्यात के नए रिकॉर्ड स्थापित कर रहा है। पिछले 12 वर्षों में जितनी तेजी से भारत का बुनियादी ढांचा सुदृढ़ हुआ है वो आप अपने आप में एक मिसाल है।
0: श्री शर्मा कहो कि प्रदेश में आई प्रति व्यक्ति आमदनी बढ़ी है। पहली 8 प्रति व्यक्ति आय 69,000 रुपया सालाना ही जो अब बेधर 2,00,000 रुपया बत्ती वे की है। मुख्यमंत्री कहो कि राज्य रा 26 जिला माए किसाना ने दिन माए बिजली दी जा रही है। जिलाना प्रभारी मंत्री प्रेस वार्ता कर केंद्र सरकार री उपलब्धियां री जानकारी दीनी। इस आगे प्रदर्शनियां रे जरिए केंद्र और राज्य सरकार का नियम चलाई जा रही जनता रा भलारी योजनावां री जानकारी लोगों ने दी जा रही है। प्रदेश में चल रहा ग्रामीण और शहरी सेवा शिविरों के जरिए जनता की समस्याओं मौके निपटार वाने सरकार का भलारी योजनावा जोड़ी जा रही है। जैसलमेर रा पशुपालक गणपत कुमार बतायो कि वाने ग्रामीण सेवा शिविर में मंगला पशु बीमा योजना रो फायदो मिलियो।
2: मैंने मंगला पशु बीमा योजना के तहत 2 गायों का बीमा करवाया था जिसमें गाय की डेथ होने के बाद मुझे 18,000 रुपए क्लेम मंगला पशु बीमा योजना के तहत मिल चुका है। और ग्रामीण सेवा क्षेत्र जैसे अमर सागर से हूँ मैं और मैं अभी नरेंद्र मोदी जी और सीएम भजनलाल जी का तहे दिल से स्वागत धन्यवाद करता हूँ।
0: पालीरा गुढ़ा एंदला माए लगाई चया ग्रामीण सेवा शिविर माए टीबी री बीमारी रा मरीजा ने निक्षय पोषण किट दिया चया। राजस्थान लोक सेवा आयोग सहायक खनिज अभियंता भर्ती 2024 रा 3 उम्मीदवार काने ऑनलाइन तरीकों दाखिल करी जी अर्जियां भर्ती पोर्टल माए सेंध मारी रजरिए पाछी ले लेवन रा मामला माए अजमेर पुलिस माए FIR दर्ज कराई है। आयोग रा सचिव बतायो कि कोई अनजान मिनख दूजा उम्मीदवार न फायदो देरावन रा मकसद सोची समझी साजिश रा तहत ई पोर्टल माए गैर कानूनी तौर सेंध लगार 3 उम्मीदवार री अर्जियां हटा देनी ही। अरब मौसम प्रदेश रा 5 संभागा माए आज अंधड़ और गरज सागे बरसात सारू चेताई चियो है। इस दौरान कठे कठे 60-70 किलोमीटर प्रति घंटा री रफ्तार बायरो बाजन री शंका है। इन विचे लाडला 24 घंटा माए कई ठोड़ा बिरखा भी सबू बत्तो 5 सेंटीमीटर पानी सीकर जिला रा दांता रामगढ़ माए बरसियो। श्री गंगानगर चूरू और सीकर माए ओला पड़िया जिनु तापमान माए 8 डिग्री सेल्सियस ताई री कमी आई। राजधानी जयपुर में आई मोड़ी रात सरूफियो बारिश रो दौर रुक रुक कर आज सवारे ताई चालतो रहो। भीलवाड़ा में आई आज सुबह हल्की बरसात भी। राज्य में अंधड़ और बरसात रो सिलसिलो आवता 3-4 दिन ताई चालतो रहवन री संभावना है। दूजिकानी जैसलमेर माए जोरदार गर्मी और लू बीच पारो 44 डिग्री सेल्सियस ने पार करक्यो वठे आंधी चालन री संभावना है। मौसम विभाग किसाना ने साखा री कटाई अरवाने भिड़ीकरण रा काम माए सावचेती राखण सारू कहो है। 21

0: जून अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनावण सारू आखी दुनिया में तैयारियां चल रही है। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस रे मौके करीब 190 देशों में भांत भांत रा कार्यक्रम रखा जावेला। इस साल योग दिवस रो मुद्दो योग फॉर हेल्दी एजिंग राखी चियो है। इनरो मकसद बढ़ती उम्र में लोगों ने स्वस्थ और सक्रिय जिंदगी जीवन री सीख देवनो है। इस सिलसिला में प्रदेश में आए कई ठोणा योग शिविर लगाया जा रहा है। इस अहमदाबाद में भी पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप में सोना रा दो तमगा जीतने वाला पाली जिला रा अर्जुन परमार जनताओं योग जुड़वारी अरज कीनी है।
1: भारत में हुई विश्व स्तरीय योगासन प्रतियोगिता में मैंने भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए दो स्वर्ण पदक प्राप्त किए, एक आर्टिस्टिक सिंगल और एक आर्टिस्टिक ग्रुप में प्राप्त किया। आगामी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए कहना चाहता हूँ कि योग केवल एक शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी सभी लोगों के लिए कार्य करता है। मैं विशेष रूप से युवाओं का आग्रह करना चाहूंगा कि योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करें।
0: जयपुर फौजी स्टेशन में शिक्षा और समाज कल्याण जुड़िया काम आगे बढ़ावन सारू एक खास कार्यक्रम राखी चियो। इन माय फौज और सिविल सोसाइटी बीचे मदद बढ़ावन माथे जोर दियो चियो। फौज रा जनसंपर्क अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल निखिल धवन बतायो कि इन दौरान वीर नारियां रोमान करी चियो और फौजियां रा बच्चा ने टैबलेट दिया चिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी हर महीना प्रसारित करिया जावन वाला खास कार्यक्रम मन की बात माय 28 जून ने विचार बतावेला। आ ई कार्यक्रम री 153वीं कड़ी फैला। इसारू आप ही मुफ्त नंबर 1800117800 माथे 26 जून ताई राय दे सको हो। नंबर और जो सुन ले रहा हो सा
1: दो स्वर्ण पदक प्राप्त किए, एक आर्टिस्टिक सिंगल और एक आर्टिस्टिक ग्रुप में प्राप्त किया। आगामी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए कहना चाहता हूँ कि योग केवल एक शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी सभी लोगों के लिए कार्य करता है। मैं विशेष रूप से युवाओं का आग्रह करना चाहूंगा कि योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करें।
0: जयपुर फौजी स्टेशन में शिक्षा और समाज कल्याण जुड़िया काम आगे बढ़ावन सारू एक खास कार्यक्रम राखी चियो। इन माय फौज और सिविल सोसाइटी बीचे मदद बढ़ावन माथे जोर दियो चियो। फौज रा जनसंपर्क अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल निखिल धवन बतायो कि इन दौरान वीर नारियां रोमान करी चियो और फौजियां रा बच्चा ने टैबलेट दिया चिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी हर महीना प्रसारित करिया जावन वाला खास कार्यक्रम मन की बात माय 28 जून ने विचार बतावेला। आ ई कार्यक्रम री 153वीं कड़ी फैला। इसारू आप ही मुफ्त नंबर 1800117800 माथे 26 जून ताई राय दे सको हो। नंबर और जो सुन ले रहा हो सा

0: चून देश बरकत रा गेला माथा चाल रियो है। हर प्रदेश में कई ठोणा आंधी बारिश रो सिलसिलो। इंसा गई प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो भियो। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 266.6 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम की 7 बजे हैं। अब हमारे ग्रामीण परिवार सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम खेती और घर।

0: राम राम ममता भाई सा राम राम
1: राम राम पेमा भाई राम राम
0: खेती और घर कार्यक्रम सुनवा वाला सगला किसान भाई ने अपनो
1: राम राम सा।
0: देखो सा किसान भाया अपना कार्यक्रम रिटेम भी और मैं आया अपना घनी सारी जानकारी देवर वास्ते, तो खेती बाड़ी संबंधी जानकारी देवा, पशुपालन संबंधी जानकारी देवा, मौसम संबंधी जानकारी देवा, सरकारी योजना अपना वास्ते जो चली रही अंडी जानकारी देवा और लारे लारे काम काज री बातचीत अपने वास्ते कई वैसे कई या सब जानकारी लेना आया हाँ। तो ममता भाई साहब आपी बेटा चौपाल रहा महीने और आज अपना किसान भाई ने आपकी कई जानकारी देना चाहिए रहा।
1: तो देखो पेमा भाई, आज आप किसान भाई ने जानकारी कराई रहा हाँ कि बकरी पालन एक अत्यधिक लाभदायक और आधुनिक तकनीकों अपनाई ने एक आप देखा बकरी पालन एक अत्यधिक लाभ देवा वालों व्यवसाय बनी गयो है सा। बकरी पालन आज एक अधिक लाभ देवा लारे लारे वैज्ञानिक उद्यम रे रूप में भी उभरी रो है और आधुनिक तकनीका ने अपनाई ने नी केवल आपा उत्पादन में वृद्धि कर सका बल्कि लागत ने कम करीने मुनाफो भी कई गुना आपा बढ़ाई सका सा। और आपा देखा कि भाई अणी में बकरी पालन री आधुनिक तकनीका कई है, तो अणी में उन्नत प्रजनन जे तकनीका है वणी में कृत्रिम गर्भाधान है, हार्मोनल सिंक्रोनाइजेशन है, ये सब है सा।
0: सही कह रहे हो सा। देखो उन्नत प्रजनन तकनीक जो है वणी में कृत्रिम गर्भाधान जो है सबों पहली बताई रखी है और वण में देखो कि अपना एक बड़ो तकनीकी काम है और अण में जो काफ़ी सुधार की गुंजाइश भी इनमें दिखे है और अण के माध्यमों को ये कि दूर दराज तक क्षेत्र में भी उच्च गुणवत्ता वाले जो है नर जो बकरी है मतलब जिन्हें बकरों के वहाँ हाँ वणी के माध्यमों जो है नस्ल सुधार को काम वही सके और आनुवंशिक रूपों जो है अण में सुधार को काम भी वही सके। और अण इस तरह देखो कि जो हार्मोनल जो स्थिति बताई रही कि अंडा महीने कही है कि दवा का माध्यमों जो है बकरिया ने प्रजनन चक्र में नियंत्रण करनो है वन में सुधार लावनो है, तो यो काम भी अणु बढ़िया वही से कैसा
1: लारे लारे रेणी में कई वेवे की अणियों जो बकरियां वे समय पर गर्भ धारण करे और एक समान चनी में वे प्रबंधन भी आसान वे जावे और ब्याह एक टाइम पे वे जावे सा। लारे लारे यहाँ पर दूसरी बात करा तो अणी में स्मार्ट सेंसर और मॉनिटरिंग वे आधुनिक बकरी पालन में अबे कई वेरो के RFID टैग और स्मार्ट कॉलर उपयोग कियो जाई रो है। अणी में डिवाइस बकरी रे तापमान गतिविधि रो स्तर और चरवारी जी आदता है वणी पे नजर रखे, जणियों कणी भी बीमारी रो लक्षण अगर दिखे तो पहली चेतावनी मिली जावे सा।
0: सही कह रहे हो सर। अणि इस तरह देखो डेटा आधारित प्रबंधन भी विभाजन में कही है कि मोबाइल का मायने जो ऐप है सॉफ्टवेयर है वणी के माध्यमों कही है कि बकरी का स्वास्थ्य को रिकॉर्ड वेगी वणी का दूध को उत्पादन वेगी और टीकाकरण की जो तारीखा है या फिर डिजिटल डेटा जो भी है वणी को सारो रख रखाव उनके माध्यमों वही सके सा।
1: और अणी में पेमा भाई आगे बात करा तो वैज्ञानिक पोषण और चारा प्रबंधन री, तो अणी में हाइड्रोपोनिक चारो वेवे जो कम जगह में बिना मिट्टी रे बात केवल पानी और पोषक तत्वों 7-8 दिन में हरो चारो तैयार कियो जा सके। यो हरो चारो पौष्टिक वेवे और पशुओं री दूध देवारी जो क्षमता है वने भी बढ़ावे सा।
0: सही कह रहे हो सर। अणि इस तरह देखो संतुलित आहार की बात करें तो देखो बकरी की उम्र है वन को वजन है गर्भावस्था का चरण के आधार पर जो पोषण जो चार्ट तैयार करना चाहे वो काम है, तो ये सब काम कही है कि चारा की बर्बादी कम कर सके और वन में कई पशु की अपने आवश्यकता है वन में ऊर्जा है प्रोटीन है सही मात्रा में वन मिली सके।
1: लारे लारे आप बात करा स्वचालित फीडिंग और वाटरिंग री, तो ऑटोमेटिक जो सिस्टम है वन्य माध्यम बकरियां ने ताजा पानी दाणो निर्धारित टेम पे देनो और वणी मात्रा में मिला तो रहनो, चणियों के वेक श्रम लागत में कमी आवे। लारे लारे आप मशीनीकृत दूध और दुहाई री बात करा तो डेयरी और बकरी पालन में ऑटोमेटिक मिल्किंग जो मशीना है वनारो उपयोग स्वच्छता बनाए रखे और समय री बचत भी करे है सा।
0: और देखो साहब बात रहे हो कि स्वास्थ्य और बायो सिक्योरिटी की, तो जो समयबद्ध टीकाकरण

0: की बात करना तो देखो, टीकाकरण को जो काम है वो डिजिटल कैलेंडर है और नियमित स्वास्थ्य जांच है वण के माध्यम प्रोटोकॉल जो बीमारियां है वण के फार्म में जो है वण के रोकवारो काम करे है और यो काम आप आसानी कर सका सा।
1: वो लारे लारे बात करा बायो सिक्योरिटी, तो फार्म में प्रवेश रो द्वार वे वणी पे फुटपाथ वणियो थको वे जणी पेर धोवारी व्यवस्था वे, और बाहरी जे व्यक्ति वे वणारे आवागमन पे नियंत्रण जैसी तकनीका संक्रमण ने रोकवा में सहायक वे हैसा।
0: और देखो साई, मैं एक बिंदु और बताई रखी हूँ, ब्लॉक चेन और ट्रेसिबिलिटी। यानी को मतलब यो है कि अब बाजार महीने के उत्पाद जो है जन्मा दूध है मांस है, यानी कि शुद्धता और वण के पूरा जीवन चक्र ने ट्रैक करवा, मतलब पे निगरानी रखवा को काम है वण ने ब्लॉक चेन को उपयोग कियो जावे। और अणियों को ये कि उपभोक्ता को जो भरोसा है वो बढ़े और किसान भाई अपना पशुपालक भाई है वण के उत्पाद जो भी है वण में एक गुणवत्ता में सुधार और मूल्य में वृद्धि व्यवहार को काम है वैसा।
1: तो केवारो मतलब यो है पेमा भाई कि आधुनिक जे तकनीका है वे न केवल पशु स्वास्थ्य ने बेहतर बनावे बल्कि एक छोटा स्तर पे बकरी पालक ने व्यावसायिक स्तर पे प्रतिस्पर्धा करवा में सहायक भी करे है, सक्षम बनावे, और तकनीकी जे सही तालमेल और सरकारी योजनाओं रे उपयोग बकरी पालन अपने राजस्थान जैसा क्षेत्र रे वाते स्थायी और समृद्ध आजीविका रो साधन बन सके सा।
0: सही कह रहे हो ममता भाई, सही। या तो भी जानकारी कार्यक्रम में आया हाँ तो देखो मनोरंजन भी करना चाहवा आपके हो तो एक राजस्थानी गीत सुनाई था।
1: बिल्कुल सा।

0: तो देखो पेमा भाई, किसान भाई ने प्यारो सो राजस्थानी लोक गीत सुनाए और अब यहाँ पर देखो कार्यक्रम में आगे बढ़ा और किसान भाई ने जानकारी करावा मौसम री। देखो पेमा भाई, टेम टेम पे आपा किसान भाई रवाते मौसम री जानकारी लेने आवा और अणी जानकारी रो फायदो किसान भाई अपनी खेती बाड़ी में हावचेत वही ने करे फायदो उठावे सा। तो देखो आज आपा बात करा मौसम विज्ञान विभाग जयपुर प्राप्त सूचना रे आधार पे आगामी दिना में 3 से 10 मिलीमीटर बारिश व्यवहारी संभावना है। हवारी गति देखा तो 1 से 3 किलोमीटर प्रति घंटा रे वेगु दक्षिण पश्चिम चलेगा और अधिकतम जो तापमान है वो 35 से 40 और न्यूनतम तापमान 24 से 26 रेवारे लल्लारे। सापेक्ष जो आर्द्रता है वह न्यूनतम 48 से 58 और अधिकतम 19 से 28% रेवारी संभावना है सा।
1: सही कह रहे हो सा। देखो सा, सामान्य जानकारी देवा तो अपना मिट्टी के नमी जो है वन में बनाए रखवार वास्ते अपन ने पंक्तियां का बीच में जो है सूखी घास फसल में अवशेष जो है वन को इस्तेमाल करना चाहे। गर्म हवा जो है वन वंचवार वास्ते का एक अपना क्षेत्र में जो सीमा है वन में अपना विंड ब्रेक स्ट्रिप जो है वे लगावनी चाहे। जणु कही है कि जूट की जालियां वनों वने सा।
0: हमें आम री बात करा तो आम रे पौधा पे पानी री जरूरत रे हिसाब उ सिंचाई करनी चाहे और आम रा जे पेड़ है वणी पे कीड़ों ने नियंत्रित करा रवाते मेलोथियन 50 cc रो छिड़काव 1.25 लीटर पानी और 1.0 मिलीलीटर दर उकरनो है और मॉल फॉर्मेशन विकृति रे प्रभावित टहनिया और डालिया ने हटाई देनो है और जेना आम रा पेड़ में आपा देखा फल या फूल गिरवारी समस्या दिखी रही है तो बटे 15 लीटर पानी में 4 मिलीलीटर फ्लोनोफिक्स मिलाने नो छिड़काव करनो चाहे सा।
1: सही कह रहे हो सर। देखो मूंग की खेती भी अपना किसान भाई करे तो वहाँ ने कहवा कि मूंग की फसल में देखो पित्त शीरा मोजेक रोग जो लागे तो वहाँ की रोकथाम रा वास्ते अपना कई करनो है कि डाईमिथियोएट 30 EC 1 मिलीलीटर पानी रे महीने मिलाइन जो है वन को छिड़काव अपन ने करनो है। और अणिस तरह देखो कि अपने जो कपास री खेती करा वन में कही है कि देरियों बोई दे की जो फसल है वन की तुलना रे महीने अधिक उपज लेवार वास्ते अपन ने कपास की टेम बोई शुरू करनी चाहे। और उन्नत किस्मा जो इनकी बताई मिली है वन में देखो अंकुर 32-24 BG द्वितीय और PCH 96-05 ये किस्मा बताई मिली है। और BT कपास की खेत में चारों मेर जो अपना गैर BT कपास की बुआई अपन करनी चाहे। और बुआई का लारे अपना कई करना कि पेंडी मिथियालिन 30 EC 1 लीटर 500 लीटर पानी रे महीने मिलाई ने छिड़काव करना चाहे सा।
0: अब यानी इस तरीके हूँ बेल वाली सब्जियाँ की बात करा तो कुष्मान कुल रीजे सब्जियाँ है मणि में लाल रंग कीट अंकुरित और नई पत्तियां ने खाई ने फसल ने हानि पहुंचाई सके। अनि रोकथाम रे वाते कार्बोरिल 5% चूर्ण 25 किलो प्रति हेक्टर दर सुबह

0: या शाम रे टेम पे किसान भाई ने हुड़काव करना चाहे और जायद मूंगफली री बात करा तो खरपतवार रे प्रकोप ने नियंत्रित करवा में वन्य उचित पेगिंग रे वाते इंटर कल्चर ऑपरेशन ने हाथ उगड़ाई री आवश्यकता आनी टेम पे पड़े है।
1: देखो साहब, अपना किसान भाई भिंडी री खेती भी करे तो वहां ने कहवा कि भिंडी का खेत र मैंने खरपतवार नियंत्रण रे वास्ते अपने गुड़ाई और निराई जो है वह करवा री सलाह आप दे रहा सा। चना खेतर महीने जायद की भिंडी रे महीने जो मोजेक वायरस जो है वण के लक्षण दिखाई देवे तो अपन कई करना है कि फूल आवो पहली और वण के बाद में डाई मेथोएट 30 1 लीटर जो है मिली लीटर प्रति लीटर पानी रे महीने मिला इन छिड़काव करनो चाहे सा।
0: हाँ, इस तरीको ग्रीष्मकालीन जो चारो है वन गर्मिया महीना में हरा चारा री कमी काफी आपा देखा आम वेजा तो हरा चारा वाली जो फसल है जैसे ज्वार वेगी बाजरो वेगियो मक्का वेगी लोबिया वेगियो अनारी वो वही करनी चाहे। लारे लारे किसान भाई अपने पशुधन रो भी विशेष ध्यान रखे वणारे पीवारे स्वच्छ पानी की व्यवस्था करे वणा ने छायादार स्थान पे बांधे और वणारे हवा आवारी पूरी व्यवस्था करे और वणा ने शेड नीचे बांधे सा।
1: देखो साहब, बदलता दिखा मौसम में आपने खुद रो भी ध्यान रखना, अपने डांडा चौपा को भी ध्यान रखना। बाणु जो टेम चल रही है देखो गर्मी री टेम चल रही है और वर्षा री टेम आ वाली है तो बदलता दिखा मौसम में कही है कि रोग वेवा की आशंका भी बती रहे तो अणी साहब को कही आपने टेम टेम पे जो है अपने शरीर को ध्यान रखना है। कई तरह की तकलीफ आपने लागे तो अस्पताल जाए जो आपने उपचार पूरा कराना चाहे और अपना डांडा चौपा में भी कई तरह को रोग आपने दिखाई दे तो तुरंत प्रभाव उपचार आपने कराना चाहे साहब।
0: तो देखो पेमा भैया, तो भी जानकारी और अब आपके हो तो कार्यक्रम ने आगे बढ़ावा और एक प्यारो सो राजस्थानी गीत कार्यक्रम में और सुनावा सा।
1: हाँ सा सुना है गीत।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: तो ममता भाई साहब राजस्थानी लोग की सुनियो सा और कार्यक्रम ने आगे बढ़ावा और सरकारी योजना अपना वास्ते कई चल रही है जानकारी अपना किसान भाई ने देवा सा। क्योंकि देखो सा सरकारी योजना जितनी भी चले अपना जीवन के कल्याण रा वास्ते चले ग्रामीण भाई रा वास्ते किसान भाई रा वास्ते पशुपालक भाई रा वास्ते तो आप क्यों नहीं सरकारी योजना को लाभ जो अगर आपकी पात्रता रखा तो आप उनको लाभ पूरा अपन लेना चाहवा। तो अब लाभ लेवर वास्ते कहीं अपनी योजना की जानकारी लेनी चाहवे और अणी वास्ते जब भी टेम टेम पे कहीं करा कि सरकारी योजना की जानकारी किसान भाई वास्ते लेना वासा।
3: तो देखो पेमा भाई आज आप किसान भाई वास्ते जानकारी लेना आया कि राष्ट्रीय पशुधन मिशन कई है सा भारत सरकार मत्स्य पालन पशु

0: पालन डेयरी मंत्रालय द्वारा शुरू की गई यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण योजना है। अन्य वर्ष 2014 और 15 में शुरू की गयो है सा पशुधन क्षेत्र का सर्वांगीण विकास रे वाते अन्य 21 और 22 में पुनर्गठित की दो घोषा
1: सही कह रहे हो सर। अणि मिशन रो उद्देश्य कही है वो भी बताई दा का अंडे महीने

0: करना है, उत्पादकता में बढ़ोतरी करनी है, उद्यमिता को विकास करना है और चारारो प्रबंधन करना है साहब।
1: बिल्कुल सा। और रोजगार सृजन में आप बात करा, पशुपालन रे माध्यम ग्रामीण जे युवा है वणा ने उद्यमिया रे वाते स्वरोजगार अवसर पैदा करना, उत्पादकता में वृद्धि में आपा देखा उन्नत नस्ला रे उपयोग और वैज्ञानिक जे प्रबंधन है वने जरिए प्रति पशु दूध मांस अंडा और ऊन री उत्पादकता ने बढ़ानो है सा।
0: और उद्यमिता विकास की जो बात वेरी है वन में देखो, असंगठित पशुपालक जो पशुपालन जो क्षेत्र है वन में संगठित क्षेत्र ने जोड़नो है और किसान भाई ने वणा के जो उत्पाद जो भी है वन ने बेहतर मूल्य दिलावणो है। और चारा प्रबंधन की जेटे बात है वटे देखो कि गुणवत्तापूर्ण चारों जो उपलब्ध कराना सुनिश्चित करना है और पशुओं के पोषण संबंधी जरूरत जतरी भी वन ने पूरी करनी है।
1: और अणि मिशन रा तीन मुख्य उप मिशन भी है सा। अणि में आपा देखा पशुधन और मुर्गी पालन री नस्ल ने सुधार करनो। अणि उप मिशन रो उद्देश्य उच्च अनुवांशिक क्षमता वाली जे नस्ल है वणारो विकास करनो। अणि में निजी उद्यमिया स्वयं सहायता समूह और किसान उत्पादक जे संगठन है वणारी ब्रीडिंग फार्म ने स्थापित करवा वाते वित्तीय सहायता और सब्सिडी भी प्रदान की जावे सा।
0: सही कह रहे हो सारा। देखो चारा और फीड विकास जो है वन की बात करें तो अपना देश रमे चारा की कमी ने देखता दिखाई उप मिशन चारा का उत्पादन और चारा के प्रसंस्करण और साइलेज मेकिंग और लारे लारे देखो चारा बीज श्रृंखला जो है वन ने मजबूत करवा रो काम भी जो में वेरो है अन पे जोर दीदो लोगो है। और नवाचार और विस्तार की बात करें तो योग क्षेत्र जो है देखो अपना अनुसंधान और विकास, पशु बीमा बढ़ावा देनो और पशुओं के स्वास्थ्य प्रबंधन करनो, किसान भाई के नई तकनीक को है प्रशिक्षण देनो, ये काम भी शामिल है सर।
1: और आगे उद्यमिता विकास कार्यक्रम की बात करा तो NLM रे तहत सबू आकर्षक पहलू है। अणि में उद्यमिता विकास कार्यक्रम है जणी में विभिन्न गतिविधियां वाते क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी दीदी जावे। अणि में पात्रता की बात करा तो व्यक्तिगत उद्यमी है, किसान उत्पादक संगठन है, स्वयं सहायता समूह है और सेक्शन री 8 कंपनियां भी अणि में आवेदन कर सके सा।
0: और लारे लारे देखो कि अपने के परियोजना की लागत जो है वन में आमतौर पर 50% तक जो है पूंजीगत सब्सिडी दी जा रही है। जनयू कही कि अधिकतम सीमा परियोजना के प्रकार जो है वन में देखो कि बकरी पालन, मुर्गी पालन, चारा प्रसंस्करण इकाई यानी के अनुसार अलग अलग जो काम वन में वेरो है। और आवेदन की प्रक्रिया की बात करें तो देखो वन में एक पोर्टल वन लोग है वन पोर्टल का माध्यम आप ऑनलाइन आवेदन करी सका।
1: बिल्कुल सा। अणि में राजस्थान जैसा राज्य में पशुपालन ग्रामीण अर्थव्यवस्था री रीढ़ है और यो मिशन अत्यंत प्रासंगिक है। अटे शुष्क जलवायु और चरवाहा जो संस्कृति है वने देखता थका बकरी पालन, ऊंट घोड़ा पालन और अणि जुड़ियों जो परियोजना है वने वाते यो मिशन किसान री आय बढ़ावर व एक सशक्त माध्यम भी बनी सके सा।
0: तो देखो सा राष्ट्रीय पशुधन मिशन जो केवल सरकारी वित्तीय सहायता माध्यम नहीं है बल्कि आपने देखो पारंपरिक पशुपालन और एक आधुनिक एग्री बिजनेस के बदले बदलवा को एक सुनियोजित योजना है। और इन योजना में देखो पशुपालक जो है वन के आय में बढ़ोतरी हो रही है बल्कि ग्रामीण क्षेत्र में इन्हें आत्मनिर्भरता है वन में प्रोत्साहन मिल रही है सा। तो यह तो भी जानकारी ममता भाई सा कार्यक्रम ने आगे बढ़ावा सुना एक और राजस्थानी गीत।
1: हाँ सा।

0: तो देखो पेमा भाई, कार्यक्रम में प्यारो सो राजस्थानी लोकगीत सुनाए और अब आप कार्यक्रम में जानकारी करावा किसान कॉल सेंटर कतरो अपने किसान भाई वाते उपयोगी है सा।
1: सही कह रहे हो साहब। देखो, किसान कॉल सेंटर जो है अपने कृषि क्षेत्र में इन्हें ज्ञान और तकनीक के बढ़ावा की एक डिजिटल क्रांति भी ना आप कह सका। अपना देश में देखो, भारतीय कृषि प्रणाली जो है वण में सूचना समय की जो दीदी की सलाह वण बहुत महत्वपूर्ण व्या करे। एक छोटो सो परामर्श जो है अपना फसल ने बर्बाद व्यव वंचाई सके, पशुपालक जो है अपना पशुओं में बीमारियां वंचाई सके और वण की रोकथाम कर सके। आनी जरूरत ने ध्यान में रखता दिखाई जो है अपना केंद्र सरकार की तरफ किसान कॉल सेंटर की शुरुआत की दी लगी है और जो अपना करोड़ों किसानों ने जो है भरोसेमंद डिजिटल मित्र के रूप में मदद कर रही है साहब।
0: बिल्कुल सा, किसान कॉल सेंटर कृषि मंत्रालय द्वारा संचालित एक ऐसी पहल है जिनो मुख्य उद्देश्य किसानों ने वनारे द्वारा उपयोग की जाने वाली जानकारी भाषाओं कृषि संबंधी समस्या और त्वरित समाधान प्रदान करे है। और किसान टोल फ्री नंबर अगर आप बात करा तो 1800-1501-5551 पे कॉल करीने विशेषज्ञों सीधा बात कर सके या सेवा पूरा भारत में सभी राज्य में उपलब्ध है।

0: ऐसा
1: अब देखो सा, किसान कॉल सेंटर अत्र उपयोगी किस तरह है इनकी जानकारी देवा तो बात यह है कि विशेषज्ञ सलाह तक आसान पहुंच वेणो है। अक्सर ग्रामीण क्षेत्र में कई वे है कि कृषि विशेषज्ञ जो है, कृषि वैज्ञानिक है, वहाँ की पहुंच बहुत मुश्किल वे जाया करे और किसान भाई जो है कॉल सेंटर वो एक दूरी खत्म वे जावे। तो अणि माध्यमों को यह है कि किसान अपना खेत रे महीने खड़ा दिखाई देखो, फसल रे महीने पौधा ने देखता दिखाई, अपना विशेषज्ञ जो है वणों सलाह मशवरों कर सके और कोई कीटनाशक जो है वण को इस्तेमाल करनो है, पाणत करनी है, आणी के बारे में जानकारी ले सके।
0: लारे लारे समय री बचत और तात्कालिक समाधानों आने किसान भाई ने मिले ऐसा पारंपरिक रूपों कृषि विभाग राज्य दफ्तर है बटे चक्कर लगानो समय लेवारी वाली जो प्रक्रिया है केसीसी रा माध्यम समाधान फोन पे ही मिल जावे जो आपातकालीन स्थितियां हैं जैसे फसल में अचानक कीट और प्रकोप वे गयो वही बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिले ऐसा लारे लारे स्थानीय भाषा में सहायता मिले या सेवा है सबू बड़ी ताकत है विशेषज्ञ स्थानीय बोली और भाषा में भी बात करे है जण्यू किसान अपनी समस्या ने विस्तार समझे सके और सलाह आसानी समझी ने अमल में लाई सके सा।
1: किसान कॉल सेंटर केवल फसलों ऊपर सीमित नहीं है बल्कि अपना विशेषज्ञ जो है और भी वन में सलाह देवे, जन में देखो कि फसल उत्पादन वेगियो, पशुपालन वेगियो, बागवानी और मत्स्य पालन वेगियो और सरकारी योजना का ही है, अणि के बारे में जानकारी देवो भी अणि में शामिल है।
0: तो देखो आधुनिक कृषि में डेटा रो बहुत ही महत्व है। किसान कॉल सेंटर पे मिलवा वाली जो सलाह है केवल अनुभव पे आधारित नहीं है बल्कि वैज्ञानिक डेटा पे टिकी थकी है। उदाहरण तौर पे आपा देखा यदि कहीं क्षेत्र में मिट्टी नमी कम है या कोई विशेष बीमारी फैल रही है तो कॉल सेंटर पे विशेषज्ञ वाला क्षेत्र का डेटा के आधार पे किसाना ने सतर्क कर सके और यह जानकारी किसाना ने सटीक कृषि और आपा देखा फार्मिंग री ओर ले जावे और वणी में मददगार वैसा।
1: किसान कॉल सेंटर को सबों सकारात्मक पहलू जो है वन में देखो किसाना ने आत्मनिर्भर बनाओ है। यदि किसान भाई अपना घर बैठे जानकारी मिल सके वना ने तो देखो अपना बिचौलिया जितना भी व्या करे वना पर निर्भरता खत्म हुई जावे और सही टाइम पे सही मिली दी की जो सलाह है वणियों का माध्यमों का कि फसल में व्यवहार नुकसान जो है वणी भी बचाया जा सके, लागत जो है वन में कमी लाई जा सके, शुद्ध मुनाफो है वन में बढ़ोतरी वही सके। अपना राज्य में देखो राजस्थान रा महीने जितना भी जिला है वन में देखो भौगोलिक स्थिति जैसी है, वन में देखता दिखाई जलवायु परिवर्तन की स्थिति ने देखता दिखाई कृषि में प्रभावित जो व्यवहार काम है वन का माध्यम जो है बड़ा उपयोगी है सा।
0: तो देखो किसान कॉल सेंटर तकनीक और परंपरा रो एक अनूठो संगम है यो सिद्ध करेगी यदि सही तकनीकी और सूचना सही समय पे किसान तक पहुंचाई जावे तो कृषि री जा उत्पादक था है वह कई गुना तक बढ़ी जाएगा और यह न केवल कृषि उत्पादन बढ़ारो माध्यम है बल्कि यह एक ऐसी सेवा है जो ग्रामीण भारत में विश्वास और ज्ञान रो प्रसार कर रही है और भविष्य में अन्य कृषि AI और वेदर फॉरकास्टिंग जैसी तकनीकों जोड़ी ने अन्य उपयोगिता ने भी अधिक बढ़ायो जा सके सा।
1: तो ममता भाई सही या तो भी जानकारी और जानकारी कला रहा देखो कार्यक्रम ने और आगे बढ़ावा। सुना एक और राजस्थानी गीत
0: बिल्कुल सा।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए, उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: तो ममता भाई साहब राजस्थानी लोकगीत सुनाया सा और कार्यक्रम ने आगे बढ़ावा और अपने काम काज की बात कही वैसे के स्वास्थ्य संबंधी जानकारी कही वैसे के या जानकारी लेना है। हाँ तो देखो अंतरराष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस आज मनाया जावे। अब यो दिवस कई वे यानी के बारे में क्यों जानकारी दे रहा या जानकारी लेना है तो देखो गौरव समानता और समावेश को आह्वान जो करवा वास्ते जो यो दिन माफी मनाई रहा। हर साल 13 जून ने दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस मनाया जावे और संयुक्त राष्ट्र की ओर से घोषित यो जो धन है अणमें लोगों ने कई कमरा का अधिकार बतावनो है। गरिमा जीवन और वणिक जागरूकता फैलावनी है वैश्विक मंच पे जो है अणिक बारे में जानकारी देनी है सा।
3: बिल्कुल सा। और एल्बिनिज्म एक दुर्लभ और गैर संक्रामक और अनुवांशिक स्थिति है जो अपने शरीर में मेलेनिन नामक पिगमेंटेन की कमी वे जो त्वचा बाल आखारो रंग ने प्रदान करे है। और मेलेनिन की कमी के कारण कही वे कि ऐसा व्यक्ति की त्वचा बाल आमतौर पर बहुत ही हल्का या पचे सफेद रंग रहे और मेलेनिन की अनुपस्थिति में आकारो जो विकास है वो भी प्रभावित हुए जने कारण कही है कि व्यक्ति की जो दृष्टि संबंधी गंभीर समस्या है जैसे धुंधलो दिखनो यो प्रकाश प्रति अत्यधिक संवेदनशील रो सामनो करनो पड़ सके। आणि दिवस रा महत्व और इतिहास री भी बात करा तो दुनिया रा कई हिस्सा में एल्बिनिज्म ग्रस्त जे लोग है वणारी अज्ञानता और अंधविश्वास रे कारण भारी भेदभाव बहिष्कार और अटतकी हिंसा रो सामनो भी करनो पड़ सके सा।
2: देखो साहब मानवाधिकार उल्लंघन ने रोकता दिखाई जो है वैश्विक समुदाय है वरना शिक्षित करवा को उद्देश्य है सा। संयुक्त राष्ट्र महासभा की तरफ को एक 18 दिसंबर 2014 में एक ऐतिहासिक प्रस्ताव लीधो लोग है जन के महीने के एक हर साल 13 जून के दिन जो है अणि दिवस ने मनाओ को निर्णय लीधो है और पहली बार यो दिवस जो है 2015 साल में मनाया जाओ लगे साहब।
3: और 2026 री थीम री बात करा तो अन्य थीम है अपनी त्वचा पे गर्व सभी त्वचा रो रंगा रो जश्न या रखी गई है। और थीम रंग आधारित भेदभाव रे खिलाफ एक कड़ो संदेश है या आपने याद दिलावे कि कस्य व्यक्ति रो रंग वनी पहचान केवल एक हिस्सो नहीं है वनी योग्यता और गरिमा रो पैमानो यो अणा दिन रूढ़िया रो चुनौती देवारो है जो समाज में अलगाव पैदा करे और विशेष रूप बच्चा रा मानसिक स्वास्थ्य पे बुरो असर डाले है सा।
2: और देखो सा एल्बिनिज्म ग्रसित जो व्यक्ति है वण के वास्ते घनी सारी चुनौतियां वही सके तो वण में कई कई वे देखो एक तो स्वास्थ्य जोखिम दूसरा है सामाजिक कलंक और तीसरा है शिक्षा और रोजगार में बाधा उत्पन्न करनो है।
3: और लार लार देखो इनमें जागरूकता फैलानो भी है एल्बिनिज्म जुड़ा मिथक जैसे कि जादुई वे वे आपने तोड़ी ने समाज में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करनो लार लार समावेशी वातावरण बनानो शिक्षा रे संस्थान और कार्यस्थल पे ऐसा लोग रे अनुकूल वातावरण जैसे बड़े फॉन्ट वाली किताबा या पचे उचित रोशनी सुनिश्चित करनो और वनी वकालत करनो।

0: ऐसा।
1: देखो, समानता को जो समर्थन करो बहुत जरूरी है। ऐसा आप ही देखा कि समाज में जो है, जो समझना चाहे अपन है कि एल्बिनिज्म कोई बाधा नहीं है इसके। देखो वर्ण में कही कि उचित अवसर और स्वास्थ्य सुविधा जो है दी जाए, और समाज में कहीं भी तरह को जो अन्य व्यक्ति है वर्ण में सफलता प्रभावशील जीवन जो है वर्ण की सुविधा वेणी चाहे ऐसा।
0: तो देखो केवारो, मतलब यो है कि अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस केवल एक औपचारिक आयोजन नहीं है, बल्कि यो मानवाधिकार की रक्षा रो एक संकल्प है। यो दिन आपने सिखावे कि विविधता में मानवरी सुंदरता निहित है। आपनो जो लक्ष्य है असा समाज ने वणानो, जटे हर व्यक्ति चाहे वर्णी त्वचा रो रंग कसो भी वे, बिना किसी डर या भेदभाव रे अपनी क्षमता रे लारे गरिमापूर्ण जीवन जी सके सा।
1: तो ममता भाई से यह तो भी जानकारी कार्यक्रम में आगे बढ़ावा। सुनाए को राजस्थानी गीत।
0: हाँ सा।

0: तो ममता भाई साहब, राजस्थानी लोकगीत सुनियो सा, और आज अपना कार्यक्रम रा महीना आप घनी हारी वाता की दी, बकरी पालन संबंधी जानकारी दी दी, मौसम की जानकारी दी दी, राष्ट्रीय पशुधन मिशन के बारे में बतायो है, किसान कॉल सेंटर उपयोगिता के बारे में बात की दी, और अंतर्राष्ट्रीय अल्बिनिज्म जो जागरूकता दिवस है वो मनाया जा रहे हो तो इनकी जानकारी दी दी है। जानकारी देवार वास्ते और भी है, पर घड़ी हामू नाड़ा तो वह कार्यक्रम जावारी टेम वेरी है। तो चाला सा जय जवान
1: जय किसान।

हमारे ग्रामीण परिवार अभी सुन रहे थे कार्यक्रम खेती और घर। ये आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। रात्रि के 8 बजे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

सौदागर फिल्म के इस गाने के बाद फर्स्ट लव लेटर। आइए इस फिल्म का गीत हम सुनते हैं लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज़ में। संगीत निर्देशन बप्पी लहरी का है।

लता मंगेशकर सुरेश वाडेकर के आवाज़ में प्रेम रोग फिल्म का गीत अभी आपने सुना। आइए अब बेटा फिल्म से हम सुनते हैं विपिन सचदेवा और अनुराधा पौडवाल को।

अनुराधा पौडवाल और विपिन सचदेवा की आवाज़ में सुने इस गीत के बाद प्रेम प्रतिज्ञा इस फिल्म का गीत आपको सुनवाते हैं, जिसे बप्पी लहरी और आशा भोसले ने गाया है।

0: प्रेम प्रतिज्ञा फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी उदयपुर से बोल रहे हैं। रात के 8:45 होने को हैं। आइए आकाशवाणी दिल्ली से अब हम सुनते हैं समाचार संध्या और रात 9 न्यूज़ एट 9।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 की यात्रा के पहले चरण में आज रात फ्रांस के नीस पहुंच रहे हैं। वे कल राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वार्ता करेंगे और भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से शुभारंभ करेंगे। असम के जोरहाट में AN-32 विमान दुर्घटना में वायुसेना के 5 जवान शहीद। 5 का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन संपन्न। सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को अगला थल

0: सेना प्रमुख नियुक्त किया गया और हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में बारिश से बाधित पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान ने भारत को 195 रन का लक्ष्य दिया है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाक गणराज्य की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। इस यात्रा को यूरोप और भारत के संबंधों के लिए निर्णायक माना जा रहा है। फ्रांस पश्चिमी यूरोप में भारत का सबसे पुराना और भरोसेमंद रणनीतिक मित्र देश रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: भारत की रणनीतिक सोच में फ्रांस का एक खास स्थान है। इस साल की शुरुआत में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों ने अपने संबंधों को विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया, जो वैश्विक समाधान के लिए उनकी साझा आकांक्षा को दर्शाता है। कल प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप्स के साथ साथ वैश्विक निवेशक, सीईओ और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: अमरीकी राष्ट्रपति के कार्यालय ने कहा है कि G7 बैठक के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दुनिया के अन्य नेताओं से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच आर्थिक विकास, आपूर्ति श्रृंखला, निवेश भागीदारी सहित सुरक्षा के अन्य मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। प्रधानमंत्री मोदी की स्लोवाकिया की पहली यात्रा के लिए ब्रातिस्लावा में भारतीय समुदाय में विशेष उत्साह देखा जा रहा है। एक रिपोर्ट।
2: स्लोवाकिया का भारतीय समुदाय प्रधानमंत्री के भव्य स्वागत के लिए विशेष तैयारी कर रहा है। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव के अनुसार भारतीय समुदाय में उत्साह देखा जा सकता है। राजधानी ब्रातिस्लावा में भारत और स्लोवाकिया के झंडे लगाए जा रहे हैं। पिछले 5 वर्ष में दोनों देशों के बीच यात्रा और आपसी आदान प्रदान बढ़ने से उत्साह अधिक है। मध्य यूरोप में ब्रातिस्लावा की रणनीतिक स्थिति से भी भारत के साथ पर्यटन संबंधों को मजबूत करने में मदद मिलेगी। स्मिति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशेष शुक्ला।
0: असम के जोरहाट में आज सुबह AN-32 विमान दुर्घटना में 5 जवानों की मौत हो गई। इनमें स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सार्जेंट जितेंद्र शर्मा, अग्निवीर वायु खेमाराम कुमावत और दानिश आलम शामिल हैं। AN-32 विमान आज सुबह जोरहाट में अपनी नियमित उड़ान पर था। लैंडिंग के दौरान विमान एयरबेस परिसर में दुर्घटनाग्रस्त हुआ और उसमें आग लग गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि जवानों के साहस और राष्ट्र के प्रति उनकी सेवा को सदैव गर्व और कृतज्ञता से याद किया जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ नए थल सेना प्रमुख होंगे। वे फिलहाल थल सेना उपप्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सेठ 30 जून को वर्तमान सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के अवकाश ग्रहण करने के बाद कार्यभार संभालेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए एफकैट 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें fcat.edcil.co.in पर।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े। कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। मध्य प्रदेश के इंदौर में 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन संपन्न हो गया। सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सम्मेलन में 4 नई संस्थागत पहलों की घोषणा की गई।
2: आज की परिस्थितियों में ब्रिक्स देशों की कृषि में भूमिका और उसमें भी छोटे किसान, महिलाएं और युवाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसके सभी पहलुओं पर विचार किया। अलग अलग देशों ने अपनी बेस्ट प्रैक्टिस को भी सभी सदस्य देशों के साथ साझा किया है और उस व्यापक विचार विमर्श से हमारे

0: लघु और सीमांत किसानों को और मजबूत करने में मदद मिलेगी, उनकी आय बढ़ाने में और आजीविका बेहतर करने में भी निश्चित तौर पर आज की चर्चा बहुत सहयोगी होगी।
1: गृहमंत्री अमित शाह ने सीमावर्ती जिलों में जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का अध्ययन करने का निर्देश दिया है। श्री शाह ने एक बैठक के दौरान स्थिति के आकलन के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों, महानगरों और औद्योगिक शहरों का दौरा करने का भी निर्देश दिया। केंद्र सरकार ने अवैध अप्रवासन और अन्य असामान्य कारणों से हुए जनसांख्यिकीय परिवर्तनों के अध्ययन और इस समस्या से निपटने के उपाय सुझाने के लिए पिछले महीने एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 12 वर्षों में देश में शिक्षा, कौशल विकास, नवाचार और स्टार्टअप की नई संस्कृति को बढ़ावा दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की नीतियों से भारत आज विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उच्च शिक्षा नेटवर्क बन गया है और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एआई प्रतिभा केंद्र भी बन रहा है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप वाला देश है, जहां 2 लाख से भी ज्यादा स्टार्टअप्स हैं। नागपुर में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सरकार रोजगार सृजन के साथ बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर दे रही है। श्री गडकरी ने नागपुर में बताया कि उनका मंत्रालय देश भर में वाहन चालक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित कर रहा है। गुजरात के पोरबंदर में श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष के दौरान देश का केंद्रीय बजट दोगुना हुआ है और लोगों पर कर का बोझ काफी कम हुआ है। डॉ मांडविया ने कहा कि पोरबंदर लोकसभा क्षेत्र के लिए एक विशिष्ट रोजगार डैशबोर्ड विकसित किया गया है। अब तक 12,000 युवा इस पोर्टल पर पंजीकरण करा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्ष में देश में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। आकाशवाणी समाचार प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। आज बात देश की सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करने की दिशा में किए गए प्रयासों की।
2: पिछले 12 वर्षों में भारत की सांस्कृतिक यात्रा ने नई ऊंचाइयां हासिल की हैं। देश की संस्कृति अपनी परंपराओं से जुड़ी हुई है और साथ ही पूरी दुनिया के लिए खुली भी है। सरकार ने देश और विदेश में कई ऐसे कदम उठाए हैं जिससे लोगों में सांस्कृतिक विरासत के प्रति गर्व की भावना और अधिक मजबूत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल लोक परियोजना, माँ कामाख्या मंदिर का पुनर्विकास, जूना सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण और अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना जैसे ऐतिहासिक कार्य किए गए हैं। आध्यात्मिक पर्यटन सर्किट और आधुनिक तीर्थयात्री सुविधाओं के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान को फिर से सशक्त बनाया जा रहा है। इस बदलाव में संग्रहालय अनुदान योजना और सांस्कृतिक कार्यक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इन योजनाओं ने भारत की सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित रखने के साथ साथ सांस्कृतिक रचनात्मकता और स्थानीय स्तर पर लोगों की भागीदारी को भी बढ़ावा दिया है। संग्रहालय अनुदान योजना के तहत देश भर में 21 नए संग्रहालय स्थापित किए गए हैं और 23 पुराने संग्रहालयों का आधुनिकीकरण किया गया है। यह योजना नागालैंड जैसे राज्यों में भी काफी लाभकारी साबित हुई है। सांस्कृतिक कार्यक्रम और उत्पादन अनुदान योजना भी देश भर में सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनकर उभरी है। मणिपुर की सबसे पुरानी रंगमंच संस्था मणिपुर ड्रामेटिक यूनियन को हाल ही में वित्तीय सहायता मिली है, जिसके बाद वह नए नाट्य प्रस्तुतियों की तैयारी कर रही है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में संस्था के सचिव सुरोख हबैम शरद चंद ने क्षेत्र कला और संस्कृति को मजबूत समर्थन देने के लिए सरकार का आभार व्यक्त किया है।
3: इस संगठन की स्थापना के बाद से हमें संस्कृति मंत्रालय से विभिन्न प्रकार के अनुदान प्राप्त हुए हैं। सांस्कृतिक अनुदान के अंतर्गत हमें इस वर्ष 1,25,000 रुपए प्राप्त हुए हैं। हमें स्वीकृत राशि का 75% प्राप्त हुआ है। मैं भारत सरकार और संस्कृति मंत्रालय का आभार व्यक्त करता हूँ।
2: भारत ने अपनी संस्कृति को संरक्षित और दुनिया तक पहुँचाने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। प्राचीन मंदिरों का जीर्णोद्धार किया है, तीर्थ स्थलों का विकास हुआ है और पुरानी परंपराओं को नया जीवन मिला है। साथ ही बेहतर सड़कें, स्वच्छ सुविधाएं और आधुनिक सेवाएं लोगों के लिए इन स्थानों तक पहुंचना अधिक आसान बना रही है। आज पूरी दुनिया भारत की संस्कृति, परंपराओं और जीवन शैली में रुचि दिखा रही है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि

0: ईरान, अमरीका और इसराइल के संघर्ष के कारण दुनिया भर में ईंधन की कीमतों में इजाफा हुआ है। पंजाब के लुधियाना में उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि देशवासियों पर कीमतों में वृद्धि का अधिक प्रभाव न पड़े। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा है कि देश में एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव लागू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। पुदुचेरी में उन्होंने कहा कि एक साथ चुनाव करने से खर्च कम होगा और संसाधनों का अधिक कुशल उपयोग हो सकेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने परीक्षा अधिकारियों के लिए आई गॉट कर्मयोगी भारत प्लेटफॉर्म पर एक कार्यक्रम शुरू किया है। इसका उद्देश्य एनटीए परीक्षाओं के लिए पर्यवेक्षण और निगरानी प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करना और ऑफलाइन पेन और पेपर पर आधारित परीक्षाओं का सुचारू, सुरक्षित और मानकीकृत संचालन सुनिश्चित करना है। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए पहले जत्थे का प्रस्थान समारोह कल नई दिल्ली में आयोजित किया गया। यह जत्था 15 जून को नई दिल्ली से रवाना होगा और नाथुला मार्ग से यात्रा करेगा। मणिपुर पुलिस ने कहा है कि कुछ लोग और समूह अपुष्ट तथा भड़काऊ सामग्री सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रसारित कर रहे हैं। पुलिस ने लोगों को सलाह दी है कि वो अफवाहों या अपुष्ट सामग्री पर भरोसा न करें और इन्हें साझा न करें तथा सोशल मीडिया पर प्रसारित सामग्री के प्रति सावधानी बरतें। प्रशांत महासागर में अलनीनो की स्थिति बनी हुई है और दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान इसके और प्रबल होने की आशंका है। मौसम विभाग ने कहा है कि जून 2026 तक मध्य उष्णकटिबंधीय प्रशांत क्षेत्र में समुद्र तल का तापमान अलनीलों के लिए जरूरी सीमा से अधिक हो गया है। दक्षिण पश्चिम मानसून कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में आगे बढ़ गया है। इसके अगले तीन चार दिनों में ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में पहुंचने की संभावना है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरल, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और पूर्वोत्तर में अत्यधिक बारिश का अनुमान है। कल तक पूर्वी राजस्थान में आंधी तूफान की भी संभावना है। धर्मशाला में पहले एक दिवसीय क्रिकेट मुकाबले में अफगानिस्तान ने भारत को 195 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने सातवें ओवर में एक विकेट पर 49 रन बना लिए हैं। रहमानुल्लाह गुरबाज ने 102 रन की पारी खेली। हर्ष दुबे और गुरनूर बरार ने तीन तीन विकेट लिए। बारिश की वजह से मुकाबले को 25-25 ओवर का कर दिया गया है। मैनचेस्टर में महिला टी20 विश्व कप में स्कॉटलैंड ने आयरलैंड को 40 रन से हराया। कल शाम 7 बजे भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा के पहले चरण में आज रात फ्रांस के नीस पहुंचे। वे कल राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वार्ता करेंगे और भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से शुभारंभ करेंगे। असम के जोरहाट में वायुसेना की AN-32 विमान दुर्घटना में वायुसेना के 5 जवान शहीद। 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन हुआ संपन्न। सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को अगला थल सेना प्रमुख नियुक्त किया गया। और हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में बारिश से बाधित पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान ने भारत को दिया 195 रन का लक्ष्य। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to reach Nice tonight on the first leg of two-nation visit to France and Slovakia to hold bilateral talks with French President Emmanuel Macron and jointly inaugurate Bharat Innovates tomorrow. 5 Indian Air Force personnel killed in AN-32 aircraft crash at Jorhat in Assam. 5-day BRICS Agriculture Conference ends with unanimous adoption of Indore Declaration, focusing on food security and smart technology in farming. Lieutenant General Dheeraj Seth appointed as country's next army chief.

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

सुगम संगीत में हम आज आपको सुनवा रहे हैं आशा भोसले की गाई हुई चंद गजलें। पेश है कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति।

0: आशा भोसले की गाई हुई इस गजल के साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी से बोल उदयपुर से बोल रहे हैं। 9:30 होने को हैं। आइए अखिल भारतीय संस्कृति पत्रिका संस्कृति भारती सुनते हैं आकाशवाणी दिल्ली से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी की अखिल भारतीय सांस्कृतिक पत्रिका संस्कृति भारती के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं नवोदिता। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस, एक तारीख जो हमें हर साल याद दिलाती है कि हम प्रकृति से अलग नहीं हैं, उसके अंश हैं। और जब हम पर्यावरण की बात करते हैं तो जल की बात करना जरूरी हो जाता है। पर्यावरणविद अनुपम मिश्र का एक विचार बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें वो कहते हैं कि जिस समाज ने अपने जल को सहेजना छोड़ दिया, उसने मानो अपनी स्मृति भी खो दी। उनके ही दर्ज किए हुए कुछ विचार बिंदुओं को आज के संपादकीय में अपना स्वर दे रहे हैं अभिनय श्रीवास्तव। जल की जड़ें संस्कृति की धाराएं।
2: मौसम विशेषज्ञ बताते हैं कि देश को हर साल मानसून का पानी निश्चित मात्रा में नहीं मिलता, उसमें उतार चढ़ाव आता रहता है। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि प्रकृति ISI मार्क का तराजू लेकर पानी बांटने निकलने वाली पनिहारिन नहीं है। 3री-4थी कक्षा से हम सब जल चक्र पढ़ते हैं। अरब सागर से कैसे भाप बनती है, कितनी बड़ी मात्रा में वो नौतपा के दिनों में कैसे आती है, हमारा साधारण किसान भी जानता है। ऐसी बड़ी दिव्य व्यवस्था में प्रकृति को मानक ढंग से पानी गिराने की परवाह नहीं रहती, फिर भी आप पाएंगे कि एक रूपता बनी रहती है। पानी की राजनीति ने प्रकृति के इस स्वभाव को भूलने की अक्षम्य गलती की है, इसलिए हम प्रकृति से क्षमा नहीं पा सके हैं। बड़ी गलती हमसे ये हो रही है कि हमने पानी रोकने के समय सिद्ध और स्वयं सिद्ध तरीकों को पुराना या परंपरागत करार देकर छोड़ दिया है। यदि कुछ 1,00,000 साल से प्रकृति ने पानी गिराने का तरीका नहीं बदला है तो हम भी उसके सेवन के तरीके नहीं बदल सकते। तालाब बावड़ी जैसे पुराने तरीकों की विकास की नई योजनाओं में बहुत उपेक्षा हुई है। न सिर्फ शहरों में बल्कि गांवों में भी तालाबों को समतल कर मकान, दुकान, मैदान, बस स्टैंड बना लिए गए हैं।

0: जो पानी यहाँ रुककर साल भर ठहरता था उस इलाके के भूजल को ऊपर उठाता था, उसे हमने नष्ट कर दिया है। उसके बदले हमने आधुनिक ट्यूबवेल, नलकूप, हैंडपंप लगाकर पानी निकाला है, डालना बंद किया और निकालने की गति राक्षसी कर दी। लेकिन अब प्रकृति हमें हर साल चिट्ठी भेजकर याद दिला रही है कि हम गलती कर रहे हैं, इसकी सजा भुगतनी होगी। हमें भूलना नहीं चाहिए कि अकाल, सूखा, पानी की किल्लत, ये सब कभी अकेले नहीं आते। अच्छे विचारों और अच्छे कामों का अभाव पहले आ जाता है। हमारी धरती सचमुच मिट्टी की एक बड़ी गुल्लक है। इसमें 100 पैसा डालेंगे तो 100 पैसा निकाल सकेंगे, लेकिन डालना बंद कर देंगे और केवल निकालते रहेंगे तो प्रकृति चिट्ठी भेजना भी बंद करेगी और सीधे सीधे सजा देगी। आज ये सजा सब जगह कम या ज्यादा मात्रा में मिलने लगी है।
1: विश्व पर्यावरण दिवस पर संस्कृति भारती का ये संपादकीय स्मरण है उस चेतना का जो हमें सिखाती है कि जल सिर्फ जीवन देता नहीं, जल ही जीवन है। प्रकृति की बात हुई, प्रकृति और मनुष्य के बीच के संतुलन का नाम ही योग है। एक ऐसी विद्या जो महज देह को नहीं चेतना को साधती है, और आज यही योग विश्व के खेल मंचों पर अपना परचम फहरा रहा है। ओलंपिक में योगासन को शामिल करने की दिशा में गंभीर प्रयास चल रहे हैं। इस रोचक यात्रा के बारे में बता रहे हैं योगासन संघ के महासचिव डॉक्टर जयदीप आर्य, जिनसे बातचीत की है आनंद श्रीवास्तव ने। परंपरा से प्रतिस्पर्धा तक,
2: हजारों वर्ष पहले भारत की धरती पर जन्मी एक साधना जिसने मन को स्थिरता दी, शरीर को शक्ति दी और आत्मा को संतुलन। ऋषियों के आश्रमों से शुरू हुई ये यात्रा आज विश्व के खेल मंचों तक पहुंच चुकी है। एक समय था जब योग केवल स्वास्थ्य और आध्यात्मिक उन्नति का माध्यम माना जाता था, लेकिन आज योगासन प्रतिस्पर्धा का भी विषय है। खिलाड़ी कठिन आसनों में अपनी क्षमता, संतुलन, लचीलापन और मानसिक एकाग्रता का प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ हैं योगासन भारत के महासचिव और विश्व योगासन संघ के महासचिव डॉक्टर जयदीप आर्य। कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आदनी भाई आनंद जी, और आकाशवाणी का भी बहुत आभार।
2: 5000 वर्ष पुरानी जो भारत की परंपरा है योग, जो ऋषियों महर्षियों के आश्रमों से शुरू हुई, वहां से लेकर यहाँ तक योगासन स्पोर्ट की जो यात्रा है, कैसे देखते हैं आप?
3: योग तो अनंत है और भारत की अध्यात्म और दर्शन का मूल तत्व है। बहुत विराट है, बहुत विशाल है और असीमित है, इसको बांधा नहीं जा सकता। परंतु योग के माध्यम से जो यात्रा समाधि तक जाती है, महर्षि पतंजलि कहते हैं कि अष्टांग योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 अंगों से होते हुए व्यक्ति मोक्ष तक पहुंचता है, उस परम तत्व तक पहुंचता है। उस 8 अंगों की यात्रा में तीसरा जो पायदान है वो उसका नाम है योग, आसन। और इन आसनों को हमने प्रतिस्पर्धा में लाने की जब बात की तो हमने देखा कि प्रयास तो कई वर्षों से हो रहे थे, अलग अलग क्षेत्रों से हो रहे थे, परंतु उनकी जो दिशा थी वो वैज्ञानिक नहीं, वो स्पोर्ट्स परक नहीं थी, इस कारण वो स्पोर्ट्स का हिस्सा नहीं बन पा रहे थे। और ये प्रयास देश में, दुनिया में कई स्थानों पर धीरे धीरे हो रहे थे और उसमें अवैज्ञानिकता भी बहुत अधिक थी। तो हमने उसको परम श्रद्धे स्वामी जी महाराज के पावन निर्देशन में, स्वामी रामदेव जी महाराज के निर्देशन में पूरा इसका डॉक्यूमेंटेशन किया और क्या क्या होना चाहिए, इसमें क्या वैधानिकता है, क्या इसकी सावधानियां हैं और इसको किस प्रकार हम विज्ञान परक बनाते हुए खेल विज्ञान के साथ जोड़ते हुए आगे कैसे बढ़ सकते हैं। इस पर बहुत काम करने के बाद हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि इतनों की, और वो भी निर्धारित श्रृंखला, वो निर्धारित की जाए, उसको कैटेगराइज किया जाए डिफिकल्टी के लेवल पर, ए मायने सामान्य, बी मायने उससे और कठिन, सी मायने और कठिन, डी मायने उससे भी कठिन और ई मायने परम कठिन आसन, ऐसे हमने कैटेगरी तय की। और जो अपनी क्षमता के अनुसार कर सके उनकी आयु भी तय की, उनकी क्षमताओं का चयन वो स्वयं करें, उन आसनों में से करें, बेस्ट ऑफ द बेस्ट करें। और उसमें महर्षि पतंजलि का जो सूत्र है, क्लासिकल जो सूत्र है, उसको मॉडर्न के साथ हमने जोड़ने की कोशिश की, वो था स्थिर सुखम आसनम। आप डूइंग

0: पोस्चर विद ईज इज कॉल्ड आसन। तो हमने इसके ऊपर काम करते हुए इसको पहले वैज्ञानिकता के साथ जोड़ने का प्रयास किया।
1: आकाशवाणी के बहुत सारे श्रोता ये समझना चाहेंगे कि जो योग है और योगासन खेल, इसमें मूलभूत अंतर क्या है?
0: योगासन योग की शुरुआत है और योग योगासन की परम सीमा है, बस यही अंतर है। तो योग शरीर को स्वस्थ रखने की प्रक्रिया है और योगासन अपनी क्षमताओं को विकसित करते हुए सीमा से पार जाने की एक प्रकाष्ठा है। योग आपको मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य देता है और योगासन आपको उस दिशा में ले जाने की प्रथम सीढ़ी के रूप में काम करता है। योगासन बीजारोपण है और योग परम समाधि का तत्व है।
1: जब आपने पहली बार योगासन स्पोर्ट को लेकर चर्चा की या इसके महासंघ की रूपरेखा बनाने का प्रयास किया और जब इसको खेलो इंडिया या क्षेत्रीय स्तर पर जिला स्तर पर शुरू करने की कोशिश की, किस तरह की चुनौतियां आई और उस समय क्या सोच थी, क्या लक्ष्य था?
0: ये जो मूल रूप से विषय आया, ये माननीय प्रधानमंत्री जी का विषय था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने योग ऋषि स्वामी रामदेव जी से चर्चा की कि इसको बच्चों तक योग को कैसे पहुंचाया जाए। तो उस वार्ता में ये निश्चित हुआ कि योगासन को खेल का रूप दिया जाए। और आज चुनौतियां बहुत अधिक ये थी कि बच्चे आज स्पोर्ट्स के मैदान में नहीं पहुंच पा रहे थे और जो खेल के मैदान थे वो संकुचित होते जा रहे हैं। वहां पर बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं बिल्डिंग्स अब वो स्थान ले रही हैं। ऐसे में योगासन एक ऐसी विधा है, ऐसा खेल है जो आप घर बैठे 2x6 फीट का एक स्थान तय करें, ना कॉस्ट इफेक्टिव कोई खेल हो सकता है भारतीय परंपरा के अंदर, तो मुझे लगता है वो स्वदेशी खेल योगासन ही हो सकता है।
1: 2023 के गुजरात में जो नेशनल गेम्स हुए, काफी समय के बाद हुए थे, वहां योगासन नेशनल गेम्स में पहली बार शामिल हुआ। आपसे ये समझना चाहेंगे कि योगासन स्पोर्ट को प्रमोट करने वाला भारत में जो, उसकी थोड़ी भूमिका बताएं कि वो किस तरीके से ग्रास रूट लेवल पे स्काउटिंग करता है बच्चों को और कोचेस किस तरीके से उनको आइडेंटिफाई करके उनको नर्चर करते हैं।
0: योगासन को आगे बढ़ाने में मैं समझता हूँ ग्राउंड लेवल पर हमें सबसे बड़ी कठिनाई टेक्निकल हैंड्स नहीं थे। योग सिखाने वाले लोग थे, सामान्य पोस्चर करने वाले लोग थे, परंतु उस पोस्चर में उनको 1 मिनट खड़ा रहना बड़ा कठिन है साहब। स्पोर्ट्स के दृष्टिकोण से किया जाता है तो उसकी मास्टरी का लेवल अलग होता है। चेहरे पर मुस्कुराहट होनी चाहिए, आपका स्थायित्व जिसे कहते हैं स्टिलनेस, वो बहुत महत्वपूर्ण है, स्थिरता। तो 1.5 मिनट करने वाला बच्चा ही 1 मिनट परफेक्शन से कर पाता है, क्योंकि उसको माउंटिंग और डिसमाउंटिंग दोनों चीजें उसमें काउंट होती हैं। और ये जब शिकायतें हमारे पास आने लगी कि बच्चों को इंजरी बहुत हो रही है, तो हमारा फोकस उस पर रहा कि पहले अच्छे कोचेस तैयार किए जाएं, और उसमें हमारे बहुत से जिज्ञासु लोगों ने आगे बढ़कर हमसे ट्रेनिंग लेने का क्रम शुरू किया और वहां से शुरुआत हुई। आज 630 जिलों में ये हमारी खेल संघ है, उनका ट्रेनिंग का कार्यक्रम हुआ है। लगभग यदि मैं यूं कहूं कि 2000 से अधिक हमारे पास कोचेज हैं, ट्रेंड कोचेज हैं, लगभग 2000 से अधिक हमारे पास ट्रेंड रेफरीज हैं।
1: इससे पहले कि हम चर्चा में आगे बढ़े, आर्या जी ने दो चीजें बोली, माउंटिंग और डिसमाउंटिंग। हम अपने श्रोताओं के लिए बता दें कि किसी भी आसन को शुरू करने से पहले नमस्कार की मुद्रा बनाना वो माउंटिंग है और आसन समाप्त करने के बाद वापस से नमस्कार की मुद्रा बनाना ये डिसमाउंटिंग है। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पिछले साल आपने एशियन योगासन चैंपियनशिप का आयोजन नई दिल्ली में किया। नेशनल गेम्स के बाद एक बहुत बड़ी ऊंचाई पर पहली बार एशियन योगासन चैंपियनशिप का आयोजन हुआ। वहां कितने देशों ने हिस्सा लिया और किस तरह का रिस्पांस मिला जब आपने अलग अलग एशियाई देशों को पत्र लिखा कि योगासन की चैंपियनशिप हो रही है और आप अपना दल भेजिए?
0: एशिया में बड़ा जो सेगमेंट है वो मिडल ईस्ट एशिया का है और बड़ी भागीदारी उनके माध्यम से हुई। उसमें 21 देशों की भागीदारी उसमें रही, ईरान से लेकर बहरीन से लेकर ओमान से लेकर जॉर्डन से लेकर, बड़े अच्छे अच्छे देशों ने और बड़ी जिनको कहा जाता है कि, और सबसे बड़ी बात है कि योगासन को लोगों ने धर्म मजहब जाति कास्ट और क्रीड से ऊपर रखकर देखा और उसमें सहभागिता की और पूरी खेल भावना के साथ सहभागिता की।
1: गुजरात के अहमदाबाद में पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप का आयोजन किया, 78 देशों के 700 से ज्यादा एथलीट उसमें शामिल हुए। इस आयोजन के पीछे की सोच क्या थी, कब आपको लगा कि अब वर्ल्ड चैंपियनशिप का आयोजन होना चाहिए?
0: 78 कंट्रीज का पार्टिसिपेशन अपने आप में अद्भुत है साहब। तो मैं सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को देना चाहूंगा और उनका योग के प्रति प्रेम को देना चाहता हूं। दूसरा, पूरे विश्व में परम श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी महाराज की जो पहचान है, उसका एक विश्वास था लोगों में कि ये संस्था ऐसी नहीं है कि जहां जाकर हमारे साथ कोई अन्याय होगा, कोई बायसनेस होगी, जहां लेवल अच्छा नहीं होगा, जहां चैंपियनशिप का लेवल अच्छा नहीं होगा, तो एक वो संबल था।
1: कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव की तरफ हम बढ़ रहे हैं, आपसे ये भी समझना चाहेंगे विश्व चैंपियनशिप के बाद अब लोग जानना चाहते हैं कि राष्ट्रमंडल खेल और ओलंपिक्स जैसे खेलों

0: के महाकुंभ में योगासन खेल के पहुंचने की क्या संभावनाएं हैं?
1: राष्ट्रमंडल खेलों में जाने की जो संभावनाएं हैं भारत के स्तर पर अत्यंत अच्छी है, बहुत अच्छे से हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं और जिम्मेदारी के साथ, क्योंकि इस दृष्टिकोण से मैं ये बात कह रहा हूँ, 78 कंट्रीज में से 25 से अधिक जो देश थे वो पहले से ही कॉमनवेल्थ कंट्रीज थे। और जैसे ये बात हमारे माननीय डॉक्टर मनसुख मांडविया जी को पता चली, उन्होंने कहा कि अरे 25 से अधिक देश तो अभी हैं, हम तो बहुत अच्छे से पिच कर सकते हैं अपनी ओर से। और उन्होंने आश्वस्त किया गुजरात के अपने कार्यक्रम में कि योगासन को आने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स में हम निश्चित रूप से अवसर दिलवाने का प्रयास करेंगे।
0: कार्यक्रम के अंत में आप उन युवाओं को क्या संदेश देंगे जो आकाशवाणी का ये कार्यक्रम सुन रहे हैं, जो योग तो करते हैं लेकिन योगासन खेल को अभी अपना नहीं पाए हैं?
1: मैं उनको यही कहना चाहूंगा कि योग भी करें, योगासन खेल को भी ज्वाइन करें। योगासन खेल आपको संबल भी देगा, आपको नए भविष्य के साथ जोड़ेगा, नई चुनौतियों के साथ लड़ने की ताकत भी देगा और आपको अपॉर्चुनिटीज भी देगा, जॉब्स भी देगा, कैश रिवार्ड भी देगा और एक अच्छा सुनहरा भविष्य भी देगा। यदि योग और योगासन का संबल लेकर आप आगे बढ़ेंगे, भारत का यह सुनहरा खेल, स्वदेशी खेल, ये दोबारा भारत को ना केवल सोने की चिड़िया बनाएगा, सोने का शेर बनाकर आगे लेकर जाएगा और उस दहाड़ को पूरी दुनिया सुनेगी।
0: योग केवल शरीर को मोड़ने की कला नहीं है बल्कि स्वयं को गढ़ने की प्रक्रिया है। आज की चर्चा से यह स्पष्ट है कि योगासन केवल भारत की सांस्कृतिक विरासत नहीं बल्कि एक उभरता हुआ वैश्विक खेल भी है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं से लेकर ओलंपिक्स तक के सपनों तक योगासन की यात्रा लगातार आगे बढ़ रही है। डॉक्टर जयदीप आर्य आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए और श्रोताओं के साथ विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।
2: विश्व योगासन संघ के महासचिव डॉक्टर जयदीप आर्य से आनंद श्रीवास्तव की ये बातचीत बताती है परंपरा से प्रतिस्पर्धा की ये यात्रा भारत की सांस्कृतिक शक्ति का जीवंत प्रमाण है। योग से हम अंततः आनंद और शांति की तरफ ही बढ़ते हैं और ऐसा ही कुछ होता है जब हम संगीत से जुड़ते हैं। 21 जून विश्व संगीत दिवस, यानी वो दिन जो पूरी दुनिया को एक सुर में बांधने का प्रयास करता है। संगीत किसी एक काल का नहीं होता, वो पीढ़ियों के बीच बहती हुई एक नदी है, कभी शांत, कभी उफनती, कभी कलकल करती। और जब ये नदी परंपरा की जड़ों से पोषण लेकर आधुनिकता के विस्तार में फैलती है तो जन्म होता है फ्यूजन का। दिल्ली के इसी सांगीतिक परिदृश्य से उभरा है एक अनोखा बैंड कुल्फी। नाम में जितनी मिठास है संगीत में उतनी ही गहराई। विश्व संगीत दिवस के उपलक्ष्य में हमने की इन कलाकारों से एक संवादी मुलाकात।

0: आज हमारे साथ आकाशवाणी के स्टूडियो में पांच ऐसे युवा चेहरे हैं जिनको देखकर उनके संगीत की गंभीरता का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले ही उन्होंने हमें उससे रूबरू कराया है और आज हम उन्हीं से बातचीत करेंगे। सबसे पहले चलते हैं हम संभव के पास, जो कुल्फी बैंड के लीड वोकलिस्ट हैं। संभव, आपके सभी साथियों का आकाशवाणी में स्वागत है।
1: धन्यवाद।
0: सबसे पहला सवाल तो यही कि ये जो नाम है कुल्फी, इस नाम के पीछे क्या ऐसा आइडिया था जब आपने इसका नाम कुल्फी बैंड रखा?
1: जी, हम बहुत समय तक हमारे बैंड का नाम सोच रहे थे और हम सब किरोड़ीमल कॉलेज के छात्र हैं। वहाँ पे एक संगीत समिति है म्यूजॉक नाम की, हम सब उसी से निकले हैं, कुछ अभी भी है उसमें। और ऐसे डीयू म्यूजिक सर्किट में बहुत सारे फेस्ट होते हैं एंड कॉम्पिटिशन होते हैं, वहाँ पे आईटी कानपुर के फेस्ट होते हैं, हर साल कॉम्पिटिशन होते हैं। हम वहाँ पे बस बैठे थे और नाम सोच रहे थे और वहाँ पे कोई एक दोस्त कोई कुल्फी खा रहा था वहाँ, फिर वो बोला कि यार कुल्फी रख देते हैं नाम। लगा कि ये तो बड़ा स्वीट सा क्यूट सा नाम है। ठीक है।
0: संभव, जब आप म्यूजिक बना रहे होते हैं, कोई गाना चुन रहे होते हैं, तो लिरिक्स आप कैसे उसके चुनते हैं, वो लिरिक्स कौन लिखता है और फिर आप उसको कैसे सेट करेंगे, कैसे आप उसको

0: करते हैं।
1: जैसे हमने कहा कि हम एक फ्यूजन बैंड अगर हमें कहें तो वो गलत नहीं होगा, हम इंडियन क्लासिकल शास्त्रीय संगीत और वेस्टर्न इन्फ्लुएंसेस, ग्लोबल इन्फ्लुएंसेस को मिक्स करके एक साउंड को प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं इस बैंड में। कुछ जैसे हमारा गाना मोरे मंदिर है, वो एक ऑलरेडी ट्रेडिशनल बंदिश है राग मेघ में, जो बड़े गुलाम अली खान साहब जी ने बनाई है, उनकी बंदिश है। हमने उसको रीइंटरप्रेट करा है हमारे एक कंटेम्प्रेरी स्ट्रक्चर में और उसको एक सॉन्ग स्ट्रक्चर में बांधने की कोशिश करी है। वैसे ही गाया था रसिक बलमा, वो हमने खुद बनाया है, हमारे एक दोस्त हेमांग कारगीत ने वो लिखा है, धुन हमने बनाई है, तो वो गाना हमने खुद बनाया है। वो बंदिश स्ट्रक्चर ही फॉलो करता है जो शास्त्रीय संगीत की बंदिश स्ट्रक्चर रहता है। हमें बनाते बनाते लगा कि इसमें एक वेस्टर्न इन्फ्लुएंस अगर मिल जाए उसमें और हम उसका एक वर्स उसमें डालें तो वो अच्छा लग सकता है। और कोई एक सेट पैटर्न नहीं है, कोई एक सेट फॉर्मूला नहीं है, जहाँ पे भी लग रहा है कि इसकी गुंजाइश है और ये सुनने में अच्छा लग सकता है, वो हम वहाँ पे कर करके परख परख के।
0: आपके अपने अनुभव में जितना अनुभव अभी आपको हुआ है, इन जनरल अगर हम ये म्यूजिक सीन की इस पूरे इस परिप्रेक्ष्य की बात करते हैं, अगर हम क्या बेहतर होना चाहिए जिससे आप जैसे लोग इस तरह का संगीत कर रहे हैं, बैंड बनाकर कर रहे हैं, इंडिविजुअली कर रहे हैं, किन चीजों की कमी आपको लगती है जो थोड़ा बेहतर होता तो शायद आप जैसे और लोग आगे आते संगीत और संस्कृति के क्षेत्र से जुड़ते।
2: हमें जितना समझ में आता है, एक जो दिक्कत लाइव म्यूजिक वेन्यूज की कमी आ गई है बहुत ज्यादा, एटलीस्ट दिल्ली में भी।
0: ऐसा क्यों?
2: अब वो ज्यादा फाइनेंशियल एस्पेक्ट है। आई थिंक पैंडेमिक के बाद लाइव म्यूजिक वेन्यूज थोड़े से स्थिर हो गए थे और अब वही चार पांच जगहें हैं जहां पे हम लोग भी ढूंढते हैं चीजें, तो बेसिकली बहुत सॉलिड सैचुरेशन हो गया है। उसके साथ साथ इंडिपेंडेंट म्यूजिक की आउटरीच, उसके फोरम आई डोंट बिलीव इतने एग्जिस्ट करते हैं, या अगर करते हैं वो इतने स्ट्रांग नहीं रहे हैं।
0: शौर्य आप बताइए।
3: तो इंडिया में मैंने ये भी नोटिस किया है कि लोगों की मेंटालिटी होती है कि म्यूजिक इज समथिंग दैट गोज ऑन इन द बैकग्राउंड। आर्टिस्ट को जो रिस्पेक्ट नहीं मिलती फॉर द अमाउंट ऑफ एफर्ट दे हैव पुट इन टू लर्न देयर आर्ट एंड टू डू व्हाट दे आर डूइंग इज ऑफन वेरी डिफिकल्ट।
0: कुछ एग्जांपल दे सकते हैं आप जो बात आप कह रहे हैं कि आपको लगता है कि उस तरह की रिस्पेक्ट नहीं मिलती है बैकग्राउंड म्यूजिक जैसा लोगों को लगता है?
3: ओके, सो आई विल टेक एन एग्जांपल ऑफ जैसे लाइव म्यूजिक का ही सेट अबाउट लाइव म्यूजिक वेन्यूज। तो लोगों को बाहर जाके खाना खाना होता है, उनको लाइव म्यूजिक सुनना होता है, पर लोगों को उसके लिए पैसे नहीं देने होते। जैसे 500 रुपए एक फैमिली के कॉन्ट्रीब्यूशन से एक आर्टिस्ट का बहुत बिग इम्पैक्ट पड़ सकता है व्हेन इट्स डन इन लार्ज नंबर्स। तो ये मेंटालिटी इज समथिंग दैट आई हैव सीन हैपन इन इंडिया।
2: अलोंग विद ऑल ऑफ दैट, ओरिजिनल म्यूजिक को ज्यादा आई डोंट थिंक लोग सुनना चाहते हैं। अब हमें भी जैसा शौर्य बोल रहा है, लोग खाना खाने आते हैं और उनको म्यूजिक फ्री में सुनना है। हमें बहुत बार ऐसा करना पड़ा है कि हमें अपना सेट इस ये लेकर बनाना पड़ा है कि ऐसा ना हो कि लोग उठ के फिर खाना खाने चले जाएं, क्योंकि हम चाहते हैं लोग बैठे रहें और हमें सुने। एक डेढ़ घंटा सिर्फ खड़े होकर एक बैंड को सुनना अब बहुत छोटे आर्टिस्ट के साथ नहीं होता है। ये आपको एक लेवल पे या आपको सर्किट में कम से कम 10-10, 15-15 साल रहना पड़ता है ताकि लोग आपको डेढ़ घंटा बस खड़े होकर सुने उनका ओरिजिनल म्यूजिक, पर कवर्स उन्हें भी करने पड़ते हैं।
0: तो अभी आप लोगों ने क्या तरीका निकाला आदित्य, जैसे आप जो बात कर रहे हैं जब कवर्स का जिक्र आपने किया, तो आपको लगता है कि कवर्स ज्यादा पॉपुलर हैं?
2: जी हैं,
0: रादर देन योर ओन कंपोजिशंस।
2: बिल्कुल हैं, पर हम थैंकफुली उस तरीके में इस चीज को टैकल करते हैं कि हम कवर्स अपने तरीके में अरेंज कर लेते हैं।
0: अच्छा,
2: हम बोलते भी हैं वीव कुल्फी फाइल्ड इट।
0: जैसे भी आपने एग्जांपल दिया संभव, जो बंदिश है बड़े गुलाम अली खान साहब की, उसको आपने थोड़ा रीअरेंज किया, उसे आपने एक नया टच दिया।
1: उसी आइडिया को लेके मेन स्ट्रीम गानों को एक अलग नजरिए से देख के उनको प्रेजेंट करना इज व्हाट वी एज अ बैंड ऑल्सो डू।

कुल्फी जैसे बैंड हमें याद दिलाते हैं कि परंपरा और आधुनिकता के बीच कोई दीवार नहीं है, बल्कि एक सेतु है जिसे संगीत बनाता है। विश्व संगीत दिवस पर इन कलाकारों को संस्कृति भारती की शुभकामनाएं।

0: बीती 8 जून को ऑल इंडिया रेडियो या आकाशवाणी ने 90 वर्षों का सफर पूरा किया। वो स्वर जो 90 वर्षों से इस देश की धड़कन बना हुआ है और उसके साथ साहित्यिक सांस्कृतिक संस्था कस्तूरी, जिसने बीते 5 वर्षों में एक गंभीर सृजनात्मकता और सांस्कृतिक ऊर्जा का परिचय दिया है। इन दोनों के संयुक्त प्रयास से बीती 6 जून को नई दिल्ली में साहित्य अकादमी के सभागार में राम कथा में नृत्य का स्पंदन विषय पर मनाए गए कला पर्व ने हमारी सांस्कृतिक चेतना को और समृद्ध किया। भारतीय नृत्य परंपरा में राम कथा का स्थान अत्यंत विशिष्ट है। भरतनाट्यम हो या कथक, ओडिशी हो या मोहिनीअट्टम, मणिपुरी हो या कुचिपुड़ी, हर शैली में राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान जीवंत हो उठते हैं। इसी उत्सव से कुछ स्वरों, कुछ भावों, कुछ शब्दों के साथ इस लय में डूबे भक्ति की लय, नृत्य की भाषा। अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में कथक गुरु पद्मश्री शोभना नारायण ने राम कथा में निहित मानवता, करुणा और लोक मंगल के तत्वों पर प्रकाश डाला।
1: I would say it is a civilizational memory, just like महाभारत, और उसमें वही राम कथा आज मॉडर्न युग में भी चल रहा है। Actually, there are more than 36 to 40 versions of the Ramayana itself. रामायण का जो स्पंदन है, जो लय है, वो निरंतर है, वो शाश्वत है। आपको व्याख्या मिलती है किस तरह से आपके अंदर वो इमोशंस और भावनाएं हैं। और मैंने दो लाइन लिखी थी कैके का प्रसंग कि कैके के कारण राम वन गए और इसी कारण वो राम बन भी गए।
0: कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ओडिशी गुरु विदुषी शैरन लॉविन ने अलग अलग रामायण परंपराओं का उल्लेख करते हुए उनके सांस्कृतिक और कलात्मक महत्व को बड़े विस्तार से बताया।
2: In Odisha, there's a literary tradition, obviously older, but literary, that's at least 500 years old. And what's unique or special about or significant is that in Odisha, all of the writers in Odia have interpreted many of the locations as being in Odisha.
0: भरतनाट्यम कलाकार श्रीधर वासुदेवन ने समाज की सौंदर्य चेतना और सांस्कृतिक मूल्यों की चर्चा की, जिसके आधार में रामायण है, राम कथा है।
3: नृत्य एक भाषा है और इस नृत्य को, इस भाषा को परिभाषित करने के लिए नाट्य का रूप हमें धारण किया है। और नाट्य के लिए विषय कुछ भी हो सकता है। हमारे इस विषय की खोज में इस मार्ग को बहुत ही सुलभ बनाया है महाकवियों ने, महाआचार्यों ने, उसमें से महर्षियों ने, उपनिषद के बहुत सारे स्रोत दिए, सोच के, रह के, उसे भाव में अभिव्यक्त करने के लिए। और ये बात को मैं बहुत ही पुष्टिकरण से विश्वास में रखता हूँ, मैं अपने आप को भरोसा रखता हूँ कि हम सब कहीं ना कहीं रामायण काल में रहे हैं।
0: मोहिनीअट्टम कलाकार जयप्रभा मेनन ने रामकथा पर अपने विचार रखते हुए कंभ रामायण का विशेष उल्लेख किया।
4: There is also a very beautiful and very important play, a scene to behold, to seeing them come.

0: उन्होंने शूर्पणखा प्रसंग की कलात्मक और बेहद मानवीय व्याख्या प्रस्तुत की। प्रभु श्री राम और लक्ष्मण के प्रति प्रणय निवेदन से पहले राक्षसी रूप से ललिता रूप में शूर्पणखा का परिवर्तन एक बेहद रोचक नृत्य प्रस्तुति का आधार बनता है।
1: गोइंग एंड प्रपोजिंग टू रामा एंड लक्ष्मणा फ्रॉम दैट राक्षसी बावम द हैंड गोज इनटू अ ब्यूटीफुल पल्लवा।

0: राम के ही निर्गुण रूप में अपना आराध्य तलाश करने वाले कबीर, 15वीं शताब्दी का वो जुलाहा जिसने न केवल कपड़े बुने बल्कि मनुष्यता का एक ऐसा ताना बाना बुना जो आज भी जस का तस है। गुरु हर गोविंद साहिब सिख परंपरा के छठे गुरु, उन्होंने अकाल तख्त की स्थापना की, वो पवित्र स्थान जो धर्म और लौकिक न्याय दोनों का ही केंद्र बना। कुछ महान विभूतियां देह में भले हमारे साथ ना हो, वो हमारी संस्कृति में, हमारी स्मृतियों में, हमारे सुरों में और हमारे रंगों में जीते रहते हैं। असम के अस्मिता के प्रहरी और असम के पहले मुख्यमंत्री, भारत रत्न से सम्मानित स्वतंत्रता सेनानी लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई, सरोद के जादूगर मैहर घराने के महान संगीतज्ञ उस्ताद अली अकबर खान, ओडिशी शास्त्रीय नृत्य शैली को विश्व मंच पर पहचान दिलाने वाली दिव्य कलाकार संयुक्ता पाणिग्रही, भारतीय चित्रकला के महानायक मकबूल फिदा हुसैन, इन सभी विभूतियों के सांस्कृतिक अवदान को प्रणाम करते हुए संस्कृति भारती का आज का ये अंक यही संपन्न होता है। अगले अंक में आपसे फिर मिलेंगे। नवोदिता मिश्रा को अनुमति दीजिए। नमस्कार।
1: आकाशवाणी दिल्ली से आप सुन रहे थे संस्कृति भारती। हम आकाशवाणी उदयपुर से बोल रहे हैं। आइए अब हम सुनते हैं संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम जिसका प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली से होगा।
2: अखिल भारतीय कार्यक्रम में प्रस्तुत है यू शिव प्रसाद का सैक्सोफोन वादन। यू शिव प्रसाद, जिनका जन्म आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एक संगीतकार परिवार में हुआ था, कम उम्र में ही आपको संगीत की विरासत मिली। आपने अपने चाचा से कर्नाटक शास्त्रीय संगीत की औपचारिक शिक्षा प्राप्त की। सम्माननीय सैक्सोफोनिस्ट स्वर शिल्पी यू वेंकट राव जी और चिंतालापुड़ी वराहला राजू गारू और पी दयाकर गारू के साथ संगतकर्ता के रूप में संगीत कार्यक्रमों में प्रदर्शन करना शुरू किया। आप पश्चिमी की फ्लूट में भी प्रशिक्षित हैं, जो आपकी व्यापक संगीत बहुमुखी प्रतिभा को दर्शाता है। आपको गांधी हिंदुस्तानी साहित्य सभा नई दिल्ली द्वारा कला निधि पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। ये आपके संगीत के प्रति अटूट समर्पण, अनुशासन और जुनून को दर्शाता है, जो आपको अन्य संगीतकारों के लिए एक आदर्श बनाता है। आपके साथ मृदंगम पर विघ्नेश जयरमन और वायलिन पर जी उमा संगत कर रही हैं। यू शिव प्रसाद अपने कार्यक्रम का आरंभ हंस ध्वनि से कर रहे हैं। रचना के बोल हैं वातापी। इसके रचनाकार हैं मुत्तुस्वामी दीक्षितर। ये रचना आदिताल में निबद्ध है।
3: दिस इज आकाशवाणी टुनाइट इन रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा वी ब्रिंग यू अ सैक्सोफोन रिसाइटल बाय यू शिव प्रसाद। यू शिव प्रसाद बॉर्न इनटू अ फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस इन विशाखापट्टनम inherited his musical foundation at an early age. He received his formal training in Carnatic classical music from his uncle, the respected saxophonist Swar Shilpi U. Venkat Rao Garu, Chintalapudi Varhala Raju Garu and P. Dayakar Garu, and he began performing in public concerts as an accompanist. He is also trained in Western key flute, showing broad musical versatility. Awarded Kalanidhi Award from Gandhi Hindustani Sahitya Sabha, New Delhi. It reflects his unwavering dedication, discipline and passion for music, making him a role model for musicians alike. Today, he is accompanied on Mridangam by V. Jayaraman and on violin by G. Uma. U. Shiva Prasad begins his violin recital with Rag Hansdhwani. Composition Vatapi, composed by Muthuswami Dikshitar. Is set to Aditalam.

0: अभी आप सुन रहे थे यू शिव प्रसाद का सैक्सोफोन पर बजाया राग हंसध्वनि। कार्यक्रम को जारी रखते हुए यू शिव प्रसाद अब प्रस्तुत करेंगे राग नवरस कानड़ा। रचना के बोल हैं निन्नु वीणा रामा। इसके रचनाकार हैं त्याग राजा। ये रचना रूपकम ताल में निबद्ध है।
1: दैट वॉज राग हंसध्वनि। कंटिन्यूइंग हिज रिसाइटल, यू शिव प्रसाद नाउ प्रेजेंट्स अनदर कॉम्पोजिशन बेस्ड ऑन राग नवरस कानड़ा। Composition Ninnu Veena Rama, composed by Tyagaraja, is set to Rupakam Talam.

0: अभी आप सुन रहे थे यूशिव प्रसाद का सैक्सोफोन पर बजाया राग नवरस कानड़ा। अब आप सुनेंगे राग गौरी मनोहारी। रचना के बोल हैं जय जय पद्मनाभा। इसके रचनाकार हैं स्वाति तिरुनाल और ये रचना आदिताल में निबद्ध है।
1: You just heard राग नवरस कानड़ा। यूशिव प्रसाद concludes his saxophone recital with राग गौरी मनोहारी। Composition जय जय पद्मनाभा, composed by स्वाति तिरुनाल, is set to आदितालम।

0: अभी आप सुन रहे थे यू शिव प्रसाद का सैक्सोफोन वादन, आपके साथ मृदंगम पर विग्नेश जयरमन और वायलिन पर जी उमा संगत कर रही थी। इसी के साथ संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया और आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही प्रसारित किया गया।
1: ये आकाशवाणी उदयपुर है, आइए हिंदी में समाचार सुनते हैं आकाशवाणी दिल्ली से, उसके बाद अंग्रेजी में।
2: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात फ्रांस के शहर नीस पहुंच गए हैं। वहां फ्रांस के वरिष्ठ अधिकारियों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इनमें शिक्षा मंत्री एडवर्ड ग्रेफे, उच्च शिक्षा अनुसंधान और अंतरिक्ष मंत्री फिलिप बैप्टिस्ट, आल्प्स मैरिटाइम्स फ्री फ्रैक्चर के सेक्रेटरी जनरल पैट्रिक अमोसू एडबले, भारत में फ्रांस के राजदूत थियरी माथू, नीस के मेयर एरिक सीओटी और स्टेट प्रोटोकॉल के डिप्टी डायरेक्टर बेनोइट स्नाइडर शामिल थे। इस यात्रा को यूरोप और भारत के संबंधों के लिए निर्णायक माना जा रहा है। फ्रांस पश्चिमी यूरोप में भारत का सबसे पुराना और भरोसेमंद रणनीतिक मित्र देश रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: भारत की रणनीतिक सोच में फ्रांस का एक खास स्थान है। इस साल की शुरुआत में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों ने अपने संबंधों को विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया, जो वैश्विक समाधान के लिए उनकी साझा आकांक्षा को दर्शाता है। कल प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ल्ड्स के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप्स के साथ साथ वैश्विक निवेशक, सीईओ और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
2: अमरीकी राष्ट्रपति के कार्यालय ने कहा है कि अगले सप्ताह फ्रांस में प्रस्तावित G7 बैठक के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दुनिया के अन्य नेताओं से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच आर्थिक विकास, आपूर्ति श्रृंखला, यांत्रिक मेधा, निवेश भागीदारी सहित सुरक्षा के अन्य मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। असम के जोरहाट में आज सुबह AN-32 विमान दुर्घटना में 5 जवानों की मौत हो गई है। इसमें स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सार्जेंट जितेंद्र शर्मा, अग्निवीर वायु खेमाराम कुमावत और दानिश आलम शामिल हैं। AN-32 विमान आज सुबह जोरहाट में नियमित उड़ान पर था। लैंडिंग के दौरान विमान एयरबेस परिसर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया और इसमें आग लग गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि जवान के साहस और राष्ट्र के प्रति उनकी सेवा को हमेशा गर्व और कृतज्ञता से याद किया जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ नए थल सेना प्रमुख होंगे। वे फिलहाल थल सेना उप प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सेठ 30 जून को वर्तमान सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के अवकाश ग्रहण करने के बाद कार्यभार संभालेंगे। मध्य प्रदेश के इंदौर में 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन संपन्न हो गया। सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सम्मेलन में 4 नई संस्थागत पहलों की घोषणा की गई। अमरीका और ईरान ने संकेत दिया है कि वे पश्चिम एशिया में महीनों से चल रहे टकराव को खत्म करने के लिए एक फ्रेमवर्क समझौते के बहुत करीब हैं। हालांकि अभी भी कुछ अहम मुद्दों पर

0: 5 overs. And that is the end of this news bulletin.
1: मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11:10 हो चुके हैं। हमारी आज की ये शांतिकालीन सभा अब यहीं संपन्न होती है। कल सुबह 5:53 पर सुबह की पहली सभा के प्रसारण लेकर हम फिर से आएंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। शुभ रात्रि। जय हिंद।